नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते असीं आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो बोल रहे हां। अज दिन सोमवार शक संवत 1948 दे ज्येष्ठ महीने दी 18 तारीख, तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे जून महीने दी अज 8 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 ते 40 सैकेंड होए ने। साढ़े अज दे प्रोग्राम हुण शुरू हुंदे ने ते असी अपने सारे ही स्रोतियां दा इस सभा दे विच बहुत बहुत स्वागत करते हां।

बजे तक। 8:30 बजे पंजाबी खबरां सुनोगे ते 8:40 ते नॉन स्टॉप पंजाबी बीट सॉन्ग्स इंजॉय करोंगे सैगमेंट अड्डी टप्पा दे विच। सवेरे 9 बजे FM न्यूज़ हेडलाइंस ते उस तो ठीक बाद प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी, जिस विच तुसी भी व्हाट्सएप ते अपने ऑडियो मैसेजेस भेज के शामिल हो सकते हो ते बन सकते हो प्रोग्राम का हिस्सा। सवेरे 10 बजे FM न्यूज़ हेडलाइंस ते उस तो ठीक बाद प्रोग्राम गीत बहार। FM न्यूज़ हेडलाइंस सवेरे 11 बजे ते उस तो ठीक बाद तुहाड़ा मन पसंदीदा लाइव टेलीफोन एंड प्रोग्राम लेके हाजिर हो जावांगे पंजाबी तड़का। दोपहर 12 बजे FM न्यूज़ हेडलाइंस ते 12:02 ते प्रोग्राम होम स्वीट होम। दोपहर दे मिड दे विच यानी दिन दे मध्य दे विच प्रोग्राम मिड डे मेलेडीज़ दोपहर 1 बजे। मिड डे मेलेडीज़ दरमियान 1:40 ते सुन पाऊंगे पंजाबी खबरां। ते 1:50 तो 2 बजे तक जारी रहेगा मिड डे मेलेडीज़। दलाज शायर है दोपहर 2 बजे ते 2:30 ते साडा खास ते स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग सुन पाऊंगे। दोपहर 3 बजे ले चलांगे तुहानू दिल्ली केंद्र साडा खास प्रोग्राम FM रेनबो दिल्ली तो सुनोगे रेडियो डॉक्टर। शाम 4 बजे FM रेनबो जलंधर केंद्र तो प्रोग्राम पेश करांगे हैलो जलंधर। शाम 5 बजे दिल्ली केंद्र तो साडा खास प्रोग्राम सुनोगे ब्रॉडकास्ट ऑफ डिफेंस इन्वेस्टिट्यूर सेरेमनी दा पार्ट 1, जिसनू भारत दे माणयोग राष्ट्रपति जी वल्लों शुरुआत कीता जावेगा। शाम 6 बजे साडा खास इवनिंग शो लव यू जिंदगी पेश करांगे। प्रोग्राम दरमियान 6:20 तो 6:30 बजे तक सुनोगे प्रादेशिक खबरां ते 6:30 बजे तो 7 बजे तक वापस जारी रहेगा लव यू जिंदगी। ताज़ा खबरां तो जानकारी ले पाऊंगे FM न्यूज़ हेडलाइंस के जरिए शाम 7 बजे ते उस तो ठीक बाद फिल्मी दुनिया। रात 8 बजे FM न्यूज़ हेडलाइंस ते उस तो ठीक बाद प्रोग्राम मसाला मिक्स। FM न्यूज़ हेडलाइंस एक बार फिर तो रात 9 बजे और उस तो ठीक बाद तुहाडे मैसेजेस ते आधारित प्रोग्राम दिल चाहता है पेश करांगे। सजेगी गजलां दी महफिल FM रेनबो ते रात 10 बजे प्रोग्राम शामे गजल दे विच। ते रात 10:30 बजे साडी सभा दा आखरी प्रोग्राम लेके हाजिर हो जावांगे एक प्यार का नगमा है। इसन साडी हुण तो लेके रात तक दे प्रसारित होण वाले प्रोग्राम ते उहनां दा प्रसारण समा। ते हुण वेला हो गया है भगती संगीत के प्रोग्राम वंदना नू सरवण करन दा। बने रहो 102.7 FM रेनबो दे नाल।

परमात्मा का नाम साढ़े लिए उदा काम करता है जिमें तपदी हुई गर्मी दे विच सानू ठंडक महसूस करवाउण दे लई कुदरत बारिश दिंदी है। उवें ही जदों असी बहुत थके ते हारे हुंने आ ते उदों अपना असी सर्वस्व अपने प्रभु नू अपने परमात्मा नू जेकर सौंप दिंदे आ ता उस दुख तो बाहर निकलन दी शक्ति भी सानू उही दिंदा है।

FM 102.7 ते 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सर्वन कर रहे हो भगती संगीत दा प्रोग्राम वंदना।

0: बोलो पवन सुत हनुमान की जय।
1: ये प्रकृति एक कुदरत उस परमात्मा दे बड़े प्यार दे नाल बनाई हुई है, लेकिन जदों मनुखी कर्म कुछ ऐदां दे हो जांदे ने कि कुदरत भी ये प्रकृति भी गुस्से दे विच आउंदी है, तां फिर उस दे गुस्से नूं कई वारी रोकना इंसान दे लई हर वार मुमकिन नहीं हुंदा। सो जरूरी है कि असी इस प्रकृति नूं उस मां दे रूप दे विच याद रखिए, उसकी इज्जत करिए ताकि उसनों अपना रुद्र रूप ना लेना पवे।

नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी एंड सुपर स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इसलिए नहीं क्योंकि आज मंडे मॉर्निंग है और मैं तुम्हारी ब्लूज नू ग्रीन च कन्वर्ट करन आई हां। आज सुपर स्पेशल मॉर्निंग है, जो तो दसूंगी ना तुहानू अपने आप पता चल जाएगा और फिर उदो भी तुसी खुशी दे विच एक ब्रॉड जी स्माइल दोंगे और खुशी दे नाल चुमन लग जाऊंगे। तुसी सुन रहे हो अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम रेनबो जलंधर, ते मैं हाँ तुहाड़ी अपनी दोस्त, तुहाड़ी फेवरेट वाली दोस्त, तुहाड़ी मॉर्निंग वाली एनर्जी डोज आरजे पूजा टोहानी। सो अज दा दिन बहुत ही खास है क्योंकि अज असी सेलिब्रेट कर रहे हैं ओ मीडियम, ओ माध्यम जो सिर्फ आवाज नहीं है, जो जज्बात है, जो कनेक्शन है, ये साथ है, ये रेडियो है। आज असी यही मीडियम सेलिब्रेट करना है जिस माध्यम राही फिलहाल तुसी मैनु सुन रहे हो, तुसी मैनु ट्यून किया हुआ है और ये जादुई जो रिश्ता है ना, जो एफएम रेनबो दा तुहाडे नाल है फ्रीक्वेंसीज दे जरिए, ऐप दे जरिए, लेकिन जादू पता की है, बिल्कुल लाइव है, क्योंकि लाइव है ता लाइफ है और एफएम रेनबो आकाशवाणी दे सारे चैनल बिल्कुल लाइव तुहाडे नाल कर देने गल्ला। फिलहाल तुसी ट्यून कीता होया जी मैनू 102.7 ते 103.6 ते, यानी कि AIR अमृतसर वाली इसी फ्रीकुएंसी के जरिए सानू सुनते हैं और इसी फ्रीकुएंसी 103.6 दे जरिए ही सरहद पार तो भी साडे लिसनर्स ट्यून करते हैं FM रेनबो जलंधर नू, क्योंकि प्यार करते हो तुसी। और जो दोस्त सानू न्यूज़ ऑन AIR ऐप के जरिए ट्यून करके बैठे ने, दिल तो थैंक यू है जी, तुहाड़ा बहुत बहुत एंड हैप्पी हैप्पी हैप्पी एंड पॉजिटिव मोटिवेशनल एंड बहुत ही इंस्पिरेशनल मॉर्निंग होने जा वाली है आज वाली। लेकिन उस तो भी ज़्यादा ये जी मॉर्निंग है ना आज की, ये सुपर स्पेशल हो जाएगी क्योंकि असी बहुत सारिया गल्लां करनिया ने अज इस माध्यम बारे, इस मीडियम दिया रेडियो, जो अलार्म तो पहला उठ के सानू गुड मॉर्निंग कहता है रेडियो, जो ट्रैफिक जाम विच साडा साथ निभांदा है रेडियो, जो लोनलीनेस नू फ्रेंडशिप च बदल देंदा है। भई ये रेडियो कोई डिवाइस थोड़ी है, इमोशन है। जदों इहदा नाम आकाशवाणी होवे ते ऑल इंडिया रेडियो होवे, असी कहंदे ना ऑन एयर जा रहे हैं। फिलहाल मेरे बिल्कुल सामने ना बहुत मोटा मोटा लिखा हुआ ऑन एयर, और जदों ही मैं अपने स्टूडियो च पैर रख दिया अंदर आण नू, है ना, तो पहला मेरा ध्यान उस लाइट पर जाता है जो उदों ऑफ हुंदी है, और मेरे ऑन एयर हुंदिया नाल ही वो रेड लाइट हो जाती है ऑन, और मैनू महसूस हुंदा है कि आम ऑन एयर। इनू कुछ भी समझो, हवा के जरिए, फ्रीकुएंसी के जरिए मैं तुहाडे तक पहुँचती हाँ और मेरी आवाज़ तुहाडे तक पहुँचती है, और जो तुसी अपने सुनेहे साडे तक पहुँचाते हो तो उसे हवा के जरिए पहुँचती है ना। बहुत सारिया गल्लां हैगियां जी अज अपने कोल करन नू, लेकिन दस दिनी आ तुहानू अज असी सेलीब्रेट कर रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो दे

दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है, बहुत ज्यादा खास। अज असी गल करांगे उस आवाज दी जिसने पीढ़ियां नूं जोड़िया। पीढ़ी दर पीढ़ी इस सफर चलदा आ रहा है, जिसने देश दे कोने कोने तक जानकारी, संगीत, सभ्याचार ते भावनावां पहुंचाईयां। ओ माध्यम जिसनूं तुसीं इस वेले सुन रहे हो, जी हाँ, अज है ऑल इंडिया रेडियो फाउंडेशन डे। है ना, बहुत ही ज्यादा प्यारा जिहा दिन। और इस प्यारे जे दिन दे विच प्यारियां प्यारियां जी गल्लां आपां करनियां ने प्यारे प्यारे तरीके दे नाल। और नाल ही मैं तुहानूं ढेर सारी जानकारी भी देनी है तुहाडे इस प्यारे जे ऑल इंडिया रेडियो बारे, जिसने 1920 दे दशक तो 1920s तो अपना जिहड़ा सफर शुरू करके 2026 दे विच अज मैं तुहानूं दस रही हाँ। और ये सफर 90 सालां तो चलदा आ रहा है। और इस खास जे सफर दे फिर जिहड़ियां गल्लां बातां आ उह आपां करनियां ने ना बड़े खास जे तरीके दे नाल। जी तो सब तो पहला तुहानू दसना ही जरूरी है कि 8 जून यानी कि अज का दिन 1936 भारत के प्रसारण इतिहास के एक मील पत्थर वजो जाने जाता है, माइल स्टोन। इस दिन ऑल इंडिया रेडियो AIR की आधिकारिक स्थापना हुई। इस विच पहला देश दे विच जिहड़ा रेडियो प्रसारण सेवा है इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी कि ISBS दे नाम दे हेठ चलदी सी। आया ना कुछ याद पुरानियां पुरानियां गल्लां। सो भारत विच जिहड़ी रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 दे दहाके विच हो गई सी। 1936 नूं इसका पुनर्गठन करके इसनूं ऑल इंडिया रेडियो नाम दिता गया। यही संस्था अगे चल के देश की सब तो वड्डी ते सब तो भरोसेयोग जन प्रसारण सेवा बनी। कर दियो ना अखां बंद करके यकीन जदों ऑल इंडिया रेडियो तुहाडे अपने आकाशवाणी ते तुहानूं कोई गल दसी जांदी है। कर दियो ना यकीन कि जे इत्थों कुछ दस्या गया है ना 100% फुल प्रूफ सच्चाई है उस गल दे विच। यकीन जित्या है तुहाडे अपने ऑल इंडिया रेडियो ने सालां दा सफर तय करके, 9 दहाकियां दा सफर तय करके। सो भारत विच रेडियो दी प्रसारण दी शुरुआत 1920 दे दहाके विच होई सी। शुरुआती दौर विच इह सेवा सीमित खेतरां तक ही पहुंचदी सी, पर ऑल इंडिया रेडियो दे गठन तो बाद इस दे विस्तार लई योजनाबद्ध यतन कीते गए। AIR ने देश दे वख-वख हिस्सों विच नवे प्रसारण केंद्र स्थापित किए। हौली हौली इसकी पहुंच पिंडा तक भी हो गई। ते किवें भुल सकते हैं आजादी अंदोलन दौरान ते आजादी तो बाद AIR ने राष्ट्र निर्माण विच किन्नी महत्वपूर्ण ते अहम भूमिका निभाई। इस माध्यम राही सरकार नीतियां, सिक्ख्या, खेतीबाड़ी, सेहत, सभ्याचार ते मनोरंजन नाल संबंधित जानकारी तुहाडे तक यानी कि लोका तक पहुंचाई गई। खास करके पिंडा च रहण वाले लोकां लई रेडियो जानकारी ते ज्ञान दा एक मुख जरिया, प्रमुख स्रोत बनिया।

और साल 1957 विच तुहाड़ा AIR तुहाड़ा ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी नाम दे नाल अधिकारिक तौर ते अपनाया गया। वैसे तो तुहानू पता है कि इस शब्द संस्कृत तो लिया गया है जिसका अर्थ है आकाश तो आने वाली वाणी यानी कि आवाज। आकाश तो आने वाली वाणी बनी आकाशवाणी। इनाम भारतीय सभ्याचार ते परंपरा नाल जुड़िया होया है ते आज भी तुहाडे विच यानी कि लोका विच हरमन प्यारा ते लोकप्रिय है। जोड़दा है दिलां नूं दिलां दे नाल तुहाड़ा ऑल इंडिया रेडियो तुहाड़ा अपना आकाशवाणी। ते फिलहाल आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो ते सुन रहे तुसीं मैनूं यानी कि पूजा टोहानी नूं और प्रोग्राम चल रहा है जी गुड मॉर्निंग जलंधर और गल्लां बातां दा सिलसिला ऐदां ही चलदा रहेगा मेरे नाल ठीक 10 बजे तक। सो जाना किते नहीं है हजे ते गल्लां दी शुरुआत हुई है ढेर सारी इनफॉर्मेशन ते एंटरटेनमेंट दी डोज़ बाकी है मेरे दोस्त।

याती रहेगी ना आवाज मेरी तोहानू। अगर पुल भी गई तो कोई गल नहीं, तोहानू बार बार याद करवान दे ली मैं जो हैगी हां। सो वेलकम बैक आफ्टर दिस सोलफुल ट्रैक, पूजा टोहानी तुहाडे नाल, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर। सुन रहे हो तुसी इस वेले देशां विदेशां दे विच, पर प्रेजेंट कर रही हां मैं जलंधर तो, आकाशवाणी जलंधर तो, तुहाडे अपने आकाशवाणी जलंधर जो कि पहला सी ऑल इंडिया रेडियो। देखो बहुत लंबा सफर, ते जो गल हुई आकाश तो आने वाली वाणी दी धुनी दी, ते मैनु लगा थोड़ा जिहा मैनु तुहानू होर पिछे लैके जाने की जरूरत है। सो आप स्टार्ट तो स्टार्टिंग करिए, मतलब स्टार्टिंग तो स्टार्ट कर दें, उल्टा हो जाता ना कभी कभी। चलो स्टार्टिंग तो स्टार्ट कर दें। साल 1895, साइंटिस्ट गुग्लीएल्मो मार्कोनी इन्होंने रेडियो की खोज की। मैं ये सोचती हाँ अगर इन्होंने रेडियो की खोज ना की होंगी तो की बनता अपना। थैंक यू गुग्लीएल्मो मार्कोनी जी दिल तो। सो रेडियो की खोज तो लगभग 3 दहाके बाद साढ़े देश विच, भारत विच प्रसारण का सिलसिला शुरू होया। 1927 विच इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी वालों बंबई ते कलकत्ता च प्रसारण शुरू किया गया। बहुत सारिया फाइनैशियल प्रॉब्लम्स, आर्थिक औकड़ा करके इस सेवा बंद हो गई। हाँ जी सही सुनिया। फिर तत्कालीन उस टाइम दे ब्रिटिश सरकार ने 1930 दे विच इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की शुरुआत की, स्थापना की थी। फिर आया 8 जून 1936 जदों इस नूं नवा नाम मिलिया ऑल इंडिया रेडियो, तुहाडा AIR जिथे असी ऑन एयर होंने। और फिर उस तो बाद महान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसनों एक वड्डा सार्थक ते अभूतपूर्व नाम दिता आकाशवाणी, यानी कि आकाश तो आन वाली धुनी या वाणी। ये नवा युग सी जदों शब्दां नूं खंभ मिले तो वह आकाश नूं चीरदे हुए हर दिल तक पहुंचन लगे, तुहाडे दिलां तक। पिछली सदी च ही देश ने 90% तक जो कि जियोग्राफिकल पार्ट है आकाशवाणी की पहुँच

जिंदगी रॉक्स। फिलहाल मेरे नाल यानी के पूजा टोहानी दे नाल, और फिलहाल गल्ला बात दा सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा जा इनफॉरमेशन दा सिलसिला भी तो चलना चाहिए ना। मैनू पता है कि तुसी सोच रहे होंगे कि इनफॉरमेशन अज तो बहुत ज़्यादा नहीं हो गई, कितने हुई है अज तो मैं सिर्फ यादा ही सांझियां कीतियां तुहाडे नाल। अच्छा, बहुत सारिया चीज़ा अज के दिन दे विच खास भी तो है, जिमें कि अज का दिन जिथे असी मना रहे ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के फाउंडेशन के तौर पर, उत्थे ही अज विश्व महासागर दिवस है। वर्ल्ड ओशियंस डे भी अज ही दिन मनाया जाता है, यानी कि 8 जून संयुक्त राष्ट्र द्वारा पूरी दुनिया के ताकि समुद्र असी संरक्षण तो समुद्रा के स्वास्थ्य न ठीक रखने के लिए सारी दुनिया के लोगों के जागरूकता बनाई जा सके। सो ये तो मैं एक गल याद आई कि गल नहीं याद आई, मैं तुहानू दसना है कि अज ठीक 8 बजे करांगे अज दे टॉपिक दे एक्सपर्ट दे नाल गलबात, वर्ल्ड ओशियंस डे ते विश्व समुंदर दिवस ते डॉक्टर शिवजीत।

0: टॉपिक ते गल करन दे लई साडे अज दे खास मेहमान ने डॉक्टर शिवजीत कौर जी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ने ज्योग्राफी डिपार्टमेंट दे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे विच। और सब तो पहला आओ इन्हां दा स्वागत कर दिया प्रोग्राम दे विच। हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग पूजा।
0: गुड मॉर्निंग मैम, की हाल चाल ने तुहाडे? बहुत बहुत स्वागत है मैम तुहाडा।
1: थैंक यू मैडम फॉर इनवाइटिंग मी।
0: तो मैम किदां दा लग रिहा तुहानूं साडे नाल अज दी बहुत खास दिन ते साडे नाल फोन लाइन ते आके?
1: हाँ मैडम, आई एम एंजॉयिंग। ये हिस्ट्री का एक पार्ट हो गया कि आज 90 इयर्स पूरे हुए और
0: जी
1: आज आपने मेरे को अपने रेडियो टॉक पे इनवाइट भी किया। आई एम वेरी हैप्पी।
0: थैंक यू सो मच मैम, तुसी अपने कीमती समय तो पहला ते समा कढ़िया और साडे नाल आए, क्योंकि एक्चुअली मैनू पता तुहाडे लिए सरप्राइज सी। साडे लिसनर्स वैसे ते सवेर दी मेरी गल्लां सुन रहे ने ते मैं तुहाडे लिए सरप्राइज रखिया सी कि अज दा खास दिन की है, जिथे असीं वर्ल्ड ओशन डे दी गल करनी है। अज ऑल इंडिया रेडियो भी अपने फाउंडेशन डे दे 90 साल पूरे कर रहा है ते मतलब एक बहुत ही सोहना जिहा तालमेल बन रहा है अपनी गल्लां दा। सो टाइम मैनू पता अपने बहुत घट है, सो जल्दी दे नाल आपां टॉपिक ते आंदे आ। सो अज वर्ल्ड ओशंस डे ते साडे लिसनर नु मैम सब तो पहला यही दसो कि ये जेड़ा विश्व समुंदर दिवस है, ये जेड़ा विश्व भर दे विच मनाया जांदा है, इसका मुख उद्देश्य की है?
1: हर साल 8 जून नु वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट किया जाता है।
0: जी,
1: दिस ईयर मीन्स 2026 डे ओशन डे का थीम है मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया फॉर अवर ब्लू प्लैनेट।
0: जी,
1: इसका ये मेनली पूजा एम ये है, पुटिंग लिमिट ऑन द डैमेजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज। जो आप ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं एक्चुअली ऐसी ओशन दिया, ओशन सच ओवर फिशिंग हो गया, माइनिंग है एंड ऑयल ड्रिलिंग इन द ओशन। इंपॉर्टेंस ओशन की ना साड़ी लाइफ के बहुत ज्यादा है।
0: जी,
1: सब तो पहला ओशन वाटर रेगुलेट करता है साडे क्लाइमेट नू।
0: जी,
1: सेकेंडली ओशन सपोर्ट करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेन लेवल लाइवलीहुड, है ना, जी साडी लाइवलीहुड है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जी है इहदे ते बेस्ड है, ओशन दे उत्ते बेस्ड है। लास्टली लार्जेस्ट बायोस्फीयर ऑफ द अर्थ भी है।
0: ओके
1: जी,
0: तो मेरे दिमाग में यही दो सवाल भी आ रहे थे कि धरती दे उत्ते ये जेड़ा सी जीवन है ना, साडा ये लाइफ सिस्टम है या ये सारा बायोडायवर्सिटी दी जदों असी गल करदे हां, इन्हां सारियां चीज़ां नूं कायम रखण दे विच समुंदरां दी असी जे भूमिका दी गल करिए, जिवें तुसीं दस्सिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ते इन शॉर्ट मतलब किस तरीके दे नाल इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लोकी पता ये सोचदे आ भाई असीं ते मैदानी इलाके च रहिंदे आ, असीं ते समुंदर ते साडे तों बड़ी दूर है, साडे ते कोई लैणा देणा नहीं है, लेकिन धरती ते है और ओदा कोई ना कोई कारण तो होएगा, तो किस तरीके दे नाल इस धरती दे जीवन नूं प्रभावित या रेगुलेट करदा है समुंदर?
1: नो मैटर, है ना, चाहे असीं किन्ने दूर होइए बट ओशन सानूं कनेक्ट करदा है, ऑल ऑफ अस सारिआं नूं सानूं कनेक्ट करदा है। लाइक सबसे पहले आ गया, ओशन अब्जॉर्ब 90% ऑफ एक्सेस हीट एंड रेगुलेट करदा है ग्लोबल वेदर नूं, ग्लोबल वेदर नूं जिहड़ा हैगा रेगुलेट करदा है। सेकेंडली ओशन का 50% ऑक्सीजन प्रोडक्शन हेल्प करता है साड़ी, राइट।
0: जनता को पता ही नहीं है ये गल्लां दा कि ऑक्सीजन बेसिकली कित्थों आंदी है।
1: हाँ, ओशन नूं ना अपन लंग्स ऑफ प्लैनेट भी कहा जाता है, राइट। जिवें मराइन प्लांट्स जिहड़े ने अंडर ओशन ने ना थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दे नाल 50% ऑक्सीजन जिहड़े ने रिलीज करते हैं, दैट वी ब्रीथ, जो असीं ब्रीथ करते हैं, राइट। ते एक जरा होर बहुत वड्डी गल है, ओशन जरा है लार्जेस्ट नेचुरल ऑक्सीजन सिंक भी ने, राइट। मराइन प्लांट हो गए, एल्गा हो गए, फिजिकल ते केमिकल रिएक्शन अब्सॉर्ब लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एटमोस्फेरिक कार्बन, जो अभी इमिट कर दे ना व्हीकल्स तो सबसे ज्यादा जरा है अब्सॉर्ब कर दे। हाँ, ये सबसे ज्यादा जी है, अच्छा पॉइंट है अपना जरा है।
0: जी, एक और सवाल मैम मेरे दिमाग दे विच इहदे नाल ही आ गया कि जदों असीं क्लाइमेट चेंज दी गल कीती है, जिवें हुणे तुसीं है ना नाम लिया जलवायु परिवर्तन, ते समुद्रां दे तापमान जिवें तुसीं कहा कि हीट नूं एबजॉर्ब करदा है ना, ते जिहड़ा साडा क्लाइमेट चेंज होण दे नाल साडे धरती दा जिहड़ा तापमान है ओह बहुत ज्यादा वध गया, ते समुद्रां दे तापमान ते समुद्री परिस्थिति दी असीं जे गल करिए, परिस्थिति दी इह परिस्थिति इस सारा कुछ समुद्रां दे तापमान नूं

0: पे हुन तो कुछ को पलंदे इंतजार ते सुनोगे खबर
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो
2: एट इजराइल फॉर फर्स्ट टाइम सिंस अप्रैल सीज फायर एंड इंटेंडेड सिक्योर्स हिज मेडन ग्रैंड स्लैम टाइटल एंड विद दैट वी एंड द मॉर्निंग न्यूज हैव
3: नमस्कार ए आकाशवाणी खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नू लागू करन वाला देश दा 36वां राज बनन जा रहा है। राष्ट्रीय प्रीख्या एजेंसी ने 21 जून नू होण वाली नीट यूजी मुड़ प्रीख्या लई शहरां दी जानकारी जारी की थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चंडीगढ़ विच राष्ट्रमंडल संसदी संघ इंडिया रीजन जोन 2 कॉन्फ्रेंस दा उद्घाटन करनगे। अप्रैल विच हुई जंग बंदी तो बाद ईरान ने पहली बार इसराइल ते मिजाइल हमले कीते ते फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट विच जर्मनी दे अलेक्सांडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतिया। हुण खबरां विस्थार नाल पश्चिमी बंगाल दुनिया की सब तो वड्डी जनतक सेहत बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY नू लागू करन वाला देश का 36वां राज बनन जा रहा है। राष्ट्रीय सेहत अथॉरिटी अते पश्चिमी बंगाल सरकार अज राज विच ABPMJAY नू लागू करन लई एक समझौता पत्र ते दस्तखत करनगे। इस समझौते ते केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री JP नड्डा ते पश्चिम बंगाल दे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी दी मौजूदगी विच नवी दिल्ली विच दस्तखत कीते जाणगे। ये कदम देश दे सारे नागरिकां लई बराबर अते पहुंचयोग सेहत संभाल प्राप्त करन वल एक अहम मील पत्थर है। ये गुणवत्ता ते किफायती सेहत संभाल तक पहुंच वधा के राज दी सेहत संभाल प्रणाली नूं भी मजबूत करेगा। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 21 मई नूं होण वाली नीट UG 2026 दी मुड़ प्रीख्या लई शहरां दी जानकारी जारी कर दित्ती है। साडे पत्रकार मुताबिक रजिस्टर्ड उम्मीदवार हुण अपने एप्लीकेशन नंबर अते पासवर्ड दी वरतों करके अधिकारत

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: बिल्कुल जी,
1: रेडियो जलंधर दूरदर्शन जिहड़ा वा ये एक कह लो भी जिस तरह वड्डे भरा जां मां प्यो तुहानू सेध दिंदा इसे तरह सारयां नू सेध दिंदा वा।
0: जी
1: रब करे इहदी उम्र कई 100 साल लंबी होवे ते
0: जी
1: दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करदा रहे ते
0: शुक्रिया,
1: प्रोग्राम पेश करन वालयां नू रब तंदुरुस्ती दे चढ़दियां कलां बख्शिश करे।
0: थैंक यू
1: मेरे
0: जी,
1: वल्लों सरबत सुनण वाले वीर भैण भरावां नू दोबारा तों सति श्री अकाल जी।
0: शुक्रिया जी, शुक्रिया बहुत बहुत। तुसी प्यारा ते वधिया मैसेज साडे नाल सांझा कीता ते सानू दस्या अपना ये सफ़र किदां दा तुहाडा रिहा, शुक्रिया जी। सानू अगला मैसेज आया है जी, यशपाल जम्मू कश्मीर जिला जम्मू खड़ा बल्ली पिंड सिउणी तो भेज रहे हैं कि महासागरीय जल च ही पहली बार जीवन का अंकुर फुटिया सी ते अज महासागर असीम जैव विविधता का भंडार है, क्योंकि अज महासागर विश्व महासागर दिवस है। यानी कि जिवें मैं तुहानू अज दस्या सी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर के दौरान असी अज दे एक्सपर्ट नाल भी गल कीती सी, अज है वर्ल्ड ओशनस डे, विश्व महासागर दिवस। तो बिल्कुल सही कहा जी, महासागर ही असली लंग्स की तरह ने साड़ी धरती के लिए तो जरूरी है। चलो चलते हैं जी प्रोग्राम दे विच अगले वॉइस मैसेज दे वल।
2: सत श्री अकाल जी, मेरा नाम करणदीप सिंह रंधावा है, पिंड बठू चक जिला अमृतसर। मेरी उम्र 9 साल है। साढ़े लागे एक पीरा की जगह भी है, उस बहुत सारे रुख हैं, पिपल का रुख, बोर का रुख, तरेक का रुख। साढ़े हवेली 100 साल पुराना बोर्ड भी है,
0: अरे वाह।
2: उस हेठा खेडते हाँ, उस विच बहुत सारे पक्षी रहते हैं, तोता चिड़ी कां होर भी कई तरह के। मेरा मैसेज चक लो, धन्यवाद।
0: चक लिया जी, थैंक यू, ताड़ा भी धन्यवाद मैसेज भेजन दे लई। बड़ा प्यारा जिहा बच्चा सी और बड़े प्यारे जे बच्चे ने बड़ी प्यारी जिहा मैसेज सानू कीता, थैंक यू जी, स्माइल लिया दी मूँह ते। अगे मैसेज आया है, सत श्री अकाल जी, हर दिन विच पवे धमाल एफएम रेनबो दे नाल, दिल अपना पंजाबी चले फिर हुंदी बल्ले बल्ले, नवे रंग सुनेहे नाल, आकाशवाणी जलंधर नू अज हो गए 90 साल। सब तो पहला जिसने हर घर विच आवाज पहुंचाई, साडे वल्लों आकाशवाणी जलंधर नू लख लख वधाई। सतनाम सिंह गिल पिंड जौड़ सिंह वाला पट्टी तरन तारण तो इन्हां ने ये वाला मैसेज भेजे है जी। और अगे एक होर वॉइस मैसेज आ गया है, सुन रहे हैं जी।
3: सत श्री अकाल मैडम पूजा टहानी जी।
0: जी सत श्री अकाल, नमस्कार।
3: मैं बोलदा जी पिंड मोरजन सिखा जिला हरमानगढ़ तो। हाँ जी, आकाशवाणी दी पूरे हों ते 90 साल दियां लख लख लख लख वधाइयां
0: जी। हाँ, शुक्रिया।
3: आकाशवाणी नूं हो गए चलदे नूं 90 साल, ते बलविंदर सरां नूं हो गए जुड़े नूं लगभग 40 साल। हाँ जी, ते पूजा टोहानी जी,
0: हाँ जी,
3: तुहाडी आवाज नाल जुड़े नूं हो गए लगभग 2 साल।
0: ठीक है जी।
3: हाँ जी, मैं रेडियो हुणी ऑन करिया सी, बस 90 साल दिया मैं क्या आकाशवाणी को वधाइया दे दिए जी, सारे आर जे जिन्हें भी है एफ एम मेरे मोदी है ना, सारे मेरे वालों
0: शुक्रिया जी, शुक्रिया। अगला वॉइस मैसेज भी आप जल्दी दे नाल सुनते हैं।
4: हेलो दोस्तों, दिल अपना पंजाबी पूजा टवाणी, मैं प्यार भरी सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग
0: जी,
4: तुहानू ते तुहाडी सारी टीम नू
0: शुक्रिया जी।
4: मैं जी एस मुल्तानी जलंधर तो एक छोटा जिहा गीत दो लाइना लैके आया जरा कबूल करना जी। जिंदगी दा सफर दा मजा लेना होवे तां घट रखो समान, जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी, ना मन च रखो गुमान, रिश्ते टुटण दे बहाने ना टोलो, अपने हम सफर दा करो सन्मान। लंघ जाना है परान मूं हटके, थोड़ा जिहा हसके, रिश्ता ना टुटे साडा, पर अहीं थोड़ा जिहा बच गए। रिश्ता ना टुटे साडा, रही थोड़ा जिहा मच गए, टुटे साडा थोड़ा जिहा रही बच गए, वे लंघ जाना है परानू हटके, वे थोड़ा जिहा हसके,
0: शुक्रिया जी। तुसीं साडे नाल अपना मैसेज सांझा कीता, सानू गीत गा के सुनाया, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया।

0: वैसे मैं नोटिस कीता कि तुहाडे हर गीत दी ट्यून इको जी हुंदी है, थोड़ा जिहा चेंज लैके आया करो, है ना? ते बाकी चलो ठीक है, टैलेंट है, शेयर करन दे लई साडे नाल बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा। चलदे हां जी प्रोग्राम दे विच अगले वॉइस मैसेज दे वल।
1: हेलो दिल अपना पंजाबी, दिल से दिल तक पूजा टुहानी मैडम जी, वेरी गुड मॉर्निंग, सारे दोस्तों नु प्यार भरी नमस्कार।
0: वेरी गुड
1: आज
0: मॉर्निंग।
1: हैगा वा साडा ऑल इंडिया रेडियो फाउंडेशन डे,
0: बिल्कुल
1: आकाशवाणी दा दिन
0: जी।
1: 90 साल मनाया जा रहा है 8 जून नु।
0: जी
1: मैडम जी, इदे बारे तुसी सानू बहुत सोहनी जानकारी दित्ती, जिदे विच पंडित नरेंद्र शर्मा जी दी रूपरेखा की तैयार की हुई सारी सानू डिटेल दे विच समझाई और असी पूरे ध्यान नाल सुनी मैडम जी।
0: जी
1: उन्होंने किस तरह जोशिका संस्कृति साहित्य परंपरा दे नाल जोड़ के अनमोल रतन परोए रेडियो दे विच मैडम जी।
0: जी
1: ए ता सारी जानकारी तुसी सानू बड़ी वधिया दित्ती रेडियो बारे मैडम जी। असी भी बचपन तो रेडियो दे नाल जुड़े सी ते अज साडी भी आवाज सारे ऑडियो दे थ्रू, दिल अपने पंजाबी दे थ्रू, आकाशवाणी AIR दे थ्रू देशां विदेशां विच साडी आवाज जांदी है। ए सानू बड़ा सम्मान दित्ता है ऑल इंडिया रेडियो ने मैडम जी, FM रेनबो ने मैडम जी। ते तो अज साडा ओशन डे भी हैगा वा, तुसी साडी गल करवाई सी डॉक्टर तुसी साडी गल करवाई सी कि अज डॉक्टर शिवजीत
0: कौर जी दे नाल जी,
1: समुद्री जीवां दे बारे सारा डिटेल दे विच समझाया। उन्होंने दस्या जदों मछियारे जाल सुटदे ने ते जाल कई बारी टुट जांदा है ते उहदे विच निक्के निक्के जीव वड्डे वड्डे जीव फस जांदे ने ते उह मौत दा शिकार बन जांदे ने। ते ओशन डे दे उत्ते इन्नियां सोहणियां जानकारियां दित्तियां, ऑल इंडिया दी पहुंच कोने कोने तक है, देशां विदेशां तक है आकाशवाणी दी आवाज। मैडम जी ए सारियां गल्लां करदे हुए मैं तुहाडा तुहानू बहुत ज्यादा
0: बंद हो गया जी मैसेज, दोबारा चलाने आ।
1: सारियां गल्लां करदे हुए मैं तुहाडा तुहानू बहुत ज्यादा मुबारकां दिंदी हां आकाशवाणी दियां, ते असी भी तहे दिल तो शुक्रिया अदा करदे हां नाल मैडम जी। मैं तुहाडी अपने किरण नरूला ग्रीन पार्क कपूरथला।
0: थैंक यू किरण जी, तुसी जिहड़ा मेरा टास्क है वह पूरा किया। मैं तुहानू कहा सीगा मतलब प्रोग्राम की शुरुआत में साडे सारे लिसनर्स नू कि अज खास मैसेज ही शेयर करने और मैनू ये दसना है कि मैं सवेर तो लैके हुण तक की दसिया, और अगर तुसी मिस कर दिता तो बड़ा मतलब जरूरी जानकारी वाला प्रोग्राम मिस कर दिता जो तुसी अज 7 बजे तो सवेरे तो नहीं सुनिया। तो लेकिन किरण जी ने उदय जी ने पूरा अपना होमवर्क करके फिर अटेंडेंस लगवाई प्रोग्राम, इनू बोलते ने अच्छे लिसनर्स। सो एक होर साडे कोल चिट्ठी आई है, मतलब मैसेज आया है, आप पढ़ते हाँ। पूजा जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी। अज आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने ते पूरे आकाशवाणी परिवार नू अते स्रोता भरावां नू शुभकामनावां। मैं आकाशवाणी नाल 1980 तो जुड़िया होया हाँ, 15 साल की उम्र विच मैं आकाशवाणी नाल जुड़ गया सी। गर्मियों दी छुट्टियां विच 100 तो भी वध चिट्ठियां भेजदा सी, हैं 100 तो भी वध। ओके, आकाशवाणी जलंधर, रोहतक, ऑल इंडिया रेडियो, उर्दू सर्विस, दिल्ली दे 2 स्टेशन हुंदे होए हुंदे सी ए अते बी, अते विविध भारती शिमला भी लगदा सी, अते हुण लगातार सारे प्रोग्राम सुनदा हाँ। हुण तकनीक दा युग है, हुण मैसेज भेज के प्रोग्राम सुनदा हाँ। रेडियो ने सानू सब कुछ दिता, गीत संगीत नाटक समाचार बच्चों बारे प्रोग्राम युववाणी आदि। रेडियो विच चित्र दिखाई नहीं दिंदे, रेडियो विच आवाज़ दा महत्व हुंदा है, संवाद दा महत्व हुंदा है, संगीत दा महत्व हुंदा है। और धन्नवाद कर रहे ने मिर्ज़ापुर कुरुक्षेत्र तो यशपाल तिमान, उन्हां दी पत्नी कृष्णा तिमान ते सारा तिमान परिवार मिर्ज़ापुर कुरुक्षेत्र तो, इन्हां ने सानू मैसेज कीता है और बहुत बहुत शुक्रिया जी। तुसी 80 सालों का अपना यह सफर साढ़े नाल सांझा किया, 15 साल की छोटी जी उम्र तो तुसी साढ़े नाल जुड़े हुए सी, और 90 सालों के अज के सफर दे विच तुसी भी अपना यह जिहड़ा योगदान है सफर का दस के पाया। और मैनू बहुत खुशी हुई जान के कि तुसी क्या 100 तो भी वध चिट्ठियां तुसी अपनी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान पाया करते सी, और किहड़े किहड़े स्टेशन सुनते सीगे वह तुसी सानू दस्या। और जल्दी दे नाल मैनू लगता आपां एक गाना सुन लईए, क्योंकि हुण जे जशन की गल हो रही है ना, डांस बड़ी जोर दे नाल आ रहा है, गाना सुनो, गाना सुन के नचदे हैं टपदे हैं इंजॉय करदे हैं।

0: कोई गल नहीं जी, कोशिश करो, पैर चको, ठुमका लगाओ, नाथ हो जाएगा। यानी कि मन होना चाहिए, कम बंदा अपने आप कर ही लेंदा, लेकिन फिलहाल नचन टपन का ये सफर ऐसे चलता रहेगा। और फिलहाल टाइम हो गया है एक छोटे से ब्रेक का।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत विच जिस सौर क्रांति का आगाज किया सी, उसका असर हुण दिखाई देन लगा है। भारत विच एक एक करके 30 लाख तो वध परिवारों की छत ते सोलर पैनल लग चुके हैं। तुसी वी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
3: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme, Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samrit Bharat. Join Indian Navy.
0: वेलकम बैक वंस अगेन। और ट्यून की तरह जो तुसी मैनू यानी कि अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन नू सुन रहे हो, मैनू यानी कि पूजा टोहानी नू। लो जी, प्रोग्राम दे विच चलदे आं अगले मैसेज दे वल। सुनदे आं जी मैसेज कित्थों आया है अगला।
4: नित नवी नवी खुशी तुहाडे बूहे ते खलोवे
0: जी,
4: रब करे तुहाडा हर ख्वाब सच्चा होवे।
0: थैंक यू
4: आकाशवाणी, तुसी इन्ने साल जियो। आकाशवाणी, तुसी इन्ने साल जियो, असी करदे दुआ जी दी तारियां दे वांग कदे गिणती ना होवे।
0: अरे वाह, थैंक यू।
4: 8 जून 1936 नूं पहली बारी ब्रॉडकास्ट होया ते अज 8 जून 2026 है ते ए सिलसिला निरंतर लगातार जारी है ते आकाशवाणी जलंधर दा भी इस दे विच बड़ा योगदान है कि हजे तक उह स्रोतियां दीआं उम्मीदां ते खरा उतर रहा ते बहुत बेहतरीन प्रोग्राम्स स्रोतियां दे लई लैके आउंदा, क्योंकि रेडियो स्रोत

0: की होया एक आदमी फांसी लटका था।
1: अरे वाह।
0: एक भगत सिंह मार के तुझ मुल्क मकाता। सुन लो गोरे जालमो गल खरी सड़ावा रोज सूर में जम दिया भारत विच मावा। रोज सूर में जम दिया भारत विच मावा। बस हिंदुस्तान दे वतना दे राखे हाजी राखे। जे कोई साडे मुल्क नू मैली अख चाके। जे कर दे कोई उंगली असी कटिए बावा कटिए बावा। रोज सूर में जम दिया भारत विच मावा। रोज सूर में जम दिया भारत विच मावा। लाले असी दशमेश दे नहीं मरनो डर दे। जुल्म किसे मजलूम ते हुंदा नहीं जर दे। नाल मौत दे हस के असी लेंदे लावा लेंदे लावा लेंदे लावा। रोज सूर में

0: वाह जी वाह, बहुत बहुत खूबसूरत तुसी सानू ये गीत गा के सुनाया, दिल तो शुक्रिया। बहुत ही ज़्यादा तुसी टैलेंटेड हो, इदी प्रोग्राम से शामिल होंदे रहो। मतलब एक बारी तो परसनल क्लैप कर दिया एंड मज़ा आ गया सुन के तुहाडे तुम्बी दी तान दे नाल जिहड़ा तुसी आप बजा के सुर लगाए ने ना, बिल्कुल ऑन स्पॉट, बिल्कुल सही है। मैनू इदां लगा कि मैं कंप्यूटर ते प्ले करके गाना सुन रही हाँ। एक बारी ते अगले आर जे जिन्हां ने तुहाडे अगे गल्लां करनियां ने, इंदरप्रीत सहरा, उन्हां नूं भी हैरानी होई कि है कंप्यूटर ते लगाया कि मोबाइल ते चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, चल रहे हैं अगले वॉइस मैसेज वाल।
1: मोनी मैडम जी, दिल अपना पंजाबी, सारिया लख लख बधाई हो। अज रेमो का 90वां जन्म दिहाड़ा आया, महाराज इन्हू सुख शांति ऐसी गां बधावे।
0: शुक्रिया जी,
1: कृपा करके ऐसी तंदुरुस्ती रखे माता
0: शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगे आया है जी मैसेज कि रेडियो के जन्म दिवस दी बहुत बहुत मुबारक। रेडियो के फोटो के नाल मनजीत सिंह बदन पिंड बद्दोवाल लुधियाना तो लिखते हैं कि काका आया पंजाब की किताब कुछ चेते आया, पढ़िया जी साढ़े घर में एक काका आया, कन्न मरोड़े उसने रौला पाया, साढ़े घर में एक काका आया, सारे जवाब इस बात का जानते ने, अज इस नाल जुड़ के इसनों माणते ने, सब ने मन है पाया काका आया। इटैची जिहा सी इसका वड्डा वडेरा, सांझा वेड़ा नहीं सी कमरा तेरा, मेरा दिल विच समाया काका आया। बापू जी साजरे लगा दिंदे सी गुरबाणी, भैणा दा प्रोग्राम सुनदी सी सवाणी, ठंडू राम जी ने रंग जमाया काका आया। समय नाल अज असी कर गए हां तरक्की, तरक्की दी दौड़ विच की कुछ हार गए हां, पर इस काके ने सच समझाया, रेडियो आया, रेडियो आया, आनंद लियाया, काका आया ते काका आया। अगला वॉइस मैसेज जल्दी नाल सुनदे हां जी।
2: हेलो, हां जी मैडम जी, प्यार भरी सत श्री अकाल। गुरु तेग बहादुर मार्केट मंडी अंदवर तो मुहम्मद अनवर अंसारी, तुहाडा बहुत ही पुराना श्रोता हाँ। बहुत आनंद आता, बहुत अच्छा लगता। मैं कई अपने दोस्त कस्टमर भी आकाशवाणी रेडियो के नाल जुड़े
0: जी।
2: एक बार समा मिलिया, मैं आकाशवाणी जलंधर भी घूम के गया, रेनबो तैयार आकाशवाणी जलंधर, बहुत अच्छा लग्या। बहुत मेरिया यादा, मेरा दिल आकाशवाणी के नाल हमेशा जुड़िया रहा। सवेर के टाइम नमाज अदा करने बाद, खाना खाने तो बाद, सवेर के टाइम मोरनिंग के टाइम आकाशवाणी के नाल जुड़ जाना, जो कि लास्ट फिर जो नमाज की समाप्ति होंगी तो फिर भी तकरीबन मैं अद्धा पौना घंटा घंटा प्रोग्राम सुन के तकरीबन 10:30-11 बजे तक फिर आकाशवाणी सुन के बंद कर देना समाप्ति। मैं अपने मैसेज में भी जुड़िया हुआ रेडियो नाल, वो भी सुनते हैं, मैसेज नहीं करते। मैं क्या भी मैसेज या कॉल करो, एक बार बठिंडे से भी कॉल लगवाई सी
0: जी,
2: जलंधर से भी कॉल लगी जी। भैन के प्रोग्रामा बहुत अच्छा लगता, मेरा प्यारा तो पुराना

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देस पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

वेलकम बैक प्रोग्राम गीत बहार। तुसी सुन रहे हो अपने फेवरेट चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो ते मैं थारी दोस्त इंद्रप्रीत सेरा। हुणे जिहड़ा तुसी गीत इंजॉय कीता मोनाली ठाकुर ते निखिल डिसूजा दे आवाज़ दे विच कीता, फिल्म दा नाम सी अनजाना अनजानी। ते असी बिल्कुल एक दूसरे अनजान अनजान नहीं है गया, असी ते दोस्त हाँ। वैल हुण भी मैं देख रही हाँ, वैल मेरे को वट्सअप ते हले भी मैसेजेस आई जा रहे ने वधाइयां दे कंग्रेचुलेशंस दे। सो सारिआं नूं बहुत बहुत थैंक यू जिन्हां ने इन्ने सोहणे सोहणे मैसेजेस सानूं भेज रहे ने। सो प्रोग्राम चल रहा गीत बहार, इंजॉय करदे हाँ अगला गीत।

झूम तुसी भी झूम रहे हो, मैंने पता है कि तुहानू बहुत अच्छा लग रहा है। फिल्म का नाम से झूम बराबर झूम, के सुखविंदर ते महालक्ष्मी नाल ही नाल शंकर की आवाज़ में तुसी ये गीत सुनिया। मैंने पता है कि तुहानू बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सो अगला प्रोग्राम जरा शुरू होना है पंजाबी तड़का, वो लिए नंबर नोट कर लो 0181-2342-174 नंबर मिला के तुसी पहुँच सकते हो प्रोग्राम दे विच। सो अगला गीत प्ले करन लगी हैगी क्योंकि अज का दिन बहुत खास है, इंजॉय करो। तुस तो कर ही रहे हो, असी भी कर रहे हैं, तो नाले इस गीत भी इंजॉय कर लें।

कभी अलविदा ना कहना। फिल्म द गीत असीं एंजॉय कीता। वेयर्स द पार्टी टुनाइट यो। बड़ा मजा आ रहा अज, मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रहा खुशी में, की करा। वेल चलो हुण इजाजत लैनी पैनी है, प्रोग्राम इत्थे खत्म करना पैना। गीत बाहर तुसीं कितने नहीं जाना, कितने नहीं जाना, कितने नहीं जाना। इंजॉय करो अगला गीत जो तुहाडे लई प्ले कर रही हां। सो प्रोग्राम लैके हाजिर होऊंगी। केड़ा वाला, केड़ा वाला, केड़ा वाला? पंजाबी तड़का, पंजाबी तड़का, पंजाबी तड़का। वेल इंजॉय करो यह गीत।

0: दिशा स्कीम दे टेलीलॉ न्यायबंधु कानूनी साक्षरता ते जागरूकता प्रोग्राम नाल जुड़ो। कानूनी मदद टेलीलॉ ते टोल फ्री नंबर 1-44-54 ते वेबसाइट www.telelaw.in तो प्राप्त की जा सकती है। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है जी 11:18, प्रोग्राम चल रहा है पंजाबी तड़का, तुहाडे अपने फेवरेट चैनल 102.7 MHz FM रेनबो ते। ते ब्रेक ते जाण तो पहला जिन्हां दी कॉल आई सी, कुलजीत सिंह दी कॉल आई सी सानू हिसार तो, सो उन्हां दी फरमाइश ते प्ले करन लगे हां गुरदास मान दी आवाज़ च इस गीत नूं।

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है पंजाबी तड़का, ते अगले दोस्त साढ़े को पहुँच गए ने, नंबर मिला के 0181 23 44 174। हैलो
1: हैलो मैडम, सत श्रीकाल जी।
0: सत श्रीकाल जी, कौन गल कर रहे हो?
1: हरविंदर सिंह, पिंड गाजी जलंधर तो बोलदा
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा प्रोग्राम च।
1: थैंक यू मैडम, थैंक यू जी, बहुत बहुत तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है जी।
0: शुक्रिया जी। ते अज गीत केड़ा सुनना चाहोगे?
1: गीत मैडम जी, गीत तो मैं

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, 11:37 हो रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है पंजाबी तड़का, थोड़े अपने फेवरेट चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो ते, मैं थोड़ी दोस्त इंद्रप्रीत सेरा। अगले दोस्त साढ़े को पहुंच गए हैं 0181-2342-174 नंबर मिला के गल करते हैं। हेलो,
1: मां दी दुआ कदे खाली नहीं जांदी, मां दी बददुआ भी कदे टाली नहीं जांदी, भांडे मांज के चार पांच पुत्र पाल लेंदी, पर एक मां चार पांच पुत्रा तो संभाली नहीं जांदी। मैडम जी प्यार भरी सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। ये जड़ियां लाइनां तुसी बोलियां ना ना एक्चुअल च सच्चाई हैगी है, ते सब तो पहला दसो जी कौन गल कर रहे हो ते केड़े शहर तो?
1: सुखदेव सिंह बस्ती शेख जनक नगर जलंधर वालों सारे सुनने वाले श्रोतियां नूं प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल जी। ते मैडम जी बहुत ही वधिया तुसी प्रोग्राम कर रहे हो,
0: शुक्रिया जी।
1: परमात्मा तुहानूं चढ़दी कला विच रखे जी, इसे तरह सोहने सोहने प्रोग्राम लैके आउंदे रहो।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी तुहाडा। सुखदेव जी जिहड़ी तुसी गल कही है बहुत सही गल कही हैगी, अजकल देखिया इदां ही जांदा हैगा कि मां पूरा प्यार दिंदी है पर जदों मुंडे दी वारी आउंदी हैगी है ते सारिआं नूं नहीं असीं कह सकदे, कुछ बहुत अच्छे हुंदे ने जिहड़े ध्यान रखदे ने, पर कुछ इदां दे हुंदे ने जिहड़े कि इस चीज़ नूं समझदे नहीं।
1: बिलकुल जी, छोटे हुंदिआं दे बच्चे कहिंदे जी मेरी मां मेरी मां, ते जदों वड्डे हो जांदे ने फिर कहिंदे ने तेरी मां तेरी मां।
0: बिल्कुल सही गल है जी, ते बहुत अच्छे लगे तुहाडे विचार सुन के। ते सुखदेव जी गीत केड़ा सुनोगे?

0: जी दोस्तों, फटाफट अगले लास्ट लकी कॉलर ना गल करिए। हेलो,
1: हेलो, सत श्रीकाल मैडम।
0: सत श्रीकाल जी, कौन गल कर रहे हो?
1: अर्जन सिंह, पिंड माले वाला, जिला फिरोजपुर।
0: बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा प्रोग्राम च।
1: थैंक यू मैडम।
0: अर्जन जी, ऐदा है कि समा सिर्फ 4 मिनट रह गए ने प्रोग्राम खत्म होने च।
1: कोई नहीं, गाना प्ले कर दो
0: जी।
1: डोली सिंह दा लंबिया उड़ीका।
0: जरूर जी, तुहाडे लई प्ले करांगे ते गल करन लई बहुत बहुत शुक्रिया जी तुहाडा।
1: थैंक यू मैडम
0: जी। दोस्तों, इन्हां दी फरमाइश ते प्ले करन लगी डोली सिंह दी आवाज़ विच एह गीत। इसे गीत नाल मैनू वी दे दिओ इजाजत। प्रोग्राम पंजाबी तड़का इत्थे ही खत्म कर दी।

एफएम न्यूज हेडलाइंस। पश्चिमी बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नू लागू करन वाला देश दा छत्तीवां राज बनन जा रहा है। राष्ट्रीय प्रीख्या एजेंसी ने 21 जून नू होण वाली नीट यूजी मुड़ प्रीख्या लई शहरां दी जानकारी जारी कीती। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अज चंडीगढ़ च राष्ट्रमंडल सांसदी संघ इंडिया रीजनल जोन 2 कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। पंजाब भर च सुचारू और पारदर्शी ढंग वोटर सूचियां की विशेष गहन सोध SIR के मद्देनज़र राज्य के 117 विधानसभा हल्कों के सारे 24,453 वोट केंद्रां ते कल विशेष कैंप लाए गए। पंजाब राज अनुसूचित जातियां कमीशन वालों श्री मुक्तसर साहिब विखे दो दलित नौजवानों नाल होए तशद्दुद दे मामले च SSP श्री मुक्तसर साहिब तो 9 जून तक रिपोर्ट तलब। आकाशवाणी अज अपने 90 साल पूरे होने नूं मना रही है। इस मौके आकाशवाणी जलंधर वालों अज शामी 6:30 KL सैगल ऑडिटोरियम विखे एक शास्त्रीय संगीत समारोह एक शाम शास्त्रीय संगीत दे नाम करवाया जा रहा है। अप्रैल च हुई जंगबंदी तो बाद ईरान ने पहली बार इजराइल ते मिजाइल हमले किए। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों लई पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ समेत उत्तरी भारत के कई हिस्सों में लू चलन की पेशनगोई की है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जर्मनी के एग्जलैंडर ज़वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जितया। इस FM न्यूज हेडलाइंस ते हुण पेश है प्रोग्राम होम स्वीट होम। बस इस ब्रेक तो बाद

वेलकम बैक फ्रेंड्स, प्रोग्राम चल रहा होम स्वीट होम, तुहाडे अपने फेवरेट चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो ते, मैं थोड़ी दोस्त इंद्रप्रीत सेरा गल कर रही सी। मैं किस बारे, इस बारे कि तुहाडियां निक्कियां निक्कियां छोटियां छोटा छोटियां आदतां जिहड़ियां ने जो बदलियां जाण ते तुहाडी सेहत जिहड़ी है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। सब तो पहली चीज़ है, जिद्दां ही तुसीं उठदे हो कुछ भी खाण तो पहलां तुहानू पानी जरूर पीना चाहिए, वह भी प्लेन वॉटर। मानते हैं कि रात में कोई जीरे का पानी कोई मेथी का पानी इदा पी के रखते हैं, उन्होंने वह पानी पीते हैं मॉर्निंग उठ के, बट सब तो पहला उठ के कोशिश यही की जाए कि प्लेन पानी, सादा पानी पीता जाए, ना ही ठंडा, नॉर्मल। ये की है जी, तुहाड़ी पूरी रात डिहाइड्रेशन हुई है वह दूर हो जाएगी। एंड खाना खाने तो भी 15-20 मिनट पहला एक गिलास पानी का पीना चाहिए। वो देनाल की है कि जो तो तुसी खाना खाते हो ना 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे के बाद, तुहानू ना ऐदा महसूस होंदा कि तुहाड़ा पेट भरिया होया, तो इस टेक्नीक दे नाल तुहाड़ा मन थोड़ा खाने का करता है। तो जो तुसी थोड़ा खाओगे, लिमिट विच खाओगे, तो अपने आप ही उहदी डाइजेशन जल्दी होएगी एंड तुहानू जिहड़ी ओबेसिटी है, मोटापा है, उहदे वल तुहानू नहीं लैके जाएगी। दूसरी चीज़ की आती है कि लंच ते डिनर तो बाद 10 मिनट की वॉक करनी बहुत जरूरी है। मोस्टली देखा जाता है कि जो असं जॉब पर होंगे या काम कर रहे होंगे, बैठ के काम करने वाला जिन्हों का होंगे, खाना खा के उस टाइम बैठ गए या रात को खाना खा के उस टाइम सो गए, लेट गए, भाई पेट में थोड़ा जहा टाइम तो दो कि खाना डाइजेस्ट कर सके। इसलिए 10 मिनट की वॉक बहुत ही जरूरी हैगी है। ये जोड़ा है ग्लूकोज का इस्तेमाल के ना

होम स्वीट होम प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो तो अपने फेवरेट चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो ते मैं तुहानू कहा सी कि मैं तुहानू दसूंगी कि होर किहड़ियां किहड़ियां आदतां है तुसीं निक्कियां निक्कियां जिहड़ियां चेंज कर सकते हो तो तुहाडा जिहड़ा सेहत है उहदे विच काफ़ी सुधार आएगा। अगली चीज़ यह है कि खाना जो तुसीं खाते हो मतलब आराम नाल खाना चाहिए, ऐदा नहीं कि खाना मोहरे आ गया फटाफट खा के वेले ए गए ओ गए ओ गए ओ गए ओ गए, नहीं, खाने नू हमेशा टाइम दो, कम से कम 15-20 मिनट लगा के आराम नाल तसल्ली दे नाल खाना खाना चाहिए ते प्रॉपर तरीके नाल चबा के खाना चाहिए, क्योंकि ना जिहड़ा तुहाडी पूरी बॉडी है ना वो आपस में इंटरलिंक्ड है। जे तुसीं तेजी तेजी खाना खाते हो ना तुहाडा जिहड़ा पेट है ना उस ओ तो एक सिग्नल पहुँचता हैगा ब्रेन तक, जब तक वो पहुँचता है उन्नी देर तक तुसी ज़्यादा खा चुके होंगे हो, इसलिए हौली हौली खाओ चबा के खाओ। एक अमेरिकन स्टडी भी ये हुन मानती हैगी है कि जिन्ना तुसी आराम नाल चबा के खाना खाओगे ना तुहाड़ी कैलरीज जिहड़ियां कंज्यूम होणगियां। सो खाना खाओ आराम दे नाल खाओ, भाजड़ भाजड़ विच नहीं खानी है खाना खाना हैगा, उहदे लई कमांदे आ ते उहदे लई टाइम नहीं है, ये तो फिर गलत गल होगी। होर खाना खाते टाइम ना टीवी ना फोन कुछ भी कोल ना रखो, सिर्फ खाने वाल कॉन्सनट्रेट करो। जो थोड़े नाल थोड़ी फैमिली या फ्रेंड्स बैठे आ उन्हां दे नाल गलबात करके खाना खाओ, पर कोशिश यही करनी चाहिए है कि स्क्रीन टाइम यूज़ करके खाना ना खादा जाए, ज़्यादा बैटर रहेगा। यह मोस्टली प्रॉब्लम देखी जा रही है छोटे बच्चों, बच्चों के मूहरे जब तक कोई कार्टून ना लगे हो कोई पोएम ना लगी हो तब तक वो खाना नहीं खाते, उन्हां दी आदत खराब हो रही है। सो ये तो थोड़ा जा पेरेंट्स नू भी फोकस करना पैना, मैं सारे पेरेंट्स की गल नहीं कर रही, कुछ पेरेंट्स जिन्होंने देखा है मैं मोस्टली खाना खाते टाइम बच्चों के मूहरे कुछ ना कुछ पोएम या कुछ लगा देंगे ने कि बच्चे आराम नाल खाना खा लें, बट ऐदा हुंदा कि बच्चे का ध्यान खाने विच नहीं हुंदा, सिर्फ तो सिर्फ जो सामने चल रहा उहदे विच हुंदा। सो पोषण कित्थों मिलेगा, ध्यान तो है ही नहीं खाने पर। अगली चीज़ आती है कि रात को खाना जो तुम खा लेंगे हो तो डिनर टाइम इज़ ओवर एवरीथिंग इज़ फिनिश, उस तो बाद किचन बंद। यस, एक्चुअल च किचन बंद। खाना खाँदा एक समा हुंदा है, जे उस टाइम सारी फैमिली कट्ठे बैठ के खाना खा लेंदी है तो उस तो बाद तुहानू किचन नू बंद करना ही पेगा। जदों आप रात को उठ के निकी निकी स्नैकिंग करते हैं, कुछ भुजिया बिस्किट या कुछ वेफर्स या कुछ भी खाने हैं, उहदे नाल सब तो ज़्यादा नुकसान होंदा है तुहाडी बॉडी दा, तुहाडे डाइजेशन सिस्टम दा, तुहाडी स्लीप दा। सो किचन जदों खाना खा लिया रात को किचन बंद, बोर्ड लगा दो भी किचन इज़ क्लोज्ड, सवेरे खुलेगी 6 बजे। सो बाई चांस जे तुहानू रात को थोड़ी क्रेविंग हो भी रही है कुछ खाने की, उस टाइम पानी पियो, हल्का 2 घुट पानी दे आराम नाल पीने है। ओ गट गट गट गट गट कर करके नहीं पीना है, आराम ना स्लोली 2 घुट भरे पानी दे आराम नाल उनू पीना है, जिदे नाल कि थोड़ी जिहड़ी क्रेविंग वाली प्रॉब्लम हैगी है ना वो थोड़ी ठीक हो जाएगी। सो तुहानू थोड़ा जिहा रिलैक्स मिल जाएगा तो उस तो बाद तुसी आराम नाल सौ सकते हो। तो एक होर चीज़, छोटी जिहड़ी गल असी कर रहे हैं, मतलब ये छोटी जी गल कर रही हैं पर इहदे फायदे बहुत ने, जिदा छोटी छोटी आदतां चेंज करनिया ना उस तरीके दे नाल खाण दे टाइम तुसी छोटी कटोरी या फिर छोटी प्लेट दे विच खाओ, मतलब स्मॉल पोर्शन, जिन्नी प्लेट वड्डी हुंदी उन्ना ज़्यादा असी समान विच पा लैने ते फिर खाने हैं, नहीं, यह बहुत ही अच्छी टेक्नीक हैगी है। जे छोटी प्लेट विच खाना खाओगे ना तो तुसी हिसाब दा खाओगे एंड तुहाडा पेट भर भी जाएगा। एंड मोस्टली जिहड़े चाइनीज़ पीपल है या जापनीज़ है वह चॉपस्टिक्स यूज़ करते हैं। चॉपस्टिक्स का फायदा पता की है, निकी निकी बाइट तुहाडे मूंह विच जाती है तो थोड़ा जा खाना खा के तुसी संतुष्ट हो जाते हो। सो वो चीज़ा जड़ी है ना थोड़ी जी अपनी लाइफ के अपनी निकी निकी हैबिट्स नू चेंज करना शुरू करो ताकि तुहाडी सेहत जड़ी है ना वो अच्छी रहे। सेहत है सब कुछ है ना, ये गल सही है ना, जो तुहाडी सेहत हैगी है अच्छी है तो फिर सब कुछ अच्छा लगता है। सो ये सी निक्किया निक्किया चीज़ां जिहड़ियां तुसीं अपनी लाइफ में चेंज करनिया है, होपफुली तुहानू बहुत बेनीफिट होएगा। फिलहाल दी कड़ी अगला गाना जिहड़ा है मैं प्ले करन लगी हाँ गुरसेवक मान दी आवाज़ दे विच, प्रोग्राम इस तरह ही चलता रहेगा, इंतज़ार हुण तुहानू है रेसिपी दा। बई इन्नियां गल्लां हो गई हैं, हुण थोड़ी जी मज़ेदार, आह मेरे मुँह च पानी आ आण लग जांदा जदों भी मैं रेसिपी की गल कर

सो रेसिपी लिए तुसी की करना जी, डायरी एंड पेन तैयार रखना हैगा, क्योंकि मैं इनग्रीडियंट्स दसने हैं, उस तो बाद वो बनाते कि वो दसना हैगा। सो इंतज़ार करो, इस गीत तो बाद तुहानू दसदी हां मज़ेदार रेसिपी।

जी दोस्तों, इन्ना वधिया बेहतरीन मज़ेदार गाना तुसी सुनिया, पर हुण इजाजत लैनी पैनी है प्रोग्राम इत्थे ही खत्म करन दी। एक बार फिर तुहानू सारयां नूं बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत वधाइयां, कंग्रेचुलेशनस 90 साल आकाशवाणी दे नाल। सो दोस्तों, मैनू दे दिओ इजाजत, आखिरी गीत किशोर कुमार

हाँ, ते लता मंगेशकर दी आवाज़ दे विच प्ले करन लगी हाँ मैं। फिल्म दा नाम है प्यार किए जा। सो इसे गीत दे नाल मैनू दे दिओ इजाज़त। दिस इज़ योर आरजे इंद्रप्रीत सेरा सिंह यू बाय एंड टेक केयर।

पिछे भी दर्द वसदा है, मुस्काना दे पिछे भी दर्द वसदा है, यह दिल ही जानदा है किन्ना कुछ सहंदा है। दोस्तों अज दे शो विच ना असीं गल करांगे प्यार दी, उन्हां दी यादां दी, जे कदे होर पुरानियां नहीं हुंदियां, जो कि पुरानियां नहीं हुंदियां, वैल आपां गलबात करांगे लोकां दे जज्बातां दीआं, लोक की सोचदे ने, उन्हां दा की मनना है, ते उह किस चीज़ नूं फील करदे ने। तुसीं वी साडे नाल अपनियां फीलिंग सांझियां कर सकदे हो दोस्तों, कोई शायरी, कोई गीत जां कोई कहानी जो तुहाडे दिल दे करीब होवे। एक होर छोटी जी गल है दोस्तों कि कहिंदे ना कुछ रिश्ते लफ्ज़ां नाल नहीं अहसासां नाल बनते ने, जिहड़े दिल विच वस जाण वो कदे नहीं मुकदे ने। तां तैयार हो जाओ इह सोहणे सफर लई, जिते हर सुर हर जिहड़ा शब्द तुहाडी दिल नूं छूएगा, ते रेडियो की आवाज़ नूं थोड़ा जिहा ना वधा लवो, ते अपने जज्बातों नूं खोल खोल के जीण दिओ। यह दिल अज शायर है जिथे दिल बोलता है ते दुनिया सुनती है। वैल दोस्तों मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश, ते तुसी अपनियां शायरी पोइट्रीज तुसी इस नंबर ते लिख के भेज सकते हो। साडा नंबर है जी 9855101027, ये साडा वट्सएप नंबर है। तुसी अपनी शायरी भेजो ते थोड़ा आरजे दोस्त रमनीश इसनों पढ़ेगा, ते आपां मैं क्या जी मज़े करांगे, जरूर सुनांगे। उस तो पहला एक प्यारी जी एक पेशकारी हो जाए।

दोस्तों तुझ दोन रे प्रोग्राम दिला शायर है। ते एक गल दसनी जानना दोस्तों कि अज दा जिहड़ा प्रोग्राम ना दिला शायर है बस अद्धे घंटे दा होवेगा। बस कुछ मिनट रह गए इस नूं खत्म होण लई ते उस तों बाद साडा अज दा स्पोंसर शो दिल्ली तों प्रसारण होवेगा 2:30 बजे। उस तों पहलां साडे स्रोतियां ने सानूं मैसेज भेजे ने, लिख रहे ने कि सत श्री अकाल जी, तुसी मेरी शायरी पढ़ना जी, मैं नवा स्रोत थोड़े इस प्रोग्राम का। ओके जी, नाम हैगा जी सुखा बडाली, सुखदीप सिंह तिमान पिंड बडाली तो लिख रहे ने कि जी हिंदू लोग कदे नमाज अदा नहीं करते, विकन वाले लोग लिहाज नहीं करते, ना यकीन आवे तो तू दिल देख देख लवी, टुटे दिल कदे आवाज़ नहीं करते। क्या बात है जी, नवे स्रोते ने मारी एंट्री टुटे दिल दे नाल, मतलब आवाज़ नहीं की इन्होंने भी वैसे तो कि हाँ बस, पर हाँ उन्होंने ये कहता कि मैं नवा स्रोता हाँ। क्या बात है जी। उस तो बाद साढ़े किरण अरोला जी लिख रहे हैं कि FM एयर

आकाशवाणी दिल्ली शायर है आरजे रमनीश सर जी, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून किरण नरूला जी, ऑल इंडिया रेडियो फाउंडेशन जी, बहुत बहुत बधाइया 90 साल पूरे होने ते। वेल वेल सारे स्रोतियां नू भी आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने बहुत बहुत बधाइया, तो खासकर उन्होंने स्रोतियां जो साढ़े नाल शुरू तो ही जुड़े हुए हैं, तो असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं थोड़ा सारे का जो कि तुसी आकाशवाणी नू इन्ना ज़्यादा प्यार दिता। दोस्तों लिख रहे हैं कि दिल से दिल तक वर्ल्ड ओशियंस डे भी है अज। हाँ, वर्ल्ड ओशियन डे भी है अज, काश मैं भी ओशियन घूमे आंदा। बस कोई गल नहीं, लिख रहे ने कि ये कैसा रिश्ता है, ना खून का है ना कोई नाम, फिर भी सबसे करीब वही लगता है। ओह हो, क्या बात है जी। ये कैसा रिश्ता है, ना खून का है ना कोई नाम, फिर भी सबसे करीब वही लगता है। कभी कभी वह पास नहीं होता, फिर भी हर बात उसी से का कहने का मन करता है या कहने का मन करता है। ना रोज मिलना ना हर पल साथ, फिर भी सुकून उसी को मिलता है। जैसे ही एफएम रेनबोज, हाँ जैसे ही एफएम रेनबोज 102.7 जलंधर ऑल इंडिया रेडियो। थैंक यू सो मच सर जी। किरण नरूला जी कमाल करती, बहुत सोना लिखा तुसी। ते किरण नरूला जी ने ना हर एक लाइन बाद ना दिल पाया, मतलब दस रहे कि इतों लाइन खत्म है तो दूसरी लाइन है, क्या बात जी। उस तो बाद साढ़े एक सरोते ने, वो है जी सुखदेव सिंह है जी। इन्होंने सानू भी एक तस्वीर भेजी है जो लिखी हुई है कि लिख रहे ने कि जो नज़र से गुजर जाया करते हैं वो सितारे अक्सर टूट जाया करते हैं। कुछ लोग दर्द को बयां नहीं करते, बस चुपचाप बिखर जाया करते हैं। ये तो है जी, ये तो सच है जी। देखो जी की होंदा ना, बिखर जाते ने लोग, गल अगे शेयर नहीं करते। काश ये भी होंदा होगा कि नहीं, उन्होंने पता है कि मैनू समझन वाले बहुत घट ने, ते उहदा कारण भी ये भी हो सकता है दोस्तों। वैल दोस्तों तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम दिला शायर है, ते जिवें असी गल कीती सी कि अज दा प्रोग्राम सिर्फ 2:30 तक ही होगा, तो सारे स्रोतों को बेनती है फटाफट अपनी शायरीज भेजो, तो उस बाद प्रोग्राम चलेगा, दिल्ली तो प्रसारण होगा। उस पहले एक प्यारी जी एक पेशकारी थोड़े सामने।

0: ईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, अपनों के बिना अधूरी लगती है।
0: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
0: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
0: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
0: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
0: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
0: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
0: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
2: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
0: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
2: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
2: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
2: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
2: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित

0: इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
1: जी
2: प्यारे बच्चों नमस्ते, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना।
1: क्यों भला?
0: क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई, उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था, वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
3: मंगला
4: हाँ?
3: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
4: ठीक है।
3: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना,
4: हाँ हाँ,
3: उठाकर मुझे

0: अच्छा ये लो कोयले का टुकड़ा।
1: हाँ
0: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
2: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
1: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
0: अरे वाह।
1: और ये इसकी पूंछ।
0: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
1: अच्छा ले कोयला ले और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
0: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
1: बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
0: ठीक है
1: अब बना।

0: बता दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
1: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
0: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
1: ओ, बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
0: ठीक है
1: हाँ, अब बना।
2: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
0: भाई हा? अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
1: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
0: ठीक है
1: चल चल चल चल, चल। हाँ, हम हाँ, दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
3: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए, और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने, देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
2: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
6: मालिक मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था, आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

कारों से उच्च शिक्षा पाएगा और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती? त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा। वहां के विद्वानों, गुणियों और कला

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राज्य की रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। यह हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब यह हमारे संरक्षण में है।
2: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
3: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
3: जी।
0: रवि वर्मा यही करने लगे, तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेंसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेंसन,
4: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
4: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा, मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
2: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेंसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
4: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा।

0: सिखाऊंगा उसे, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
1: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
2: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: नमस्कार। मस्तिष्क ट्यूमर एक गंभीर समस्या है जो न केवल रोगियों के लिए बल्कि उनके परिवारों और समाज के लिए भी एक चुनौती होती है। हमें इसके बारे में जागरूकता फैलाने और उपलब्ध उपचार विकल्पों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय को। बहुत बहुत स्वागत है आज के रेडियो डॉक्टर में।

0: भी श्रोताओं का और साथ ही साथ हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का। डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय, प्रोफेसर एंड यूनिट हेड, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में।
1: थैंक यू शालिनी जी, सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर 102.6 पर। साथ ही साथ आप इसे सुन रहे हैं प्रसार भारती के न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। और जैसा हमने बताया, आज का विषय है ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क ट्यूमर। इस बारे में हम और जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो जानकारी आप विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए सही जो प्लेटफॉर्म है वो है रेडियो डॉक्टर। और रेडियो डॉक्टर में प्रतिदिन हम एक ऐसा विषय, एक ऐसे विशेषज्ञ के साथ यहां उपस्थित होते हैं जिससे आपकी समस्या का भी समाधान हो जाए और साथ ही साथ आपकी जानकारी में भी वृद्धि हो जाए। तो पहले आरंभ करेंगे इस कार्यक्रम का एक खूबसूरत से गीत के साथ और फिर लौट कर आएंगे, आपके प्रश्नों को शामिल करेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं डॉक्टर साहब हम सबके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर से संबंधित। एक प्यारा सा गीत सुनते हैं और फिर हम लौटेंगे और बात करेंगे डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय से।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और आज हमारा विषय है ब्रेन ट्यूमर। तो पहले जानते हैं डॉक्टर साहब से ब्रेन ट्यूमर होता क्या है। डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत भय जुड़ा हुआ है इस शब्द के साथ। पहली बार ट्यूमर, कहीं का भी ट्यूमर हो, और फिर जब ब्रेन ट्यूमर की बात होती है तो काफी मन में एक संशय भी होता है, भय भी होता है। क्या है एक्चुअली ब्रेन ट्यूमर?
1: शालिनी जी, ट्यूमर जैसे कि आपने कहा, एक अपने आप में भयभीत करने वाला शब्द है, और ऊपर से ब्रेन ट्यूमर तो और है। बट मैं लोगों को ये निश्चिंत करना चाहूंगा कि इससे भय में होने का कोई मतलब वो नहीं है, आपको डरने की कोई बात नहीं है।
0: अच्छा,
1: ये एक लाइलाज बीमारी नहीं होती है। ऐसे बहुत से ट्यूमर्स होते हैं जिसका आप इलाज कराएंगे और आप एज गुड एज नॉर्मल लाइफ जियेंगे, जैसे कि आप पहले जिया करते थे। तो डरना नहीं है और इसका इलाज कराना, ये मेरी सभी श्रोताओं से जो भी

0: सुन रहे हैं इसको, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इलाज कराइए इसको, लाइलाज समझ के अपना इलाज बंद मत करिए, डॉक्टर को दिखाइए और इसका इलाज कराइए। ब्रेन ट्यूमर है इस कुछ नहीं, जैसे आप और भी ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन में, सेल्स होते हैं उसके सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, उसका जब मल्टीप्लिकेशन होता है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होता है तो ये एक ट्यूमर का शक वो रूप ले लेता है। और फिर इसका हम अलग अलग प्रक्रियाओं से, अलग अलग पद्धति से हम इसका इलाज करते हैं और इलाज संभव होता है इनका।
1: जी बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात आपने बिल्कुल कार्यक्रम के आरंभ में आशावादी बिल्कुल रखी है कि ये चुनौती जरूर हो सकती है कि ब्रेन ट्यूमर है, पर ये ऐसा नहीं है, लाइलाज नहीं है,
0: नहीं।
1: और जागरूकता हमारे अंदर होनी चाहिए। इसीलिए हमने आज इस कार्यक्रम को हमने यहाँ पर आयोजित किया है कि आपके माध्यम से हमारे वो श्रोता जिन जो आपकी बात सुन रहे हैं वो समझें कि डरना नहीं है, हमें बस इस चीज को समझना है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो भी हम बात करेंगे क्या सिम्टम्स होते हैं, पर पहले हम ये समझ लें कि क्या, जैसे आपने कहा कुछ ऐसे प्रकार हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, तो क्या क्या प्रकार हो सकते हैं?
0: जी, ब्रेन ट्यूमर्स का अगर हम क्लासिफाई करने जाएंगे तो वो तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, बट मोटा मोटा देखेंगे तो ब्रेन ट्यूमर्स में जो ब्रेन में आपके सेल्स होते हैं डिफरेंट, जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बोलते हैं, एस्ट्रोसाइट्स बोलते हैं, इनके सेल्स से जो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है जो कि कंट्रोल में नहीं होता है, तो ये एक तरह का ट्यूमर होता है। कुछ ट्यूमर्स वो होते हैं ब्रेन में जो शरीर में कहीं और ट्यूमर होता है जो कि फैल के ब्रेन में आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्यूमर, जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। वो ये दो तरीके के मोटा मोटा ट्यूमर्स होते हैं। तो कुछ ट्यूमर्स इसमें से ऐसे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेनिन्जियोमास होते हैं, जिनको अगर हम पूरा तरह से निकाल देते हैं तो पेशेंट एकदम नॉर्मल हो जाता है और उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है और अपनी जिंदगी जैसे बगैर ट्यूमर के लोग जीते हैं वो वैसे ही जीता है। तो मैं फिर से वही कहूंगा कि ट्यूमर का इलाज कराइए, उससे डरिए मत, इलाज संभव है।
1: बहुत सारे जो प्रश्न होंगे वो आप सबके दिमाग में भी घूम रहे होंगे कि ये क्यों ना पूछ लिया जाए डॉक्टर साहब से, तो बिल्कुल स्वागत है। और हमारे बहुत सारे श्रोता भी जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर भी हमारे साथ हमारे कॉलर्स हैं, तो इनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, हेलो।
2: हेलो, नमस्ते शालिनी जी।
1: जी नमस्ते मिसेस बेदी, स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
2: वैसे आपके प्रोग्राम में कि हम चिपके ही रहते हैं।
1: ये आप ही के शब्द हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप चिपकी रहती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप रहें।
2: मैं अपनी योगा क्लास का टाइम बदल रही हूँ कि मेरा ये प्रोग्राम मिस हो जाता है।
1: हाँ, पर योगा क्लास रखिए जरूर, क्योंकि बहुत
2: नहीं,
1: सारे
2: नहीं,
1: लोगों
2: नहीं,
1: को आप लाभान्वित कर रही हैं।
2: 25 साल है मेरे।
1: अरे वाह, क्या बात है। तो चलिए आज का जो विषय है।
2: बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: बहुत नमस्कार जी डॉक्टर साहब। एक तो मैं जानना चाहती हूँ कुछ वार्निंग सिग्नल आते हैं हमें, दूसरी बात कि मेरी नीस है उसको कई बार सिर में बहुत दर्द उठता है, वो माइग्रेन भी नहीं निकला, उसको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए कि पता लगे कि क्यों दर्द उठती है?
0: देखिए, सर दर्द के कारण बहुत सारे होते हैं, उसमें से ट्यूमर भी एक कारण होता है, बट हर ट्यूमर सर दर्द, मतलब ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है तो ब्रेन ट्यूमर है। और माइग्रेन जहां तक है कि जी, जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं माइग्रेन में, जनरली वो टेस्ट सब नॉर्मल ही आते हैं। माइग्रेन एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है जो कि डॉक्टर बनाता है, और सर दर्द का कारण क्या है उसके लिए तो आपको बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, वो डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि क्या क्या आप टेस्ट करा सकते हैं और इसका कैसे इलाज संभव है।
2: और डॉक्टर साहब, कोई वार्निंग सिग्नल होते हैं?
0: वार्निंग सिग्नल तो देखिए ऐसे तो नहीं होते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये है तो आपको ट्यूमर हो सकता है, बट ये है कि हाँ, ट्यूमर के कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं बट आपके ऐसी लोकेशन पे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जहाँ बोलने का सेंटर होता है, जहाँ आपको चीजों को समझने का सेंटर होता है, तो वो छोटा सा ट्यूमर सिम्टम प्रोड्यूस करेगा तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही है। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो काफी बड़े हो जाते हैं और आपको मेजर सिम्टम नहीं आएंगे तो फिर आप डॉक्टर, आपको लगता है मेरा ऐसे ही सर में दर्द हो रहा है, या ठीक है आदमी इग्नोर कर देता है, बट बाद में जब आप स्कैन कराते हो पता चलता है कि आपके ब्रेन में बहुत बड़ा ट्यूमर है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी लोकेशन पे है उस पे आपके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं।
2: थैंक यू सो मच।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस बेदी कॉल करने के लिए और ये प्रश्न पूछने के लिए जो हम सबके दिमाग में थे। डॉक्टर साहब, आपने बोला बहुत एविडेंट सिम्टम्स नहीं है, तो किस तरह से, जैसे मिसेस बेदी ने भी जानना चाहे, कब वो सचेत होने की जरूरत है? क्योंकि सिर दर्द एक बहुत बहुत ही कॉमन सी समस्या है कि आए दिन होती है और बहुत कैजुअली भी हम उसको ले लेते हैं, व्हेन इट बिकम्स अ वार्निंग साइन।
0: देखिए, सर दर्द के 90% केसेस में तो मैं बोलूंगा कि ऐसा कोई गंभीर बीमारी नहीं होती है इस कारण सर दर्द होता है। अमूमन टेंशन हेडेक्स होते हैं, क्लस्टर हेडेक्स होते हैं, आपको माइग्रेन होता है आपको, ये एक अपने आप में बीमारियां जरूर है बट ये ट्यूमर के कारण जनरली इस टाइप के हेडेक्स नहीं होते हैं। बट आप ये मान के चलिए कि आपका बहुत लंबा सर दर्द रहता है, सर दर्द के साथ कई बार उल्टियां होती हैं, इसके अलग अलग सिम्टम्स

0: होते हैं कि उल्टियों के साथ आपको सर दर्द में आराम पड़ेगा, और भी बहुत एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं, जैसे आपका ब्लड प्रेशर होता है, दिमाग का प्रेशर जब बढ़ता है ट्यूमर के कारण, तो उसके कारण भी और बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। अगर वो सारी चीज़ें अगर आप में डेवलप हो रही हैं तो आपको सचेत रहना पड़ेगा कि कहीं आपके ब्रेन में कुछ है तो नहीं।
1: जी जी, एक और हमारे कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो,
2: पहले तो शालिनी मैम को बेहद शालीनता से ही नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार,
2: और डॉक्टर साहब को भी लगे हाथों नमस्कार।
0: धन्यवाद जी, नमस्कार आपको भी।
2: सर मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ करमपुरा से।
1: जी राजेंद्र जी, समस्या क्या है, आप प्रश्न पूछ लीजिए।
2: पहला सवाल तो है कि अगर मान लीजिए किसी को पता चल जाए या मालूम हो जाए कि उम्र है, तो अगर आपकी पास आए तो उसका इलाज आप मेडिसिन से ही कर लेते हैं या सर्जरी ही करनी पड़ती है? पहला सवाल तो मेरा ये है। और दूसरा सवाल ये है कि मुझे अतीत में सिर में जो है सिगरेट जला का बॉल लगी और मेरी बाएं कान के नीचे गिल्टी भी है, तो ये कुछ अगर अतीत में सिर में चोटें लगी हो तो क्या उससे भी प्रेजेंट एट प्रेजेंट जो है सिर में ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस होते हैं? स्लीप एपनिया और स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो मेरे सिर में दर्द तो खैर नहीं है सर। हाँ। तो मुझे मानसिक थकावट जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे लोग आधा एक घंटा काम करते हैं फिर ब्रेक लेते हैं, चाय वाय पीते हैं, ठंडा खाने पीते हैं।
1: जी जी जी,
2: तो मेरे को शोर शराबा जो है ना और हो हल्ला वो और जो है ये प्रदूषण की जो होते हैं ये मुझे बर्दाश्त नहीं होते, मुझे गुस्सा जो है जल्दी आ रहा, दिमाग मेरा गर्म जल्दी।
1: जी जी राजेंद्र जी, हमने सब आपके प्रश्न नोट कर लिए हैं, एक एक करके डॉक्टर साहब से पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, मेडिसिन या सर्जरी ही इलाज है ये जानना सबसे पहला इनका ये प्रश्न था राजेंद्र जी का, कि इसका इलाज किस तरह से किया जाता है। वैसे ये मेरा क्वेश्चन भी था ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे बात करने में।
0: ट्यूमर्स के लिए मैं जहाँ तक आपको बात करूंगा कि एस सच मेडिसिन तो अवेलेबल नहीं है, मैं जो आपको बोलूंगा कि जो आप मेडिसिन खाइए और आपका ट्यूमर चला जाएगा। बट हाँ, मेडिसिन के अलावा और भी बहुत सारे रेडिएशन होते हैं, ये कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो रेडिएशन को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत जब साइज में छोटा होता है तो वो रेडिएशन से रिस्पॉन्ड करते हैं, उससे ट्यूमर आपका जा सकता है। बट काफी मेजोरिटी ऑफ जो ट्यूमर जो होते हैं उसमें सर्जरी आपको करानी पड़ सकती है।
1: जी, और मेडिसिन कोई नहीं है?
0: मेडिसिन बेसिकली सपोर्टिव मेडिसिन होती है कि अगर आपको ट्यूमर के कारण मिर्गी के दौरे आ रहे हैं तो आप उसके लिए दवाई देते हैं, या ट्यूमर के कारण आपके ब्रेन का प्रेशर बढ़ रहा है या उसमें सूजन आ रही है तो आप उसकी दवाई देते हैं,
1: सिम्टोमेटिक ही होता
0: है। बट कुछ मेडिसिन आजकल ये आई है कि मतलब रिकरेंस होता है ट्यूमर का, मतलब ट्यूमर को आपने निकाल दिया दोबारा ना हो, इसको डिले करने के लिए कुछ आजकल मेडिसिन निश्चित तौर से आती हैं। बट एज सच मेडिकेशन ऐसे कोई नहीं है कि मैं आपको ये दे दूं कि आपको ये ट्यूमर है तो आपको ट्यूमर चला जाएगा।
1: जी जी, और ये डॉक्टर ही बता पाएगा कि क्या करना है,
0: क्या इलाज है, वो डॉक्टर से ही संपर्क करें।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये इन्होंने एक प्रश्न किया था कि कभी बचपन में या लंबे समय पहले चोट लग गई हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो कारण बन जाए?
0: नहीं, अमूमन ये ऐसा नहीं होता है कि चोट का कारण से आपको ट्यूमर हो, ऐसा संभव नहीं है।
1: तो क्या कारण होता है फिर, एक्चुअल रीजंस क्या
0: है? के आज तक देखिए कारण तो स्पेसिफिकली पता नहीं चल पाए हैं, बट कुछ मैं बोलूंगा कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं कि जिन पेशेंट्स में देखा गया है कि जिनको ट्यूमर हुआ है, जैसे आप रेडिएशन एक्सपोजर आपका अगर बहुत ज्यादा होता है तो उसमें उन पेशेंट्स में बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि उनको ट्यूमर डेवलप हो। दूसरा जेनेटिक बहुत बड़ा फैक्ट, कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो कि जेनेटिक होते हैं कि आपके पुश्तों में किसी को ट्यूमर हो, जीन्स में कुछ खराबी हो, इस कारण आपको ट्यूमर हो सकता है। तीसरा होता है जो कि आपके शरीर में कहीं और ट्यूमर हो वो फैल के आपके दिमाग में आ जाए, तो ये कुछ कारण होते हैं जिससे ब्रेन ट्यूमर होते हैं। बट एज सच स्पेसिफिक क्या कारण है ये अभी तक नहीं पता चले।
1: जी, और कान के नीचे अगर गिल्टी है जैसे उन्होंने कहा है तो उसका भी चेकअप कराना जरूरी है?
0: जी बिल्कुल, अगर आपको एक लॉन्ग स्टैंडिंग आपको कुछ लग रहा है कि कुछ सूजन है कान के नीचे हड्डी में कुछ है तो एक बार डॉक्टर को निश्चित
1: दिखा लीजिए। और थकावट और स्लीप डिसऑर्डर ये भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं क्या?
0: देखिए अगर कुछ हिस्से के ट्यूमर्स होते हैं जिसमें नो डाउट ये सब चीजें होती हैं, बट जैसे इनकी बातों से मुझे लग रहा है कि इट्स मोर ऑफ साइकोलॉजिकल, इनको थोड़ा सा है, इनको एक साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करिए और ठीक हो जाएगा इनका।
1: तो चलिए, सारे प्रश्न जितने आपने अभी पूछे थे हमने ले लिए राजेंद्र जी, और उम्मीद है आपको जवाब मिल गए। हमारे एक और कॉलर वेट कर रहे हैं। हेलो
3: हेलो
1: जी,
3: प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव शालिनी मित्तल जी को और गोविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार।
1: जी चट्ठा जी, आप अपना प्रश्न करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय हमारे साथ हैं।
3: डॉक्टर राहुल को भी मेरा सादर प्रणाम।
0: जी नमस्कार जी।
3: डॉक्टर साहब, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है
0: जी,
3: उनको ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा हो सकता है? नंबर टू, अगर किसी को डिटेक्ट हो जाए तो उसको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? नंबर तीन, ये ब्रेन ट्यूमर कभी कैंसर का रूप भी ले सकता है, कृपया बताने का।

0: करें, धन्यवाद।
1: देखिए, ब्लड प्रेशर से ट्यूमर का तो ऐसा कोई सीधा लेना देना नहीं है, बट मैं आपको ये कहूंगा कि ब्लड प्रेशर से दूसरी बहुत कॉमन बीमारी होती है जिसको हम ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा हो रहा है तो ब्रेन हैमरेज का रिस्क जरूर बढ़ जाता है। तो मेरी यही सलाह है कि ब्लड प्रेशर एकदम कंट्रोल में रखिए, डॉक्टर को दिखाइए और जो भी वो सलाह देते हैं उसको फॉलो करिए। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं ब्रेन में कि जो आपको आप निकाल देते हैं बट वो पूरी तरीके से नहीं जाते हैं, वो उसमें रिकरेंस होता ही होता है, तो उसका कुछ ऐसा इलाज नहीं होता है। आप लाइफ स्पैन आपका बढ़ जाएगा बट क्योर नहीं होता उसमें। कुछ ट्यूमर निश्चय ऐसे भी होते हैं ब्रेन में
2: और
1: आपके।
2: ट्यूमर, जैसे कैंसर की बात करते हैं तो ट्यूमर भी मैलिग्नेंट नॉन मैलिग्नेंट
1: हाँ जी,
2: कैटेगरीज में होते हैं
1: बिल्कुल
2: डॉक्टर
1: बिल्कुल
2: साहब?
1: होते हैं। ब्रेन में भी ऐसे ही होता है कि कुछ ट्यूमर्स होते हैं कि जो कि बिनाइन होते हैं, आपने इसको एक बार निकाल दिया, आप नॉर्मल हो गए हैं, आप नॉर्मल जिंदगी जियेंगे अपनी। कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जिसमें आप सर्जरी भी करा लेते हैं, रेडिएशन भी करा लेते हैं, आपकी लाइफ स्पैन तो थोड़ा सा बढ़ जाता है बट वो रिकरेंस होता ही है उन ट्यूमर्स में। तो
2: जी
1: या फिर जो आपके शरीर में कहीं और से ट्यूमर जो आते हैं वो थोड़ा सा खराब ग्रेड में समझा जाता है, उसका भी इलाज होता है बट वो पूरी तरीके से क्योर संभव नहीं होता
2: तो ये
1: उनका।
2: आप बता रहे हैं कि रिकरेंस काफी होता है तो?
1: डिपेंडिंग अपॉन ट्यूमर का क्लास क्या है उस
2: अच्छा
1: पर, कुछ ट्यूमर में रिकरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है, कुछ ट्यूमर में निश्चित तौर पर रिकरेंस होता है। कुछ ट्यूमर ऐसे भी होते हैं कि डिपेंड कि आपको किस लोकेशन पर ट्यूमर है, आप अगर उसको हम पूरा नहीं निकाल पाते हैं तो उसमें रिकरेंस का चांस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर पूरा निकालने जाएंगे तो क्षति ज़्यादा हो जाएगी आपको, उसमें थोड़ा रिकरेंस का चांस निश्चय होता है।
2: और डॉक्टर साहब आपने बताया कि सर्जरी ज्यादातर की जाती है क्योंकि आप उसको रिमूव करते हैं और फिर टेस्ट करते होंगे कि मैलिग्नेंसी है कि नहीं है, कितना सक्सेस रेट है? बिकॉज पीपल आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ दिस टाइप ऑफ
1: देखिए,
2: ऑपरेशंस।
1: परसेंटेज में क्लासिफाई करना तो मुश्किल है बट
2: अच्छा
1: मैं आपको ये बोलूंगा कि सर्जरी एज सच में अगर आप जाएंगे, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ कि 90-95% जो पेशेंट्स होते हैं सर्जरी सक्सेसफुल होती है, क्योर नहीं होता, हो सकता है ट्यूमर का आपका, बट ऐसा नहीं होगा कि आपने सर्जरी कराई और आपको वेंटिलेटर पे चले गए या आपकी मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं होता। तो इलाज जरूर कराएं, और किस टाइप का ट्यूमर है इस पे आपका इलाज और इस पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आपको कितना मतलब सही रहेंगे आप।
2: जी जी बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य यही है कि आज जो भी प्रश्न ब्रेन ट्यूमर से संबंधित आप जानना चाहें, जिनका समाधान आप जानना चाहें, वो इस कार्यक्रम से आपको मिल जाए। हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, आप रेडियो डॉक्टर में हैं FM रेनबो पर। हेलो
3: नमस्कार जी।
2: जी नमस्कार
3: सर को भी नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी
3: सर, मैं यामिन भाई, रेडियो वाला, किरोड़ी लोनी जिला का
2: जी। यामिन भाई प्रश्न करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं।
3: मैं सर से ये जानना चाह रहा था, जैसे कि दिमाग में ट्यूमर हो जाता है सर के अंदर, तो उसको निकलवा देते हैं, जैसे ऑपरेशन करके निकाल देते
2: जी,
3: हैं
2: बिल्कुल, हाँ।
3: उसके बाद शरीर में क्या चेंजिंग आ जाती है, जैसे कि आवाज भी चली जाती है या हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं, ऐसा भी हो जाता है? हमारे रिलेटिव को ऐसा हो चुका है।
1: देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका ट्यूमर की लोकेशन क्या है। अगर आपका ट्यूमर उस हिस्से के पास में है जिससे आपके बोलने का कंट्रोल होता है आपके दिमाग में, या ट्यूमर उस हिस्से में है जिसमें आपका हाथ पैर का कंट्रोल होता है, तो निश्चय तौर पे कभी ऐसा होता है कि आप सर्जरी कराते हैं तो ये सब चीज़ों में आपको आज ऐसा बता रहे कि आवाज़ चली जाना, हाथ पैर में कंट्रोल आना। बट आज की डेट में जो टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस हो गई है कि इतने सारे गैजेट्स आ गए हैं कि आप अगर उस सर्जरी में अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो इन सब चीजों की संभावना होने की मैं जीरो तो नहीं बोलूंगा बट काफी कम हो जाती है। आप पहले से पता चलता है कि आपका बोलने का सेंटर है, ट्यूमर से कितना दूर है, आपको कितने दूर तक जाना है, ये सब आप सर्जरी से पहले प्लान कर सकते हो आप।
2: और अगर सर्जरी सक्सेसफुल होती है तो क्या ये जो चीजें बॉडी में इफेक्ट कर चुकी हैं ये वापस ठीक हो जाती हैं?
1: कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैडम ठीक हो जाती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक बार खराब हो गई तो
2: हो
1: फिर
2: गई
1: वो
2: तो
1: खराब
2: हो गई,
1: रहेगी।
2: जो कोई नर्व्स रिलेटेड चीजें हैं वो
1: जी
2: ठीक
1: जी
2: नहीं हो
1: जी
2: पाती हैं।
1: जी
2: एक प्यारा सा गीत सुनते हैं और फिर हम लौटेंगे और बात करेंगे डॉक्टर राहुल वाशने से।

0: जी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आइए बात करते हैं हमारे एक और कॉलर से। हेलो
1: हेलो,
0: जी, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए।
1: मैम नमस्कार। मैम
0: जी नमस्कार।
1: डॉक्टर सर को भी नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
0: जी नाम बताइए अपना।
1: मेघा राणा।
0: मेघा जी, जी बताएं क्या प्रश्न पूछना चाहते
1: जी
0: हैं डॉक्टर
1: मेरा
0: साहब
1: सवाल
0: से।
1: ये है कि मेरे एक रिलेटिव हैं, उनको राइट सर साइड में सर में दर्द होता है, उसी के साथ साथ राइट आई में भी होता है।
0: राइट थाई में
1: तो
0: और राइट
1: आई
0: साइड ऑफ द
1: में
0: हेड
1: ट्यूमर
0: होता
1: कर
0: है।
1: रखा है,
0: जी
1: पहला तो ये। दूसरा ये कि ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को हो गया तो आंखों पे उसका कोई असर पड़ता है आई साइड में?
0: अच्छा, ठीक है, आपके प्रश्न
1: मेरा
0: हम
1: ये दो
0: डॉक्टर साहब ने
1: सवाल है
0: सुन
1: बस।
0: लिए हैं। जी
2: देखिए, ब्रेन ट्यूमर अमूमन मैं आपको ऐसा जवाब दूंगा कि दो तरीके, अगर मान लो आंखों की नस का ट्यूमर है, ठीक है ना, तब तो आपकी आंखों पे निश्चय तौर पे असर पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि आपकी ये ट्यूमर अगर दिमाग में कहीं पे भी है, तो वो आपका जो एक दिमाग होता है, दिमाग में तीन चीज़ें होती हैं, एक खून होता है, एक दिमाग होता है, और एक दिमाग में पानी होता है जिसको हम CSF बोलते हैं। तो एक ऐसा कहा जाता है कि इन तीनों का जो वॉल्यूम है वो एकदम कांस्टेंट रहता है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। जैसे कि अगर आपका दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है तो दिमाग अपने जगह से हिल जाता है, सरक जाता है, जिसको हम हर्निएशन बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर आपके दिमाग में कोई ट्यूमर हुआ तो वो उसने एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया, तो आपका जो ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है, ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है तो सबसे जो ज़्यादा इफेक्ट होती है वो आपकी देखने की नस इफेक्ट होती है, तो उसमें भी आपकी रोशनी जा सकती है। तो या तो रोशनी के नस का ट्यूमर हो या ब्रेन

0: का प्रेशर बढ़े, दोनों चीजों में आपका इफेक्ट हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हर ट्यूमर में आपका आंखों की रोशनी में इफेक्ट आए। डॉक्टर को ही दिखा के वही डायग्नोस कर पाएगा कि आपको क्या हो सकता है।
1: जी, और बहुत सारी आपकी जो जिज्ञासा है उस कार्यक्रम में हम कवर करेंगे, तो आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े रहिए। 4 बजे तक इस कार्यक्रम को हम आप सुन सकेंगे रेडियो डॉक्टर को, जैसे प्रतिदिन सुनते हैं। और एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और लौट कर आएंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम आज बात कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर से जुड़ी भी जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय, प्रोफेसर एंड यूनिट हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली हमारे साथ स्टूडियो में। हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लौटेंगे। आप हमें इसी तरह से फोन करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। व्हाट्सएप के माध्यम से भी बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, उसको भी हम इस ब्रेक के बाद जरूर शामिल करेंगे। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और रेडियो डॉक्टर में आज का विषय है ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क ट्यूमर पर बात हो रही है। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने काफी बातें की, हमारे काफी सारे श्रोता कॉलर्स हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पर अपनी अपनी समस्या के साथ, तो बहुत सारे मैसेज भी आ चुके हैं, तो मैं एक एक करके मैसेज भी लेना चाहूंगी। ये पहला जो मैसेज हमको लिखकर भेजा है, ये लिखा है रिया ने हरिद्वार से, और लिख रहे हैं कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ ब्रेन ट्यूमर एंड क्या कुछ खाने पीने से भी हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर हो जाए। जैसे स्पेसिफिकली इन्होंने कहा है कि कभी कभी कहा जाता है कि कैबेज नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे ट्यूमर हो सकता है, और अगर ये सच है तो हम कैसे इसको अवॉइड करें और कैसे डिटेक्ट करें, क्या ये सच है?
2: कॉजेस तो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, दोबारा बताऊंगा कि ऐसे कॉजेस तो ब्रेन ट्यूमर के अभी तक नहीं पता चले हैं, बट कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे रेडिएशन एक्सपोजर आप में ज्यादा हो, जेनेटिक अगर आप मतलब कुछ ट्यूमर्स होते हैं तो जिनमें जेनेटिक बहुत पेरेंट्स में ट्यूमर है या जेनेटिक आई मीन कुछ आपका डिरेंजमेंट हो जाता है, इस चक्कर में ट्यूमर हो सकते हैं, बाकी कॉजेज ऐसे नहीं है। जहाँ तक कैबेज की बात है तो मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है, बट हाँ जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं उनको भी उसमें से भी माना गया है कि कुछ कुछ जो हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं वो ट्यूमर के कारण हो सकते हैं।
1: जी, और विक्रम सिंह हमसे पूछ रहे हैं जम्मू से, रेडियो परिवार को नमस्कार, मैं ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करा चुका हूँ 2017 में, और पहले मुझे एक बार एक साल में एक ही सीजर आता था, अब 3-4 बार सीजर आता है, दवाई मैं खा रहा हूँ तो क्यों ऐसा हो रहा है? दवाई तो इन्होंने लिखी है पर दवाई का हम नाम यहाँ नहीं ले रहे हैं, पर इनको नंबर ऑफ सीजर्स फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है।
2: देखिए, जो भी आपको सीजर्स आ रहे हैं पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आपका ये जो ऑपरेशन है ये किस ट्यूमर के लिए हुआ था, और दूसरा ये है कि कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिसमें जैसे मैंने पहले भी कहा था रिकरेंस का चांसेस होता है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका आपको स्कैन कराना पड़ सकता है। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि एक बार आप डॉक्टर को दिखाइए जिन्होंने आपको ऑपरेशन किया था, दोबारा से स्कैन कराइए, अगर कुछ रिकरेंस होगा तो उसका इलाज होगा, और नहीं तो कई बार ऐसा होता है तो आप दवाइयाँ खा सकते हैं, इसकी दवाइयाँ लंबी चलती हैं सीजर्स की, तो उसको खाइए और सीजर्स कंट्रोल हो जाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इनको दोबारा से जाना चाहिए चेकअप कराने, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे एक बार ब्रेन ट्यूमर का इलाज शुरू हो गया या जो भी सर्जरी है हो गई, तो कितना फॉलो अप टाइम रहता है, कितनी बार जाना पड़ता है उसके बाद?
2: नहीं, फॉलो अप तो आपको फिर मैं कहूंगा कि डिपेंडिंग अपॉन किस ट्यूमर, किस ट्यूमर की आपकी सर्जरी हुई थी, वो आपको फॉलो अप कब आना है और कितने दिनों बाद आना है, ये जो आपका रिस्पेक्टिव डॉक्टर है वही बेहतर बता पाएंगे कि हर ट्यूमर का अपने आप फॉलो अप होता है या आप में कुछ। मैं ये कहूंगा कि अगर आपको कुछ भी अब नॉर्मल महसूस होता है जो आपके नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा हट के है तो एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट दोबारा जरूर करिए आप।
1: जी, और श्याम मित्तल जानना चाह रहे हैं, रोहिणी में रहते हैं, 74 इयर्स एज है, कि डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए अलग अलग प्रकार के सीजर्स के बीच में, जैसे एपिलेप्सी का है या लो शुगर के कारण हो गया है कि ट्यूमर के कारण है।
2: सीजर का कारण क्या हो सकता है यह तो आपको एक डॉक्टर ही बेहतर बताएगा, बट सीजर्स हाँ बहुत तरह के सीजर्स होते हैं भाई, ट्यूमर के कारण भी आपको सीजर आ सकते हैं और कुछ मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटीज होती है उसके कारण भी सीजर आ सकते हैं, बट कारण क्या है ये तो आप डिस्टिंग्विश, आपसे बेहतर मैं आपको बोलूंगा डॉक्टर को दिखाइए, वही कारण पकड़ेगा कि आपको सीजर्स क्यों आ रहे हैं। कुछ में ट्यूमर हो सकता है, कुछ में एपिलेप्सी इसको अपन बोलते हैं, सीजर वैसे ही आते हैं, वो डॉक्टर का डायग्नोसिस है, आप उनको दिखाइए जाके।
1: जी जी, और एक हमारे साथ इस समय कॉलर भी जुड़ गए हैं। हेलो
3: हेलो
1: हेलो जी,
3: हाँ नमस्कार सर,
1: नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी
3: सर, क्वेश्चन है कि 2014 से ये ट्राइजमिनल न्यूरोलॉजिया है ये सिर में, अब ये दवाई इतनी हार्ड दे रहे हैं कि चक्कर आने लग जाते हैं,

0: जी जी जी जी
1: देखिए
0: हम पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब से।
1: ट्राइजेमिन न्यूरालजिया का जो पहला ट्रीटमेंट तो दवाइयों से ज्यादा कंट्रोल हो, बट अगर नहीं होता है तो बहुत सारे
2: अब
1: इलाज होते
2: दवाई
1: हैं।
2: नहीं हो रही है सर।
1: तो जैसे आपको बताया रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन होता है, वह उससे भी काफी मन कंट्रोल हो सकता है। आपकी जो नस होती है, जो ट्राइजेमिन नर्व, उसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उससे भी दर्द में आराम पड़
2: हाँ
1: सकता
2: जी
1: है। और किसी किसी केस में आपको सर्जरी भी करनी पड़ सकती है आपको।
0: जी तो
2: नहीं,
0: डॉक्टर
2: वो
0: हाँ
2: 78 एज है, 78 ईयर, तो बोल रहे इस एज में नहीं करते हम।
1: तो आप रेडियो फ्रीक्वेंसी एक बार ट्राई करिए।
0: चलिए
2: तो
0: बहुत बहुत
2: ये
0: धन्यवाद
2: सेफ है सर?
0: डॉक्टर साहब ने बता
1: हाँ जी
0: दिया। ये
1: बिल्कुल।
2: सेफ है कि
1: देखिए आज आज आज की डेट में ऐसा तो कोई भी चिकित्सा नहीं है जिसको आप बोलोगे 100% सेफ होगा, बट हाँ रिस्क कम होता है इसमें।
0: चलिए डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। आप कुछ ऐसा गाइड कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप ऐसा फॉलो करें। यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और आपके जो प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं उनको भी शामिल करेंगे, आपके फोन कॉल्स को भी शामिल करेंगे। तो आप इसी तरह से रेडियो रॉक के साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम जो हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रतिदिन FM रेनबो पर।

0: वेलकम बैक. आप हैं रेडियो डॉक्टर में और हमारे श्रोता हमें बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि उन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है. ये देवदत्त पारसोलिया जी हमें लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, नाइस टॉपिक, हमें बहुत अच्छा लग रहा है प्रेजेंटेशन और बहुत सारा जानकारी भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें मिल रही है. तो कोशिश यही होती है प्रतिदिन हम आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा लाएं कि आपको भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां जो मिलती हैं यहाँ से वो कुछ ऐसी चीज मिले जो आपको नहीं पता हो, कोशिश यही होती है. और किरण सोनी हमको लिख रही है नागौर राजस्थान से डॉक्टर साहब कि मेरी उम्र 40 वर्ष है और कान में पस आता था जिससे कि पर्दा और पीछे की हड्डी गल रही थी. इसके कारण मेरे ब्रेन में ट्यूमर निकाला गया और कान का ऑपरेशन हुआ. मेजर ऑपरेशन था और ब्रेन में ट्यूमर भी था. 4 साल हो गए हैं इस बात को. मेरा सवाल है कि उस ऑपरेशन से मेमोरी पर इफेक्ट हुआ है ऐसा लगता है, तो ये मेरा वहम है कि सच में मेमोरी में इफेक्ट होता है इस तरह के ऑपरेशंस में?
1: देखिए, जहाँ तक मुझे इनकी बातें सुन के लग रहा है, ट्यूमर नहीं होगा, एब्सेस होगा इनको, मतलब मवाद जमा हो गया कान का, मवाद जो कि दिमाग में फैल गया होगा. डिपेंड करता है कि आपका ये मवाद दिमाग के किस हिस्से में था. लेफ्ट साइड में जनरली आपका देखा गया है कि आपका जो एक दिमाग का हिस्सा, इसको हम टेम्पोरल लोब बोलते हैं, वहाँ पे मेमोरी का भी सेंटर होता है आपका, अगर वो जो कि कान के पास होता है, अगर उसमें आपको मवाद था तो चांसेस हैं कि आपको मेमोरी पे भी इफेक्ट हो सकता आया हो उससे.
0: और ये प्रश्न हमें भेजा है परिधि ने दिल्ली से कि अगर किसी को ट्यूमर हो तो कितने चांसेस हैं कि उनके बच्चों को और आगे आने वाली जनरेशन्स को भी ट्यूमर हो, और अगर दोनों पेरेंट्स को ट्यूमर है तो ये चांसेस कितने बढ़ जाते हैं और क्या इसका कोई बचाव है, क्योंकि आपने बताया जेनेटिक्स ऑल्सो प्ले अ रोल.
1: यस, देखिए, हर ब्रेन ट्यूमर जेनेटिक नहीं होता, ये आपको समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी पेरेंट को ये ब्रेन ट्यूमर है तो बच्चों को होगा ही होगा. कुछ ब्रेन ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिसमें जेनेटिक का रोल देखा गया है, बट इसको क्लासिफाई करना, और कुछ में परसेंटेज ज़्यादा होता है ट्रांसफर का, कुछ में बहुत कम ही होता है. तो आप पर्टिकुलर एक ट्यूमर की बात करेंगे हम तो वो डिफरेंट होगा, बट इन जनरलाइज देंगे तो जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स को ट्यूमर है तो बच्चों को भी ट्यूमर हो.
0: जी, कारण लोग जानना चाह रहे हैं. वैसे आपने बताया कोई ऐसा स्पष्ट कारण नहीं है, लेकिन सिडेंट्री लाइफस्टाइल कारण हो सकता है क्या, ये जानना चाहते हैं. अमित विश्वकर्मा देहरादून से लिख रहे हैं कि आईटी प्रोफेशनल हूं, बहुत देर बैठे बैठे ऑन स्क्रीन काम करना पड़ता है, तो एक मन में एक जिज्ञासा है जानने की.
1: अभी तक तो ऐसा नहीं देखा गया है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, बट सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ब्रेन के साथ साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट, उस पे इफेक्ट आ सकता है आपको.
0: अच्छा,
1: तो जितना ब्रेन जरूरत है उतना दिल का भी ख्याल रखिए, दिमाग के साथ
0: कहीं ना कहीं नुकसान तो आएगा.
1: जी, बिल्कुल.
0: तो इसके लिए क्या आप एडवाइस करते हैं कि बीच में ब्रेक्स लिए जाएं?
1: ब्रेक्स लीजिए, एक्टिविटीज रखिए, वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, आपका दिल दौड़ेगा तो आप भी दौड़ेंगे.
0: जी, देवेंद्र इंगती हमें लिख रहे हैं कार्बी अंगलोंग से, डॉक्टर साहब और शालिनी मैम को नमस्कार. मेरा सवाल यह है कि ब्रेन के अलावा कहाँ कहाँ ट्यूमर्स हो सकते हैं?
1: देखिए, अगर हम देखेंगे तो ब्रेन के अलावा बॉडी का कोई भी हिस्सा है आपको उसमें ट्यूमर हो सकता है. ट्यूमर कुछ नहीं होता है कि आपके सेल्स की, बॉडी के सेल्स होते हैं, अबनॉर्मल ग्रोथ होना चालू हो जाती है जो कि रुकती नहीं है. तो ब्रेन के अलावा कहीं भी ट्यूमर हो सकता है और कहीं का भी ट्यूमर फैल के ब्रेन में जा सकता है.
0: जी डॉक्टर साहब, एक जिज्ञासा मेरी है कि बहुत सारे एडवांसमेंट्स होते हैं मेडिकल फील्ड में, खास तौर पर जब कोई बीमारी होती है, और ये एक ऐसा फील्ड है, यहाँ पर भी निश्चित तौर पर बहुत एडवांसमेंट हो रहे होंगे, और मैंने कहीं पढ़ा कि जरूरी नहीं है कि आपको टोटली एनेस्थीसिया देकर कंप्लीट एनेस्थीसिया में ही ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाए. कितना सच है?
1: बहुत अच्छा सवाल किया शालिनी जी आपने. आजकल हम एक सर्जरी बोलते हैं इसको, आजकल तो नहीं, काफी टाइम से प्रैक्टिस हो रही है. अच्छा. अवेक क्रेनाटोमी बोलते हैं, जिसमें पेशेंट पूरी तरीके से होश में रहता है. जैसे कि मान लीजिए आपका जो ट्यूमर है, जैसे एक सज्जन ने प्रश्न भी किया था, जो कि बोलने के हिस्से के बिल्कुल पास पास में ट्यूमर है, या आपका जहाँ से हाथ पैर कंट्रोल होते हैं उसके पास में ट्यूमर है, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं कि पेशेंट बेहोश नहीं रहता है, हम पेशेंट होश में रहता है, हम उसकी सर्जरीज करते हैं, और जैसे ही हम उस ट्यूमर के हम निकालते हैं तो हम उसको बोलेंगे, आप बोल के दिखाइए या आप हाथ हिला के दिखाइए. तो अगर थोड़ी सी भी एक्टिविटी में हमें कमी लगती है तो हमको समझ जाते हैं कि हम एकदम उस सेंटर के पास में है, तो हम उसको

0: आगे नहीं जाना है। तो ये
1: अच्छा
0: एक बहुत अच्छा एडवांसमेंट है। और इसके साथ साथ आजकल तो रेडियोलॉजी में, इमेजिंग में इतने ज़्यादा एडवांसमेंट आ गए हैं कि आप पहले से सब लोकलाइज कर सकते हो कि आपके सेंटर्स कहाँ पे हैं और वो ट्यूमर से कितनी दूर है। तो रोबोट्स आजकल डेवलप हो रहे हैं सर्जरीज के लिए एंड दे आर वेरी गुड।
1: तो सर्जरी से पहले जो आप टेस्ट कराते हैं वो कौन से एमआरआईज होते हैं?
0: एमआरआईज कराते हैं, एमआरआई के भी अलग अलग सीक्वेंसेज होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि हमको ऑपरेशन में हमारी मदद करते हैं। कई बार सीटी स्कैन्स की ज़रूरत पड़ जाती है, तो सबको हम देख के समझ के फिर ही हम प्लान करते हैं कि किस टाइप से ऑपरेशन करना है।
1: जी।

0: होते हैं और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि हमको ऑपरेशन में हमारी मदद करते हैं। कई बार सीटी स्कैन्स की जरूरत पड़ जाती है, तो सबको हम देख के समझ के फिर ही हम प्लान करते हैं कि किस टाइप से ऑपरेशन करना है।
1: जी, और ये प्रश्न हमें भेजा है गुलाम रब्बानी जी ने पटना से, कि मेरे नेक में 8 साल से दर्द है, क्या इसका कारण हो सकता है और इसका इलाज क्या है? तो मुझे लगता है इन्होंने कहीं तो टेस्ट कराए होंगे, कुछ लिखा नहीं है, आप क्या
0: देखिए,
1: कहेंगे?
0: नेक के कारण तो अमूमन सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा मोबाइल होता है। जो आप झुक के मोबाइल देखते रहते हैं उसको कम करिएगा, और अगर नेक का दर्द आपके हाथों में जा रहा है तो सर्वाइकल हो सकता है, तो इसके लिए आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो बेहतर बता पाएंगे आपको किस कारण से दर्द है।
1: सैयद दानिश मोहम्मद शाकिर फ्रॉम पुरानी तहसील जामा मस्जिद रामपुर से हमारे कार्यक्रम की बहुत तारीफ कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं डॉक्टर साहब,
0: नमस्कार जी।
1: और लिख रहे हैं कि वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, नाइस टॉपिक, नाइस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सैयद दानिश और मोहम्मद शाकिर, आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। और हमें कुछ श्रोता है जो हमें फोटोज और वीडियोज और मेडिकेशंस की पूरी लिस्ट भेज रहे हैं, तो हम वो चीजें यहाँ शामिल नहीं कर सकते हैं, सॉरी। सिर्फ आप समस्या शॉर्ट में हमें लिखेंगे तभी हम इस कार्यक्रम में शामिल कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं शामिल कर पाएंगे। और ये मैसेज हमको लिखकर भेजा है तरुण कुमार जी ने अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से, डॉक्टर साहब मेरी मम्मी को ओवरी में गांठ थी जिसको वैक्यूम से निकाल दिया गया है, गांठ में कैंसर की शिकायत बताई गई, और किस डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने शरीर में कैंसर 4 स्टेप से कैंसर हो चुका है, यदि हम गांठ नहीं निकलवाते तो कैंसर नहीं बढ़ता। मतलब काफी कंफ्यूज सा इनका मुझे समझ नहीं आया, पर ये ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड तो नहीं लग रहा है प्रश्न, पर आप कुछ कहना चाहें, इन्हें बताना चाहें?
0: देखिए, ऐसा नहीं है कि आप देखिए ट्यूमर का तो आपको इलाज कराना होगा। कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो इलाज के बावजूद भी फैलते हैं। अगर आप नहीं कराएंगे तब तो निश्चय ही हार्मफुल इफेक्ट आएगा ही आएगा, बट कराएंगे तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें और थोड़ा लाइफ प्रोलॉन्ग हो उसकी।
1: जी, और हमारे साथ हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं। हेलो
2: जी नमस्कार,
1: जी, नमस्कार
2: मैं पीपी गौतम बोल रहा हूँ जी मेरठ
1: जी
2: से।
1: जी
2: और मेरा पूछना है कि क्या डिमेंशिया, मेमोरी लॉस और एगोनाइज पेन ये ब्रेन ट्यूमर के प्राथमिक लक्षण है या मिथक है?
0: देखिए, फिर मैं बोलूंगा कि ट्यूमर के लक्षण जनरलाइज नहीं कर सकते। ट्यूमर के लक्षण उस डिपेंड करता है कि किस हिस्से का आपको ट्यूमर हो सकता है। डिमेंशिया जनरली ट्यूमर्स में नहीं देखा जाता है। ये अगर ओल्ड पेशेंट्स में हो रहा है तो ये सिनाइल डिमेंशिया हो सकता है, अल्जाइमर्स हो सकता है, तो ये भी आपको डॉक्टर ही देख के बता पाएगा कि डिमेंशिया का क्या कारण हो सकते हैं।
1: तो कारण भी जानने के लिए डॉक्टर के पास जाना
0: जी
1: होगा,
0: बिल्कुल।
1: सिम्टम्स भी बहुत क्लियर नहीं होते हैं। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम चलें, थोड़ा सा हम जरूर ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है। जैसे आपने बताया कि अगर बहुत बार उल्टी भी आ रही है, तो क्या कोई खास समय होता है जिस समय ये दर्द और उल्टी ज्यादा होती है जो ये सिग्नल दे कि ब्रेन ट्यूमर की तरफ कुछ शक किया जा सकता है?
0: देखिए, जो अपन बोलते हैं कि आदमी जब सो के सुबह उठता है उसको उल्टी होती है, तो वो एक, मैं ये नहीं बोलूंगा, प्लीज इसको दिमाग में मत बैठाइए कि सुबह सो के उठ के उल्टी हो रही तो ब्रेन
1: जी
0: ट्यूमर हो सकता है।
1: हाँ
0: बट देखा जाता है कि जनरली ट्यूमर्स में होती है ऐसी उल्टी है, और उल्टियों से हेडेक में रिलीफ होता है। ये नॉर्मल माइग्रेन में भी देखा जाता है, ब्रेन ट्यूमर में भी देखा जाता है, बट इसके साथ साथ अगर और भी एसोसिएटेड सिम्टम आ रहे हैं तब आपको सचेत होने की आवश्यकता है।
1: जी और किस तरह के डायग्नोसिस के क्या तरीके हैं, किस तरह से ये डिसाइड किया जाता है कि किस तरह के पेशेंट के साथ क्या प्रोग्नोसिस बनता है?
0: देखिए, प्रोग्नोसिस तो पेशेंट का डिपेंड करता है कि किस टाइप का ट्यूमर है उसको और किस हिस्से का ट्यूमर है। अगर हम जैसे आप एमआरआई कराते हैं, ट्यूमर निकलता है, आपकी सर्जरी होती है, फिर उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। बायोप्सी की क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद उसमें क्या और चिकित्सा संभव है, क्या हम रेडिएशन दे सकते हैं, क्या हम इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका आगे क्या प्रोग्नोसिस रहेगा।
1: जी, तो आज जितने प्रश्न आए हैं हमने कोशिश की है शामिल करने की, और हमारे भी बहुत सारे आज प्रश्न थे वो भी हमने शामिल किए हैं। और कुछ प्रश्न डॉक्टर साहब हमारे पास आए हैं जो कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, इस स्कोप पे नहीं आते हैं, तो आपसे यही अनुरोध है कि आगे भी अगर आप कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पहले विषय सुन लें और हमारे विशेषज्ञ के बारे में जान लें और फिर उस पे प्रश्न करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे श्रोता होते हैं जो लाइन में होते हैं और अपने प्रश्नों को जानना चाहते हैं, उनके सवाल जानना चाहते हैं। आज बात करी हमने मस्तिष्क ट्यूमर या ब्रेन ट्यूमर की, हमारे साथ रहे डॉक्टर राहुल वार्ष ने। चलते चलते डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहें हमारे श्रोताओं को, आपका कोई संदेश देना चाहें?
0: मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि देखिए, ट्यूमर होना है ठीक है, ये मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है, बट ट्यूमर का इलाज कराना आपके कंट्रोल में है। ट्यूमर होने से घबराइए नहीं, इसका इलाज जरूर कराइए। अब ये मत सोचिएगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, अब मैं नहीं बचूंगा। बहुत से ट्यूमर ऐसे होते हैं, इलाज कराएंगे आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जिएंगे। तो डॉक्टर के पास जाइए और इलाज जरूर कराइए, बी पॉजिटिव।
1: बिल्कुल, बी पॉजिटिव।

0: और इलाज जरूर कराना है, उस चीज को समझना है और डॉक्टर के पास पहुंचना है। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए कि डॉक्टर साहब इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, तो डॉक्टर साहब का यही कहना है कि आप जब सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो आपको सब चीजें डॉक्टर समझा देंगे, लेकिन पहुंचिए जरूर, उसको इग्नोर मत करिए। तो इस कोशिश इस में हम सफल हुए हैं कि नहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से, हमें जरूर बताइए। हमारे ईमेल आईडी पर आप लिख सकते हैं इस कार्यक्रम का फीडबैक और हमारे अन्य कार्यक्रमों का फीडबैक, और इस कार्यक्रम में और क्या सुनना चाहते हैं, क्या विषय आप चाहते हैं कि हम आगे लें, वो भी आप हमें बता सकते हैं healthaiadelhi@gmail.com पर। तो आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय को, प्रोफेसर एंड यूनिट हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब आपने समय निकाला है इस कार्यक्रम के लिए, आप यहां आए हैं, हमारे श्रोताओं की इतनी सारी समस्याओं का समाधान आपने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को।
0: और इसी के साथ आज का इस कार्यक्रम को समेटने की और खत्म करने की, फिनिश करने की इजाजत दीजिए आप अपनी दोस्त शालिनी मित्तल को, पर जुड़े रहिए हमारे इस कार्यक्रम के साथ, क्योंकि हम प्रतिदिन एक नया एपिसोड लेकर आपके साथ जुड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान आपको यही मिले, जिसका नाम है रेडियो डॉक्टर। सुनते रहिए FM रेनबो पर ये कार्यक्रम।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: करनी है तो नंबर लिख लो जी 0181 43 174। कॉल करो तो लो ही है, जब आप बोलियां भी पावे तो एंट्री भी करावे, कहने मतलब तेरी फरमाइशी गाने भी सुनोगे, तो जो सवाल मैं पूछूंगा वो जवाब तो तुम्हें देने पाओगे। वैल वैल वैल स्टे ट्यून रहो गाइस, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो चुका है। हैलो जलंधर, मैं जी चेक दो पंजाबी गाना पहला जी।
1: This is total invasion. We're coming to you across the nation.
2: Aa suno, aa zara parada hat।

0: हाँ जी हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल ने जी। मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। मैं का जी बारी बरसी खटन गया सी, बारी बरसी खटन गया सी, और खट के ले आंदी क्रीम, और साडे रेडियो वेड़े विच आ चुके ने प्रवीण। हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी।
0: हाँ जी हाँ जी, कॉपी कॉपी, हेलो प्रवीण जी, कॉपी, यस
1: बिल्कुल बिल्कुल कॉपी जी,
0: कट एंड पेस्ट।
1: हाँ जी भाई, बोल के पे नहीं खाने, मैं गल करता पे रेडियो वाले ने।
0: आए
1: प्रवीण
0: जी, थोड़े दिन पहले ना मैं आलू वाला गोलगप्पा खाधा।
1: अच्छा, आलू निकल गया ना गोलगप्पा, सीधा अंदर चले गया ना जी?
0: नहीं नहीं जी, उन्होंने दिता पानी लाने से, पानी चो गया, आलू रह गया। हां जी,
1: ਹੋਰ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਜੀ?
0: ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ?
1: ਬਸ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਸੀ।
0: ਹਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ
1: ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ?
0: ਕਿਹੜਾ ਜੀ?
1: ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਪਲ ਪਲ ਦਿਲ ਕੇ ਪਾਸ।

0: हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल नहीं? प्रोग्राम हैलो जलंधर चल रहे थे, कुछ ही वेला रह गया थे आखिरी स्रोते ना गल बात करते हैं ते सुनते होना दे विचार। मैं गई बारी बरसी खटन गया सी, बारी बरसी खटन गया सी और खट के ले आंदी गोट और साढ़े रेडियो मेरे विच आ चुके ने प्रभ ज्योत। हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी।
0: हाँ सत श्री अकाल जी, की हाल है प्रभजोत जी?
1: हाँ जी ठीक है जी, तुम सुनाओ।
0: बहुत वधिया, तुम दसो ठीक हो जी?
1: हाँ जी हाँ जी ठीक है। मैं कहा साडे सारे जी बेड़े आए ने, असि भी कॉल कर दिए।
0: आए क्या बात है जी, तुम साडे रेडियो बेड़े आए, असि ताडे बेड़े आ गए जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: क्या बात है जी, होर सुनाओ किदा ठीक हो जी?
1: हाँ जी हाँ जी, बस वधिया सर जी, ताडा प्रोग्राम एंजॉयमेंट करते हैं, बच्चे भी नाल मेरे करते
0: हुए। आए आए आए

0: ये राष्ट्रपति भवन चले।
1: नमस्कार, दिल्ली स्थित भव्य और ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं शहसियार खान अपनी साथी कमेंटेटर ज्योति अहलावत के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2026 का आयोजन किया गया है। ये गौरवपूर्ण अवसर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन वीर सैनिकों, अधिकारियों और जवानों को समर्पित है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा, साहस, पराक्रम और अदम्य वीरता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज के इस गरिमामय समारोह में भारत के राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वीरता और विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन का भव्य प्रांगण पूरी शान और गरिमा के साथ सुसज्जित है। सैन्य वेशभूषा में उपस्थित अधिकारी, वीरता पदक प्राप्त करने वाले सैनिक, उनके परिजन और देश के अनेक विशिष्ट अतिथि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए यहाँ उपस्थित है। कुछ ही क्षणों में समारोह का औपचारिक शुभारंभ होगा। राष्ट्रगान की स्वर लहरियों के बीच राष्ट्रपति महोदया का आगमन होगा और उसके बाद अलंकरण समारोह की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
2: थैंक यू खान साहब, नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल आवर डियर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी फॉर अ लाइव कमेंट्री ऑफ द प्रेस्टीजियस एंड मोस्ट ऑनर्ड डिफेंस एंबेसडर सेरेमनी 2026।
1: और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन इस वक्त गणतंत्र मंडप में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री अपना स्थान ग्रहण करते हुए
2: एंड द गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन पैक्ड टू इट्स कैपेसिटी, वी've जस्ट वेलकम्ड आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। द ऑडियंस इज राइजिंग एंड नाउ टेकिंग देयर सीट।

0: Lilting tunes by the military band from the Mahar Regimental Center, Sagar, Madhya Pradesh. The tunes that swell the chest of every Indian across India and around the world. And today is a day of great honor.
1: Mananiya Rashtrapati Mahodaya, aapki anumati ho to Raksha Alankaran Samaro aarambh kiya jaye.
2: Raksha Sachiv Shri Rajesh Kumar ne karikram aarambh karne ki anumati li Mananiya Rashtrapati se. Aur ab karikram ka vidhivat.
3: शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख छत्तीसगढ़ पुलिस
2: इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को शौर्य पदक के लिए आमंत्रित किया गया है इस वक्त राष्ट्रपति के सामने
3: 16 अप्रैल 2024 को इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर प्रसाद देशमुख के नेतृत्व में एक वृहत अभियान आरंभ किया गया नक्सलियों ने घात लगाकर भीषण गोलीबारी की जिससे लगभग 200 जवानों की सुरक्षा संकट में पड़ गई अधिकारियों ने तत्काल जवाबी रणनीति बनाई जो इतनी साहसिक थी कि नक्सली चकित रह गए 3 घंटे से अधिक चली मुठभेड़ में जब 4 जवान घायल हो गए तो कमांडर ने गोलीबारी में उलझाकर दूसरी तरफ से बड़ी होशियारी के साथ घायल साथियों को सुरक्षित निकाल लिया अभियान में अनेक नक्सली मारे गए यह अभियान छत्तीसगढ़ के अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ और सफल अभियानों में गिनी जाती है रणभूमि में अद्वितीय साहस और विलक्षण नेतृत्व कौशल के लिए

0: को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट,
1: अपने कर्तव्य के प्रति इस असाधारण साहसिक कार्य के लिए इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट को माननीय राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करते हैं।
0: इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख,
1: और अब इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति के सामने। इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख, तालियों के साथ।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला, 19वीं बटालियन द सिख रेजिमेंट।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला फ्रॉम द 19th बटालियन ऑफ द सिख रेजिमेंट।
0: 13 जुलाई 2024 को नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों के घुसपैठ की सूचना मिलने पर लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला ने घात दस्ता लगाए। अभियान के दौरान भारी गोलीबारी, ग्रेनेड हमलों के बीच रेंगते हुए आगे बढ़े और नजदीक से दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया। साथियों पर घातक फायर कर रहे तीसरे आतंकी का भी खात्मा किया। निर्भीकरण कौशल असाधारण साहस के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला।
2: A brisk, quick walk up to the Honorable President, that is Lieutenant Colonel Nitesh Bharati Shukla, proudly receiving the Medal of Honor Shaurya Chakra for his bravery, courage and indomitable spirit. And now,
0: Major Aditya Pratap Singh, Sena Medal, the Rajputana Rifles, 44 Assam Rifles.
1: Major Aditya Pratap Singh ko.
0: मेजर आदित्य प्रताप सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में भारी घुसपैठ तथा बड़े हमले की खबर मिलने पर एक ऑपरेशन आरंभ किया। 72 घंटे की निगरानी कर आतंकवादियों को ढूंढ निकाला। महज 30 मीटर से भयंकर गोलीबारी के बावजूद निर्भीक अधिकारी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अकेले ही मोस्ट वॉन्टेड उग्रवादी को मार गिराया। अदम्य साहस, राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है। मेजर आदित्य प्रताप सिंह।
1: आदित्य पराक्रम कर्तव्य की पराकाष्ठा से ऊपर निस्वार्थ सेवा और उग्रवादी हमले की निष्काम करने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति।
0: मेजर आशीष कुमार, द पैराशूट रेजिमेंट।
2: Major Ashish Kumar from the 7th Battalion of the Parachute Regiment, brusquely, boldly, confidently walking forward, taking a quick thump, a salute.
0: 2 November 2020 को अनंतनाग में आतंकवादियों के संभावित मार्ग पर निगरानी के दौरान मेजर आशीष कुमार ने दो सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान की। भारी गोलीबारी के बावजूद अपनी जान की परवाह न करते हुए दोनों आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें एक A++ श्रेणी का कुख्यात आतंकवादी था। असाधारण वीरता और श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है। मेजर आशीष कुमार।
2: मेजर आशीष कुमार फ्रॉम द पैरा रेजिमेंट, डॉनिंग द रेड बेरे, वॉकिंग पास्ट टुवर्ड्स ऑनरेबल प्रेसिडेंट एंड प्राउडली द मेडल Shaurya Chakra being pinned on his proud chest. A soldier lives for this day.
0: Sipahi GD Sanjay Tiwari, Sipahi GD Fida Hussain Dar, Kendriya Reserve Police Force.
1: CRPF ke GD Sanjay Tiwari aur GD Fida Hussain Dar ko Shaurya Chakra ke liye aamantrit kiya gaya hai.
0: 2 November 2024 ko ratri 2:45 par Khaniyar thane ke ek mohalle se ek विदेशी आतंकवादी के छुपे होने की सूचना मिली। बिना समय गवाए सिपाही जीडी संजय तिवारी और फिदा हुसैन डार ने लक्षित मकान को घेर लिया। गोलीबारी शुरू हुई। आतंकवादी ने कई ग्रेनेड भी फेंके, जिससे नजदीक से मुकाबला कर रहे दोनों जाबाज सिपाहियों को कई गोलियां और ग्रेनेड के टुकड़े भी लगे। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद वे निडरता से आगे बढ़े और विदेशी आतंकवादी के भारी सुरक्षात्मक पोजीशन में रहने के बावजूद मार गिराया। गोली लगने के बावजूद असाधारण वीरता के लिए

0: आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सिपाही जीडी संजय तिवारी।
1: सिपाही जीडी संजय तिवारी को जो कि सीआरपीएफ से है, अदम्य साहस और असाधारण वीरता के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
0: सिपाही जीडी फिदा हुसैन दा।
1: और अब अदम्य साहस के लिए सीआरपीएफ के सिपाही जीडी फिदा हुसैन डार को शौर्य चक्र से सम्मानित कर रही हैं माननीय राष्ट्रपति।
2: सहायक कमांडेंट वर्तमान में डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक 26 असम राइफल्स।
3: असिस्टेंट कमांडेंट एंड नाउ डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक फ्रॉम द 26 असम राइफल्स वॉकिंग पास द ऑडियंस एंड नाउ अ क्विक ब्रिस्क
2: 5 नवंबर 2024 को चिंतावाड़ी क्षेत्र में डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक के नेतृत्व में एक टुकड़ी को लक्ष्य घर के उत्तर पूर्वी हिस्से में तैनात किया गया। अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने का प्रयास किया। उस समय डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए भारी गोलाबारी के बीच आतंकवादी के करीब जाकर उसे बेहद नजदीकी से ढेर कर दिया और अपने साथियों को बिना किसी नुकसान के साथ बचाकर भारी मात्रा में युद्ध जैसी सामग्री भी बरामद की। अदम्य साहस, सर्वोच्च नेतृत्व एवं असाधारण सामरिक कौशल का परिचय देने के लिए डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक।
3: डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक वॉकिंग ब्रिस्कली कॉन्फिडेंटली एंड नाउ फेसिंग आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट टू रिसीव हिज मेडल ऑफ ऑनर शौर्य चक्र।
2: लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर।
1: लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
2: 6 नवंबर 2024 को लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब घर में फंसे एक आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की तब उन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को भांप कर निडर होकर छिपे हुए दूसरे आतंकवादी पर जानबूझकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने अपने साथी को भी समय पर सूचित किया। परिणाम स्वरूप अपने सेना द्वारा दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। सामान्य कर्तव्य से बढ़कर सेवा के सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप विशिष्ट वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर।
1: सामान्य कर्तव्य से बढ़कर सेवा की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप विशिष्ट वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
2: सीमैन फर्स्ट क्लास मरीन कमांडो वर्तमान में लीडिंग सीमैन राम गोयल।
3: एंड नाउ सीमन राम गोयल।
2: ऑपरेशन चुंतावाड़ी के दौरान आप भारी गोलाबारी के बीच लक्षित घर के घेराबंदी करने के लिए तैनात थे जहां दो आतंकवादी छिपे हुए थे। आपने अत्यधिक सामरिक परिपक्वता का परिचय दिया और लक्षित घर में छिपे दूसरे आतंकवादी को पकड़ने के लिए कई बार निडरता से अपनी आड़ तोड़कर सटीक गोलाबारी की। तत्पश्चात आपने अपने साथियों के साथ लक्षित घर में प्रवेश करके निष्प्रभावी आतंकवादियों के शव बरामद किए और युद्ध जैसे सामान भी कब्जे में किए। कर्तव्य से परे सामरिक कौशल, अदम्य साहस और विशिष्ट वीरता के लिए लीडिंग सीमैन मरीन कमांडो राम गोयल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लीडिंग सीमैन मरीन कमांडो राम गोयल।
3: वॉकिंग कॉन्फिडेंटली ब्रिस्कली दिस इज लीडिंग सीमैन राम गोपाल टू रिसीव हिज मेडल ऑफ करेज मेडल ऑफ गैलेंट्री शौर्य चक्र। सैल्यूटिंग एंड हेडिंग
2: सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन CRPF।
1: और अब CRPF के सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन को शौर्य चक्र के सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया है माननीय राष्ट्रपति के सामने। इस वक्त सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन।
2: जम्मू एवं कश्मीर में भारी हथियारों से युक्त दो विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना मिली। सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन तय योजना अनुसार तलाशी अभियान का हिस्सा थे और उन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति में लक्ष्य क्षेत्र में रणनैतिक रूप से मोर्चा संभाला और अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल से युक्त आतंकवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी के बावजूद असाधारण धैर्य के साथ अपने मोर्चे पे डटे रहे और बड़ी सटीकता के साथ अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर राउंड फायर करके लक्ष्य को बर्बाद किया। इस असाधारण वीरता

0: वीरता एवं अदम्य साहस के लिए सिपाही जीरी सद्दाम हुसैन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सिपाही जीरी सद्दाम हुसैन।
1: सिपाही जीरी सद्दाम हुसैन तृतीय बटालियन सीआरपीएफ के द्वारा प्रदर्शन असाधारण वीरता अदम्य साहस कर्तव्य प्राणता ड्यूटी के प्रति समर्पण के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति ने पदक से।
0: सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन 20वीं बटालियन सीआरपीएफ।
2: एंड नाउ वॉकिंग टुवर्ड्स आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट असिस्टेंट कमांडेंट विपिन विल्सन फ्रॉम द 20 बटालियन सीआरपीएफ। अ क्विक टर्न एंड अ सैल्यूट।
0: 11 नवंबर 2024 को मणिपुर के जिरीबाम जिले में सशस्त्र विरोधियों ने 20वीं बटालियन के मोर्चे पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन ने तुरंत लगातार एवं सटीक गोलाबारी से विरोधियों पर हमला किया और हमलावरों को रक्षात्मक स्थिति से पीछे हटने के लिए मजबूर किया। लगातार गोलीबारी के बावजूद वे आगे बढ़े और उन्होंने दो कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया और महत्वपूर्ण हथियार भी बरामद किए। चुनौतीपूर्ण युद्ध परिस्थिति में असाधारण वीरता और अदम्य साहस के लिए सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन।
2: असिस्टेंट कमांडेंट विपिन विल्सन बीइंग अवार्डेड द मेडल ऑफ गैलेंट्री शौर्य चक्र एंड आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट नाउ पिनिंग द मेडल ऑन टू द प्राउड चेस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट विपिन विल्सन।
3: राइफलमैन भोजराम साहू 3rd बटालियन असम राइफल्स।
1: तीन असम राइफल्स के राइफलमैन भोजराम साहू को अगला शौर्य चक्र दिया जा रहा है।
3: 15 नवंबर 2024 आप भारत म्यांमार सीमा रेखा के समीप तैनात घुसपैठ विरोधी दस्ते के स्काउट की भूमिका निभा रहे थे। अपनी टुकड़ी को अचानक एक सघन विस्फोट की चपेट में आया देख व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप निडरता से आगे बढ़े तथा सटीक निशाने से दो विद्रोहियों को घायल कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच गोली लगने से जख्मी होने के बावजूद आपने एक और विद्रोही को घायल करते हुए उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में तीनों विद्रोहियों के मारे जाने की पुष्टि की गई एवं भारी मात्रा में हथियार तथा गोला बारूद भी बरामद किया गया। अद्भुत वीरता तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन भोजराम साहू।
1: तालियों के गड़गड़ाहट के बाद राइफलमैन भोजराम साहू शौर्य चक्र लेने के लिए माननीय राष्ट्रपति के साथ।
3: विंग कमांडर वर्तमान में ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह उड़ान पायलट।
2: विंग कमांडर नाउ ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह एंड नाउ अ फ्लाइंग पायलट ब्रिस्कली वॉकिंग फॉरवर्ड टेकिंग अ क्विक ब्रिस्क टर्न अ सैल्यूट टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्सेस।
3: 21 नवंबर 2024 की अंधेरी रात में आपको एक प्रशिक्षु पायलट की उड़ान के मूल्यांकन के लिए विमान कप्तान का दायित्व सौंपा गया। एक मुश्किल मैनूवर का अभ्यास करते समय पिछली कैनोपी के क्षतिग्रस्त होने से केबिन में अचानक एक्सप्लोसिव डीकंप्रेशन पैदा हो गया और कैनोपी के कई टुकड़ों से आपको गंभीर चोटें आईं। प्राणघातक एरोमेडिकल चुनौतियों तथा रक्तस्राव के बीच आपने अधिक मानसिक संतुलन बनाए रखा एवं असहनीय पीड़ा के बावजूद घने अंधेरे में वायुयान को स्वयं नियंत्रित करते हुए आबादी से दूर सुरक्षित उतारा। इस बहादुर वायु योद्धा ने न केवल युवा पायलट की जान बचाई बल्कि संभावित दुर्घटना को टालकर आम नागरिकों के प्राणों एवं संपत्ति के साथ साथ राष्ट्र की बहुमूल्य सामरिक संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। इस असाधारण कृत्य के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह।
2: ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह अ राउंड ऑफ क्लैप्स Going up in the air, receiving his proud gallantry award, the Shaurya Chakra, for exceptional gallantry and courage.
3: Major Bhargav Kalita, Kumaon Regiment, 50th Battalion, Rashtriya Rifles.
1: Kumaon Regiment, 50th Rashtriya Rifles ke Major Bhargav Kalita ko Shaurya Chakra se sammanit kiya ja raha hai.
3: Aapne October 2022 se Jammu Kashmir mein sevaen dete hue अपनी बटालियन के साथ तीन सफल ऑपरेशन में भाग लिया जिसमें तीन आतंकी मारे गए एवं चार ओवरग्राउंड वर्कर्स को जिंदा पकड़ा गया। 2 दिसंबर 2024 को एक आतंकी की मौजूदगी की सूचना मिलने पर आपने कुशल नेतृत्व करते हुए एक अचूक घात

0: लगाया, जिसके फलस्वरूप इस आतंकी को मार गिराया गया। उच्च कोटि की नेतृत्व क्षमता तथा अद्वितीय वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर भार्गव कलिता।
1: मेजर भार्गव कलिता फ्रॉम द कुमार रेजिमेंट प्राउडली रिसीविंग द मेडल ऑफ ऑनर शौर्य चक्र फॉर अनडॉन्टिंग करेज एंड ब्रावाडो।
0: मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह द पैराशूट रेजिमेंट।
2: और अब 11 पैराशूट रेजिमेंट के मेजर लेशांत सिंह दीपक सिंह शौर्य चक्र लेने के लिए।
0: उत्तर पूर्व में सेवाएं देते समय आतंकियों द्वारा निर्दोष नागरिकों के अपहरण की सूचना मिलने पर आपने अपनी जान की चिंता न करते हुए स्वयं बंधकों को मुक्त कराने का साहसिक निर्णय लिया। लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आतंकियों द्वारा की गई भारी गोलीबारी के बीच आपने अत्यंत नजदीक से एक आतंकी को मार गिराया तथा स्वयं को ढाल बनाते हुए बंधक नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसी बीच भागने का प्रयास कर रहे एक और आतंकी को भी आपने घायल कर दिया। आपके कुशल मार्गदर्शन के फलस्वरूप निर्दोष नागरिकों को सकुशल मुक्त कराया गया तथा भारी मात्रा में हथियार एवं युद्ध सामग्री भी बरामद की गई। अदम्य साहस तथा उत्कृष्ट रण कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह।
2: विशेष वीरतापूर्ण कार्य के लिए मेजर लेईशांग दीपक सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा।
0: मेजर अंशुल बल्टू जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री 32वीं बटालियन Assam Rifles.
1: And now coming marching forward, Major Anshul Baltu from the Jammu and Kashmir Light Infantry.
0: 29 अप्रैल 2025 आपने दक्षिण आसाम में उग्रवादियों की मौजूदगी संबंधी सूचना के आधार पर चलाए गए एक घेराबंदी अभियान का नेतृत्व किया। तलाशी के दौरान उग्रवादी भारी गोलीबारी करते हुए घने जंगलों की ओर भाग निकले। आपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उनका पीछा किया तथा एक सशस्त्र आतंकी को अकेले ही मार गिराया। भीषण मुठभेड़ के बाद 3 सशस्त्र आतंकियों के शव एवं 3 AK-47 राइफल के अलावा भारी मात्रा में युद्ध सामग्री भी बरामद की गई। असाधारण बहादुरी तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है। मेजर अंशुल बल्टू।
1: गणतंत्र मंडप एकोइंग ओवर द लाउड round of applause for Major Anshul Baltu receiving his Shaurya Chakra, a proud moment for the soldier. Saluting our honorable president and a quick turn
0: Major
1: back to the
0: Shivkant
1: arena.
0: Major Shivkant Yadav, Parachute Regiment.
2: A Parachute Regiment ke Major Shivkant Yadav ko Shaurya Chakra.
0: Major Shivkant Yadav ne ek aatank virodhi abhiyan ke dauran दुर्गम और घने जंगल क्षेत्र में आतंकवादियों का पता लगते ही अपनी टुकड़ी की पुनः तैनाती की। प्रतिकूल परिस्थितियों में घनी झाड़ियों में लगातार पीछा करते हुए एक कुख्यात A++ श्रेणी के आतंकवादी को मार गिराया। अभियान में 2 अन्य दुर्दांत आतंकवादी भी ढेर किए गए। अद्वितीय वीरता प्रेरणादायी सैन्य नेतृत्व के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर शिवकांत यादव।
2: तीव्र सामरिक सूझबूझ विशिष्ट वीरता आदित्य धैर्य और अदम्य साहस के लिए मेजर शिवकांत यादव को तालियों के गड़गड़ाहट के बीच शौर्य चक्र।
0: सुबेदार PH मोसेस 1 असम राइफल्स।
1: And now, Subedar P.H. Moses from the 1st Assam Rifles, proudly marching, slow measured march, a quick salute.
0: 14 May 2025 को एक विशेष अभियान के दौरान गश्ती दल के सेकंड इन कमांड के रूप में अचानक छिपे उग्रवादियों की गोलीबारी का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी पूरी टुकड़ी खतरे में आ गई। अपने फायर से उग्रवादियों को दबाव में रखते हुए अत्यंत जोखिम उठाकर पहले एक और फिर दूसरे आतंकवादी को भी ढेर कर दिया। असाधारण शौर्य, विलक्षण सैन्य कौशल और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सुबेदार PH

0: Moses.
1: Subedar P.H. Moses, a proud soldier of the Defence Forces of Ma Bharati, our motherland India, receiving his Pride Medal of Honour, saluting and heading back.
0: Major Vivek, the Mechanized Infantry, 42 Rashtriya Rifles.
2: Mechanized Infantry, 42 Rashtriya Rifles ke Major Vivek ko शौर्य चक्र के लिए आमंत्रित किया गया है।
0: 15 मई 2025 को पुलवामा जिले में घेरा और तलाशी अभियान के दौरान मेजर विवेक की टुकड़ी आतंकवादियों की गोलीबारी की चपेट में आ गया। आपने आतंकवादियों के भागने के प्रयास को विफल किया तथा नागरिकों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की। जोखिम उठाकर कंक्रीट की छत के नीचे छिपे A++ श्रेणी के आतंकवादी को आमने सामने की लड़ाई में मार गिरा है। विशिष्ट वीरता, उत्कृष्ट नेतृत्व, अद्वितीय युद्ध कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर विवेक,
2: अत्यंत वीरता, नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक कुशलता और कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण के लिए मेजर विवेक को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
0: राइफलमैन Manglim Sang Wi-Fi 3 Assam Rifles.
1: Rifleman Manglim Sang Wi-Fi from the 3rd Assam Rifles. Ready to receive.
0: 9 June 2025 ko Rifleman Manglim Sang Wi-Fi Bharat Myanmar seema par ghuspaith virodhi abhiyan ke agrani scout the. Aapne kai aatankwadiyon ko ghuspaith ke irade se aage badhte dekha. आपने पहले ही हमले में 2 आतंकवादियों को मार गिराया और गोली से घायल तीसरे आतंकवादी को भी उसी शाम घने जंगलों में ढूंढकर मार गिराया। अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन मांगलिम सांग वाईफाई।
1: राइफलमैन मांगलिम सांग वाईफाई बीइंग अवार्डेड द शौर्य चक्र, displaying nerves of steel.
0: Lieutenant Colonel Ghatge Aditya Shri Kumar, Parachute Regiment.
2: 21 Para Vishesh Dal ke Lieutenant Colonel Ghatge Aditya Shri Kumar ko Shaurya Chakra diya ja raha hai.
0: Lieutenant Colonel Ghatge Aditya Shri Kumar ne seemavarti ilake mein ek kile band vidrohi shivir par सटीक हमला करने के लिए व एक कुख्यात विद्रोही समूह के नेतृत्व को बेअसर करने के लिए मजबूत खुफिया नेटवर्क स्थापित किया, कड़े धोखे के प्रोटोकॉल लागू किए और कई उच्च जोखिम वाले टोही अभियानों में भाग लिया जिससे 9 विद्रोही मारे गए। निडर नेतृत्व और विशिष्ट वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्री कुमार,
2: उत्कृष्ट व्यवसायिक क्षमता, निडर नेतृत्व और प्रतिकूल परिस्थितियों में विशिष्ट वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्री कुमार और ये शौर्य चक्र प्रदान किया गया है।
3: कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर, पैराशूट रेजिमेंट।
1: Briskly marching forward in measured steps, this is Captain Yogendra Singh Thakur from the 6th Para Regiment.
3: Jammu even Kashmir ke ilake mein Captain Yogendra Singh Thakur apne nigrani daste ke saath tainat the jab unhe lagbhag 300 meter ki duri par kuch agyat vyaktiyon ki harkat dikhai thi. Sangdit vyaktiyon ke bhagne aur anapekshit nuksanon se bachane ke liye ve ghane kohre mein atal rahe. अचानक आतंकवादियों ने उनकी टुकड़ी पर भीषण गोलाबारी शुरू कर दी। इस स्थिति में वे रेंगते हुए आतंकवादियों की ओर बढ़े और बेहद नजदीकी मुठभेड़ में भीषण गोलाबारी के बीच एक आतंकवादी को मार गिराया। उनकी अभूतपूर्व वीरता, युद्ध कुशलता एवं दृढ़ संकल्प के लिए कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर
1: for his unprecedented valor, fighting spirit, dedication, Captain Yogendra Singh Thakur is awarded the Shaurya Chakra. And now a salute in turn.
3: Subedar Shamsher Singh, Parachute Regiment.
2: Aur 4 Para Vishesh Dal ke Subedar Shamsher Singh इस वक्त शौर्य चक्र लेने के लिए राष्ट्रपति के सामने।
3: सुबेदार शमशेर सिंह को श्रीनगर जिले के एक इलाके में 3 उच्च कोटि आतंकवादियों को खोजने एवं मार गिराने के अभियान में

0: स्क्वाड कमांडर के रूप में नामांकित किया गया था। खोजने की गतिविधि के दौरान वे अचानक भीषण गोलाबारी के चपेट में आ गए। युद्ध क्षेत्र में संयम का परिचय देते हुए उन्होंने तुरंत उस स्थान की पहचान की जहां एक आतंकवादी छुपा हुआ था और खुद को दुश्मन की सीधी गोलाबारी के बीच स्थापित किया। आगामी निकट मुठभेड़ में दुश्मन की गोलाबारी का सामना करते हुए वे आगे बढ़े और एक सटीक और घातक हमला करके एक आतंकवादी को मार गिराया। गोलाबारी के बीच अद्वितीय साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सुबेदार शमशेर सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सुबेदार शमशेर सिंह
1: कर्तव्य के प्रति समर्पण और शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए सुबेदार शमशेर सिंह शौर्य चक्र लेते हुए माननीय राष्ट्रपति से।
0: लांस नायक वर्तमान में नायक राहुल सिंह पैराशूट रेजिमेंट।
2: And now, Lance Nayak,
0: श्रीनगर के एक जिले में एक आतंक विरोधी ऑपरेशन में नायक राहुल सिंह को एक प्रमुख जिम्मेदारी दी गई। अटल साहस, बेमिसाल फील्ड क्राफ्ट एवं संकेतों का पीछा करते हुए उन्होंने आतंकवादी ठिकानों का खोज निकाला एवं तुरंत अपने स्क्वाड कमांडर को सूचित किया। आगे बढ़ते समय प्रख्यात खतरे का एहसास होने पर उन्होंने आतंकी ठिकाने के बारे में अपने दस्ते को सूचित किया और निकटतम आतंकवादी पर सटीक गोलाबारी करके उसको मौके पर ही मार गिराया। उनकी वीरतापूर्ण कार्यवाही, दृढ़ बहादुरी और असाधारण लड़ाकू क्षमता के लिए नायक राहुल सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। नायक राहुल सिंह
2: मार्चिंग अहेड फॉर हिज मेडल ऑफ ऑनर द शौर्य चक्र। दिस इज करेज अंडर फायर, अ फाइन डिस्प्ले ऑफ व्हाट आवर सोल्जर्स वाओ To pledge.
0: Rifleman Dhubra Jyoti Datta, 33 Assam Rifles.
1: 33 Assam Rifles ki Rifleman Dhubra Jyoti Datta vishwas ke saath aage badhte hue.
0: 19 सितंबर 2025 को राइफलमैन धूबरा ज्योति दत्ता को इम्फाल घाटी में एक बाढ़ राहत अभियान में वाहन चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वाहन के पिछले हिस्से में 8 और जवान भी बैठे थे। तभी अचानक अज्ञात विद्रोहियों ने घात लगाकर वाहन पर हमला किया। राइफलमैन धूबरा ज्योति दत्ता को स्वयं जांग, छाती, कंधे और बाह पर कई गोलियां लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए वाहन को मृत्यु क्षेत्र से बाहर निकाला और अपनी त्वरित कार्रवाई से पिछले हिस्से में सवार सभी 8 साथी सैनिकों की जान बचाई। अपने उत्कृष्ट एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिए राइफलमैन धूबरा ज्योति दत्ता को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन धूबरा ज्योति दत्ता
1: रक्षा अलंकरण केवल सम्मान प्रदान करने का अवसर नहीं बल्कि ये उन वीर गाथाओं को राष्ट्र के सामने नमन करने का अवसर है जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से भारत की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा।
0: लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एवं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए।
2: Women empowered are not behind. We have now two women, Lieutenant Commanders Dilna K and Lieutenant Commander Rupai.
0: आप दोनों को नाविका सागर परिक्रमा 2 के लिए चयनित किया गया था जो INSV तारिणी पर एक अग्रणी द्विसदस्य विश्व परिक्रमा अभियान था। 2 अक्टूबर 2024 से 29 मई 2025 के बीच आपने भारतीय प्रशांत अटलांटिक और दक्षिणी महासागरों से होते हुए 25,600 समुद्री मील से अधिक की यात्रा की जिसमें आपको एकांत, अत्यधिक मौसम और तकनीकी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। आप पॉइंट नीमो तक नौकायन कर पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी। अभियान के दौरान जीवन झकझोर देने वाली परिस्थितियों के बावजूद आपने अदम्य साहस, उत्कृष्ट नौकायन कौशल और नेतृत्व का परिचय दिया। इस अभूतपूर्व अभियान में असाधारण वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एवं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के
2: A big round of applause for the woman soldier from the Indian Navy receiving her Shaurya Chakra proudly.
0: Lieutenant Commander Rupa A.
2: Lieutenant Commander Rupa A. Now in front of our Honorable President, proudly receiving her Medal of Honor, the Shaurya Chakra, daring the weather and being the first Indians to reach Point Nemo.
3: शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र कल को शांकलांबा रेजिमेंट

0: आर्टिलरी।
1: और अब वीर चक्र दिए जाएंगे। वीर अधिकारी पूरे आत्मविश्वास और गौरव के साथ राष्ट्रपति महोदया के समक्ष।
0: कर्नल कुशांत लांबा ने अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए एक विशेष उपकरण बैटरी को प्रतिकूल परिस्थितियों में इंडक्ट किया। बेहद कम समय में नए क्षेत्र में उत्कृष्ट युद्ध क्षमता सुनिश्चित करते हुए दिए गए लक्ष्यों का सफल विश्लेषण किया एवं एक समन्वित सटीक फायर मिशन द्वारा कई आतंकी शिविरों को बर्बाद करने में अहम योगदान दिया, जिसमें कई आतंकियों का सर्वनाश किया गया। दुश्मन की भीषण गोलाबारी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर आप अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे तथा एक गन से दूसरी गन पर जाकर निरंतर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहे। असाधारण नेतृत्व क्षमता तथा युद्ध कौशल के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। कर्नल कुशांक लांबा।
1: भारतीय सेना की परंपरा के अनुसार गोलीबारी के बीच असाधारण वीरता, पराक्रम और साहस का प्रदर्शन करने के लिए कर्नल कुशांक लांबा को वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
0: कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू, उड़ान पायलट।
2: एंड आवर सेकंड वीर चक्र, ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू, फ्लाइंग कैप्टन फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स।
0: एक सैन्य अभियान के दौरान शक्तिशाली लड़ाकू विमानों से सुसज्जित आपके स्क्वाड्रन को शत्रु के कुछ ठिकानों को बर्बाद करने का जिम्मा सौंपा गया। निरंतर बदलते खतरों के बीच अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना इस पराक्रमी वायु योद्धा ने अग्रिम पंक्ति में रहकर कई डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स मिशन का नेतृत्व किया तथा निर्धारित लक्ष्यों को नष्ट करने के साथ साथ अपने साथी पायलट्स को सुरक्षा प्रदान की। आसमान में रहते हुए आपने ऑपरेशनल वेरिएबल्स के अनुरूप कई साहसिक निर्णय लेते हुए तीन स्थानों से संचालित जटिल वायु अभियानों को सफलता के शिखर तक पहुंचाया। अद्वितीय उड़ान कौशल, अटूट कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू।
2: ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू मार्चिंग फॉरवर्ड टू रिसीव हिज मेडल शॉर्ट वीर चक्र फ्रॉम आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
0: ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा, शौर्य चक्र, उड़ान पायलट।
1: और अब उड़ान पायलट मनीष अरोड़ा को वीर चक्र दिया जा रहा है।
0: आपको कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए एक जोखिमपूर्ण अभियान का दायित्व तो सौंपा गया। शत्रु का वायु क्षेत्र अति आधुनिक रडार की सतत निगरानी में था तथा लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस दुश्मन के लड़ाकू विमान इसकी सुरक्षा में निरंतर तैनात थे। ऐसी घातक परिस्थितियों में हथियार प्रक्षेपण का लॉन्च विंडो बेहद सीमित होने के बावजूद इस शूरवीर अधिकारी ने शत्रु की मारक सीमा के भीतर घुसकर लड़ाकू विमानों के प्रचंड प्रहार से निर्धारित लक्ष्यों को बर्बाद किया और अपने साथियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। अद्भुत पराक्रम, असाधारण नेतृत्व क्षमता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा, शौर्य चक्र।
1: ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा शौर्य चक्र को वीर चक्र से सम्मानित कर रहे हैं। तालियों के गड़गड़ाहट के बीच माननीय राष्ट्रपति ने ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा को।
0: ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी, उड़ान पायलट।
2: एंड नाउ Group Captain Animesh Patni, dressed in impeccable blue uniform, coming forward.
0: एक अग्रिम एयरफील्ड पर सरफेस टू एयर मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालते हुए आपने एक चुनौतीपूर्ण अभियान में दो फायरिंग यूनिट्स का नेतृत्व किया, जिसमें शत्रु के कई हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदा गया। शत्रु को भ्रमित करने के लिए आपने लगातार अपनी यूनिट का स्थान परिवर्तित किया एवं भीषण गोलाबारी के बीच अपने सैनिकों तथा उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित की। आपके सजग मार्गदर्शन में एक संदिग्ध शत्रु गुप्तचर को भी पकड़ा गया। असाधारण साहस तथा कर्तव्य परायणता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी।
2: ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी रिसीविंग हिज वीर चक्र। एंड एज दे से, डू नॉट गो वेयर द पाथ लीड्स, गो वेयर देयर इज नो पाथ एंड लीव अ ट्रेल। And गणतंत्र मंडप echoing
0: कलरा, उड़ान पायलट,
2: with applause।
1: और अब ग्रुप कैप्टन कुड़ान कलरा को आमंत्रित किया गया है, जो कि उड़ान पायलट हैं।

0: आपने एक खतरनाक सैन्य अभियान के अंतर्गत दुश्मन की दो महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह करने के लिए अनएस्कॉर्टेड स्ट्राइक पैकेज के मिशन लीडर के रूप में उड़ान भरी। शत्रु द्वारा जमीन और आसमान से निरंतर किए जा रहे प्राणघातक हमलों, विमान और शस्त्र प्रणाली में आई तकनीकी बाधाओं तथा प्रतिकूल मौसम के मध्य इस पराक्रमी वायु योद्धा ने असाधारण संयम तथा रण कौशल का परिचय दिया। रात के अंधेरे में मौत को चुनौती देते हुए शत्रु के सुरक्षा कवच को भेद कर निर्धारित लक्ष्यों को नेस्तो नाबूद किया और अभियान का गौरव बढ़ाया। इस अद्भुत पराक्रम के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा।
1: असाधारण साहस, शौर्य और कृतज्ञता, ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा को वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
0: विंग कमांडर वर्तमान में ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा, उड़ान पायलट।
2: विंग कमांडर नाउ ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा, फ्लाइंग।

0: असाधारण संयम तथा रण कौशल का परिचय दिया। रात के अंधेरे में मौत को चुनौती देते हुए शत्रु के सुरक्षा कवच को भेद कर निर्धारित लक्ष्यों को नेस्तो नाबूद किया और अभियान का गौरव बढ़ाया। इस अद्भुत पराक्रम के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा।
1: असाधारण साहस शौर्य और कृत्य के लिए ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा को वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
0: विंग कमांडर वर्तमान में ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा उड़ान पायलट।
2: विंग कमांडर नाउ ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा फ्लाइंग पायलट फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स।
0: आपको सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा दुश्मन की शस्त्र प्रणालियों से संरक्षित लक्ष्यों पर निर्णायक प्रहार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। शत्रु के रडारों की निगाहों से बचते हुए आपने अत्यंत निम्न ऊंचाई से अपने दल के साथ उड़ान भरी। जो ही अभियान निर्णायक चरण में पहुंचा, आपको दुश्मन की वायु रक्षा विमानों तथा जमीनी हथियारों से जवाबी हमले का सामना करना पड़ा। जीवन पर मंडराते गंभीर खतरे के बीच आपने असाधारण नेतृत्व कौशल तथा अद्भुत धैर्य के साथ अपने प्रभावी फायर से निर्धारित ठिकानों के साथ साथ दुश्मन के नापाक मंसूबों का भी विनाश किया। इस शौर्यपूर्ण अभियान के लिए आपको वीर चक्र से अलंकृत किया जाता है। ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा।
2: एंड अनदर लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विंग कमांडर नाउ ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा फॉर एक्सेप्शनल गैलेंट्री एंड करेज डिस्ट्रॉइंग द डेजिग्नेटेड एनिमी टारगेट रिसीविंग हिज वीर चक्र।
3: लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट 1988 स्वतंत्र मीडियम बैटरी।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट अब वीर चक्र लेने के लिए माननीय राष्ट्रपति के साथ।
3: लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट ने कमान अधिकारी के रूप में एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान में उच्च कोटि के संचालन कौशल का परिचय देते हुए लक्षित आतंकवादी कैंप का संपूर्ण विनाश कर सफलता प्राप्त की। अभियान की तैयारी के दौरान उन्होंने उपग्रह चित्रों का गहन विश्लेषण कर आतंकी कैंप की सटीक पोजिशन वह पहचान सुनिश्चित की। पुनः मिले आदेश पर एक और महत्वपूर्ण सामरिक लक्ष्य भी नष्ट किया। रणनीतिक सूझबूझ व अदम्य साहस के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट।
1: तालियों की गड़गड़ाहट के बीच असाधारण बहादुरी अधिक नेतृत्व और अतुल्य साहस के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट
3: स्क्वाड्रन लीडर वर्तमान में विंग कमांडर सार्थक कुमार उड़ान पायलट।
2: स्क्वाड्रन लीडर नाउ विंग कमांडर सार्थक कुमार फ्लाइंग पायलट प्राउडली मार्चिंग फॉरवर्ड अ क्विक टर्न एंड सल्यूट टू आवर सुप्रीम कमांडर।
3: स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार ने मिशन प्लानिंग सेल के प्रमुख सदस्य के रूप में अनेक डीप स्ट्राइक मिशन की योजना और समन्वय में निर्णायक भूमिका निभाई। वह उच्च जोखिम भरे लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ स्ट्राइक मिशनों में प्रभावी योगदान देते हुए सफलतापूर्वक संपन्न किया और शत्रु की महत्वपूर्ण हवाई संरचना को नष्ट करने में अत्यधिक मदद की। असाधारण साहस एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। विंग कमांडर सार्थक कुमार।
2: Wing Commander Sarthak Kumar for playing a pivotal role in the high-stake long-range off-strike mission with exceptional gallantry and heroism, receiving his Veer Chakra.
3: Squadron Leader Siddhant Singh, Udaan Pilot.
1: Udaan Pilot, Squadron Leader Siddhant Singh ko Veer Chakra ke liye amantrit kiya gaya hai.
3: Squadron Leader Siddhant Singh ne एक अत्यंत जोखिमपूर्ण वायु मिशन में शत्रु की मजबूत एयर डिफेंस प्रणाली को भेदते हुए कम ऊंचाई पर रडार से बचते हुए प्रवेश कर लक्ष्य पर प्रभावी हमला किया और शत्रु की वायु रक्षा संरचना को काफी गंभीर क्षति पहुंचाई। तीव्र खतरे के बावजूद अपनी जान की परवाह न करते हुए सभी निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। अदम्य साहस एवं उत्कृष्ट युद्ध कौशल के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत।

0: thing.
1: असाधारण साहस और शौर्य के कार्य के लिए स्क्वाड लीडर सिद्धांत सिंह माननीय राष्ट्रपति से पदक ग्रहण करते हुए वीर चक्र आपको दिया गया।
0: स्क्वाडन लीडर रिजवान मलिक उड़ान पायलट।
2: Squadron Leader Rizwan Malik from the Indian Air Force now ready to receive his award, Veer Chakra.
0: Squadron Leader Rizwan Malik, operation ke dauran madhya ratri mein ek unescorted strike package ke deputy mission leader ke roop mein udaan bhari. Laksh navintam shaktishali vayu raksha shastra pranali se susajjit tha. Virodhi air space mein nirbadh रडार कवर के बावजूद खतरों से भरे घेरे को भेद कर विरोधियों की घातक रेंज में होने के बावजूद आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र और शत्रु के इलाके में एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया. अदम्य साहस, रणनीतिक कौशल, विलक्षण सैन्य प्रतिभा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है. स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक.
2: Squadron Leader Rizwan Malik, echoes of jubilation in the hall, a proud moment for Squadron Leader Rizwan Malik receiving his Veer Chakra for undaunted spirit.
0: Vartaman mein Squadron Leader Arshveer Singh Thakur, Udaan Pilot.
1: Mananiya Pradhan Mantri, Uparashtrapati aur Tino Senaon ke Adhyaksh is waqt apne sainikon ki shaurya gatha sunte hue.
0: Flight Lieutenant आर्शवीर सिंह ठाकुर ऑपरेशन की मध्य रात्रि में एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए उड़ान भरी. भयावह दायरे को भेदने का अवसर सीमित था, आक्रमण करने का लॉन्च विंडो भी सीमित था. विरोधी के भारी संख्या में होने के बावजूद रात्रि में बेहद नीचे उड़ते हुए रडार को चकमा देकर साहस के साथ शत्रु के सामरिक लक्ष्य को पूरी तरह से ध्वस्त किया. उनके आक्रमण ने विरोधी पर विध्वंसकारी प्रभाव ऐसा डाला जिससे विरोधी उनका हमेशा के लिए सामना करने में अक्षम हो गए. असाधारण साहस और विलक्षण वीरता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है. स्क्वाड्रन लीडर आर्शवीर सिंह ठाकुर.
1: शौर्यपूर्ण कार्य के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट वर्तमान में स्क्वाड्रन लीडर आर्शवीर सिंह ठाकुर माननीय राष्ट्रपति से वीर चक्र लेते हैं.
0: नायब सूबेदार सतीश कुमार, 4th बटालियन द डोगरा रेजिमेंट.
2: एंड नाउ नायब सूबेदार सतीश कुमार फ्रॉम द 4th बटालियन डोगरा रेजिमेंट प्राउडली मार्चिंग फॉरवर्ड.
0: नियंत्रण रेखा पर जब हमारी चौकियां भीषण तोप और मोर्टार गोलीबारी की चपेट में आई तो स्थिति की गंभीरता को समझते हुए नायब सूबेदार सतीश कुमार ने मोटर प्लेटून का नियंत्रण अपने हाथों में लिया और कई स्थानों पर ताबड़तोड़ फायर कर कई लक्ष्यों को बर्बाद किया और नुकसान दुश्मन को भारी पहुंचाया. उनके द्वारा किए गए काउंटर बम्बार्डमेंट और काउंटर मोटर ऑपरेशन ने दुश्मन के मोटर ठिकानों को प्रभावी रूप से दबाकर दुश्मन पर सामरिक बढ़त दिलाई. अधिक संकल्प और साधारण वीरता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है. नायब सूबेदार सतीश कुमार.
2: Hands going up in a round of applause for Nayab Subedar Satish Kumar from the Dogra Regiment and our Honorable President pinning the Veer Chakra Medal of Gallantry on the proud chest of Satish Kumar.
3: शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र. लांस नायक मिनाची सुंदरम ए, तोपखाना रेजिमेंट, 34 राष्ट्रीय राइफल्स.
1: 29 शौर्य चक्र, 15 वीरता चक्र और
3: लांस नायक मिनाची सुंदरम ए कुलगाम के एक ऑपरेशन में आंतरिक घेराबंदी का हिस्सा थे. ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने की हताश कोशिश की और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. इसी भीषण गोलीबारी के बीच लांस नायक मिनाची को चेहरे और दाहिने कंधे पर भी गोली लगी. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने विशुद्ध साहस, मन की दृढ़ता और असाधारण निशानाबाजी के परिचय देते हुए एक आतंकवादी को रोका और उसे भीषण नजदीकी गोलाबारी में मार गिराया. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराने के लिए लांस नायक मिनाची

0: को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए।
1: सात कीर्ति चक्रों में से पहला कीर्ति चक्र दिया जा रहा है लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम का।
0: नायक सुबेदार दुलेश्वर सुब्बा पैराशूट रेजिमेंट।
2: नर्व्स ऑफ स्टील आर मेन एंड सोल्जर हैव दिस इज नायब सुबेदार दुलेश्वर सुब्बा।
0: जम्मू एवं कश्मीर में एक तलाशी अभियान के दौरान नायब सुबेदार दुलेश्वर सुब्बा ने दो आतंकवादियों को एक नाला पार करते हुए देखा और तुरंत अपने दस्ते की स्थिति बदलकर आतंकवादियों को घेरने का आदेश दिया। तभी भागने के प्रयास में आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आपने तुरंत प्रभावी गोलीबारी की जवाबी देते हुए एक आतंकवादी को घायल कर दिया। अपनी जान की परवाह न करते हुए आपने खुद को उजागर किया और दूसरे आतंकवादी पर निशाना साधा, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा आतंकवादी भी मौके पर ढेर हो गया। अद्वितीय वीरता, असाधारण साहस एवं उत्कृष्ट युद्ध कला के लिए नायब सुबेदार दुलेश्वर सुब्बा को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। नायब सुबेदार दुलेश्वर सुब्बा।
2: Round of applause from our Honorable Prime Minister, members of the Cabinet, dignitaries, for Naib Subedar Doleshwar Subba receiving his Kirti Chakra.
0: Major Ashdeep Singh, Kavachit Corps, 1 Assam Rifles.
3: And now, agla Kirti Chakra.
0: मेजर अर्शदीप सिंह सीमा के नजदीकी क्षेत्र में एक विशेष गश्ती दल के अग्रणी थे, जब उनका गश्ती दल अचानक दुश्मन की गोलाबारी के चपेट में आ गया। उन्होंने त्वरित नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को दुश्मनों पर हावी होने के लिए एक सुविधाजनक स्थान पर पहुंचाया। सशस्त्र कैडरों से भिड़ते हुए उन्होंने जैसे ही कैडर को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर के साथ लैस खतरे को देखा तो वे रेंगते हुए आगे बढ़े और सशस्त्र कैडर को मार गिराया। असाधारण वीरता एवं अद्वितीय नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर अर्शदीप सिंह।
3: अद्वितीय वीरता और असाधारण नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह इस वक्त राष्ट्रपति के सामने अपना कीर्ति चक्र ग्रहण करते हैं।
2: Moments like these will be remembered by one and all present here and around the country. Group Captain Prashant Balakrishnan Nair.
0: Air Commodore Prashant Balakrishnan Nair एक योग्य उड़ान अनुदेशक तथा एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं। ये भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए चार गगन यात्रियों में से एक है। इनको एक्सियोम 4 मिशन में एक स्टैंडबाय मिशन पायलट के रूप में चुना गया था, जहां इन्होंने प्राइमरी मिशन कर्मी दल के सदस्यों के साथ अत्याधुनिक मिशन प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनके प्रशिक्षण में जीरो ग्रेविटी सिमुलेशंस, स्पेस वॉक ट्रेनिंग तथा स्पेशलाइज्ड स्पेस फ्लाइट ऑपरेशंस भी शामिल थे। इनके अदम्य साहस एवं असाधारण वीरता के लिए एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन नायर।
2: Proud family with a round of applause proudly receiving the Kirti Chakra. This is Group Captain Prashant Balakrishnan Nair, Flying Captain, Flying Pilot in the Indian Air Force.
0: Captain Lalrin Omar Silo, Parachute Regiment.
3: Aur ab Vishesh Dal 4 Parachute ke Captain Lala Rinao Silo aamantrit kiye gaye hain Kirti Chakra ke liye.
0: कैप्टन साइलो को श्रीनगर इलाके में एक आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। घने जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आपने एक संदिग्ध गतिविधि देखी। मिनी आरपीवी द्वारा आपने खतरे का विश्लेषण किया और स्पष्ट रूप से उच्च श्रेणी के एक आतंकवादी की पहचान की। रणनीतिक संयमता दिखाते हुए आपने आतंकवादियों पर सटीक गोलाबारी की। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप भीषण गोलाबारी के बीच आगे बढ़े और एक खूंखार आतंकवादी को नस्ती की मुठभेड़ में मार गिराया। निर्भीकता साहस का प्रदर्शन करते हुए आपने बाकी आतंकवादियों को भी निष्प्रभावी कर दिया। युद्ध कुशलता, अद्भुत बुद्धिमत्ता और स्पेशल फोर्सेस की निपुणता का प्रदर्शन करने के लिए कैप्टन लालरिन ओमा साइलो को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन लालरिन ओमा साइलो।
3: तालियों की कहता है।

0: live competição. Buscar na TV, Captain Sara. Tito Chatrisa Samari Kedara, Captain Sara.
1: अब शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा लांस दफादार बलदेव चंद आमट कौर चौथी बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत
2: एंड नाउ शौर्य चक्र पोस्थमसली अ वेरी पॉइंटेंट मोमेंट द फर्स्ट चक्र शौर्य चक्र गोइंग टू लांस दफादार बलदेव चंद फ्रॉम द आमट कौर कमिंग फॉरवर्ड टू रिसीव हिज वाइफ एंड मदर
1: लांस दफादार बलदेव चंद 19 सितंबर 2025 को कश्मीर में चलाए गए एक आतंक विरोधी अभियान का हिस्सा थे सशस्त्र आतंकियों द्वारा अचानक किए गए प्राणघातक हमले के बीच घिरे अपने साथियों की रक्षा के लिए आप हथियारबंद आतंकी पर अकेले टूट पड़े अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भीषण हाथापाई के बाद इस शूरवीर सैनिक ने आतंकी से विदेश निर्मित पिस्तौल छीनकर अपने कई साथियों की जान बचाई एवं अपने दल को पुनर्गठित किया सीने में गोली लगने से घायल होने के बावजूद आप आखिरी सांस तक आतंकियों का मुकाबला करते हुए अंततः वीरगति को प्राप्त हुए इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस हवलदार बलदेव चंद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिवानी रनौत तथा उनकी पूज्य माता श्रीमती विजय कुमारी
2: ऑनरेबल प्रेसिडेंट वॉकिंग टुवर्ड्स The martyr's wife and mother to present the Shaurya Chakra posthumously to Lance Dafedar Baldev Chand. Hearts are heavy and overwhelming feeling, but our martyr leaves the family, the near and dear ones, with pride and honor.
1: Ab Veer Chakra Marnoparant Pradan kiye jayenge. उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज सीमा सुरक्षा बल मरणोपरांत कांस्टेबल दीपक चिंगाखम सीमा सुरक्षा बल मरणोपरांत
0: उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज और कांस्टेबल दीपक चिंगाखम की परिवार के सदस्य मरणोपरांत वीर चक्र लेने के लिए इस वक्त माननीय राष्ट्रपति के सामने
1: उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज तथा कांस्टेबल दीपक चेंगखम सीमा सुरक्षा बल की सातवीं बटालियन के दल के साथ जम्मू क्षेत्र में बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात थे 7 मई 2025 की पूरी रात सीमा पार से मोर्टर द्वारा की जा रही अंधाधुंध गोलीबारी के बीच उपनिरीक्षक इम्तियाज ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता न करते हुए बंकर से बाहर आकर खतरे का जायजा लिया और अपने साथी कांस्टेबल दीपक चेंगखम के साथ मिलकर अपनी दोनों लाइट मशीन गन्स के प्रभावी फायर द्वारा इसका सटीक जवाब दिया मोर्टर का एक गोला फटने से शरीर का लगभग हर हिस्सा जख्मी होने के बावजूद अब दोनों ने आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने दल का निरंतर मनोबल बढ़ाया जिससे शत्रु के मंसूबों को विफल किया जा सका उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता असाधारण साहस तथा सर्वोच्च बलिदान के लिए उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज तथा कांस्टेबल दीपक चिंगाखम को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है सम्मान ग्रहण करेंगी उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज की पत्नी श्रीमती शहनाज आजिमा
0: और अब माननीय राष्ट्रपति अपने आसन से नीचे उतरते हुए ये मरणोपरांत
1: कांस्टेबल दीपक चिंगाखम की पूज्य माता श्रीमती चिंगाखम एवं मन देवी एवं पूज्य पिता श्री चिंगाखम बोबिन बिहारी सिंह
0: ये कैसा अवसर है इतना भावुक अवसर होता है जब शहीद सैनिकों के परिजन राष्ट्रपति के हाथों सम्मान ग्रहण करते हैं और पूरा राष्ट्र उनके बलिदान को नमन करता है
1: राइफलमैन सुनील कुमार चौथी बटालियन जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री मरणोपरांत
2: The next of the kin of rifleman Sunil Kumar posthumously coming forward to receive the Medal of Gallantry Veer Chakra, a poignant moment when the entire nation stands beside the family of our great martyr, together sharing their
1: rifleman Sunil Kumar
2: and joy.
1: Sima Suraksha Bal ki 7th Battalion ke saath Sena ke samanvay tukdi ke roop mein Jammu Kshetra ke

0: सीमा चौकी पर तैनात थे। 7 मई 2025 सीमापार से शत्रु द्वारा लगातार की जा रही भारी गोलाबारी के बीच चौकी की ओर बढ़ते दुश्मन के सशस्त्र पेलोड से उत्पन्न खतरे को भांपते हुए ये जांबाज सैनिक निडरता के साथ अपने बंकर से बाहर निकला और अद्भुत रणकौशल का परिचय देते हुए अपनी लाइट मशीन गन के सटीक प्रहार से उस घातक आयुध को निष्क्रिय कर दिया। प्राणघातक परिस्थितियों में इस शौर्यपूर्ण कार्य को अंजाम देते हुए गंभीर रूप से घायल होने के कारण अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुए। अटूट कर्तव्य निष्ठा तथा सर्वोच्च बलिदान के लिए राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत वीर चक्र से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही है उनकी पूज्य माता श्रीमती सुदेश कुमारी तथा पूज्य पिता श्री यशपाल।
1: To the next of kin, the parents of rifleman Sunil Kumar, awarding them the Veer Chakra posthumously. To the proud family saluting the mother for giving birth to such a brave heart.
0: अब कीर्ति चक्र मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर महार रेजिमेंट पहली बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत।
2: और अब कीर्ति चक्र मरणोपरांत दिया जा रहा है सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर के परिवार को। द महार रेजिमेंट एक राष्ट्रीय राइफल्स के है सिपाही।
0: 6 जुलाई 2024 सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियां देखते ही आपने अपने दल को सतर्क किया। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस शूरवीर युवा सैनिक ने अपने प्रभावी फायर से उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच आपने अपनी जगह बदलते हुए सटीक निशाने से 2 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजाल एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल।
2: कीर्ति चक्र मरणोपरांत दिया जा रहा है सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर की पत्नी को। बहुत ही भावुक क्षण है जब माननीय राष्ट्रपति उनसे गले मिलते हुए गले लगाते हुए उनकी माता को बहुत ही भावुक होते हुए
1: A tearful mother, unable to bear the loss of her son, a great martyr,
0: Lieutenant Shashank Tiwari, सेना सेवा कोर फर्स्ट सिक्किम स्काउट्स मरणोपरांत।
1: एंड नाउ द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी पोस्थमसली फ्रॉम द आर्मी सर्विस कोर कमिंग फॉरवर्ड टू रिसीव द ऑनर इन द फॉर्म ऑफ कीर्ति चक्र फॉर देयर बिलव्ड। Greeting,
0: Lieutenant Shashank Tiwari ने 22 मई 2025 को उत्तर सिक्किम के दुर्गम पहाड़ी इलाके में चलाए गए एक ऑपरेशनल गश्त का स्वेच्छा से नेतृत्व संभाला। गश्त के दौरान उनका एक अग्निवीर स्टीफन सुब्बा संतुलन बिगड़ने से नदी में जा गिरा। अपने साथी को नदी की प्रचंड धारा में बहता देख इस युवा अधिकारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत नदी में छलांग लगा दी और नुकीली चट्टानों के बीच विकराल जल प्रवाह से जूझते हुए घायल होने के बावजूद अपने साथी को सुरक्षित किनारे तक धकेला। लेकिन तीव्र प्रवाह एवं गंभीर चोटों के कारण वो स्वयं को न बचा पाए। अंततः सैन्य धर्म के सर्वोच्च आदर्शों के अनुरूप अटूट बंधुत्व एवं त्याग का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी पूज्य माता श्रीमती नीता तिवारी

0: Pujya Pita Sri Jang Bahadur Tiwari.
1: A teary-eyed mother, a teary-eyed audience, the mother receiving a warm hug from our honorable president, wiping the tears. It's difficult for one and all to hold back the tears. Kirti Chakra posthumously for Lieutenant Shashank Tiwari.
2: राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक वातावरण देशभक्ति सम्मान और गौरव की भावना से ओतप्रोत दिखाई दे रहा है। समारोह अब समापन की ओर बढ़ता हुआ सभी जो और अब रक्षा सचिव माननीय राष्ट्रपति से समारोह समाप्त करने की
3: माननीय राष्ट्रपति महोदय आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए।
1: And now seeking the permission for a closure, the audience is rising for the national song and the national anthem.

0: soulful tunes being belted out by the Maha Regimental Centre and our Honourable President bowing to the audience with a namaste and slowly, gracefully interacting with the audience and heading towards the grand entrance of the Ganatantra Mandap. Glory, honour, duty and discipline are words which define events like the Defence Investitures Ceremony 2026 Phase 1, which is coming towards a beautiful, soulful, solemn closure. And one is reminded of the Sanskrit Shloka. At the moment, our other dignitaries, our Honourable Prime Minister, interacting with the members, audiences. And one is reminded of this beautiful Sanskrit shloka. Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityur ma amritam.
1: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव प्रसारण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे एसवाई खान हिंदी में और ज्योति अहलावत अंग्रेजी में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे।

0: की चर्चा समाज से, साझे प्रयासों से, साझी कार्य योजना से और भविष्य के अंदर अपने अपने राज्य की विधानसभाओं के अंदर अपने राज्य के विकसित राज्य के संकल्प के साथ विकसित भारत के संकल्प के लिए सामूहिक प्रयासों के लिए और सामूहिक संकल्प के लिए एकत्रित हुए। देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं में हर संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हर कालखंड के अंदर समय समय पर हमने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से निर्णय प्रयास करते हुए देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की दिशा तय की है।
1: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज 355 नौजवानों नु नियुक्ति पत्र सौंपे, जिस नाल हुण तक दित्तियां गईयां कुल सरकारी नौकरियां दी गिणती 67,037 हो गई है। इस प्राप्ति नु पंजाब विच नवें भर्ती प्रबंध दा प्रतक प्रमाण दसदियां मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार सरकारी नौकरियां सिर्फ योग्यता, पारदर्शिता ते निरपक्ष मुकाबले दे आधार ते बिना किसी सिफारिश, राजनीतिक प्रभाव जां भ्रिष्टाचार दे दित्तियां जा रहियां ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ना सिर्फ नौकरियां पैदा कर रहा है सगों अजिहे मौके भी पैदा कर रहा है जो नौजवानों नूं अपने सूबे विच रहण, अगे वधण ते सफल होण लई उत्साहित करदे ने। तकनीकी सिख्या, सहकारिता, स्थानक सरकारां, जल सप्लाई ते सैनिटेशन, पशु पालन, लोक निर्माण, मकान सारी ते शहरी विकास ते होर विभागां विच नवें चुने गए उम्मीदवारां नूं नियुक्ति पत्र वंडण दे समारोह दौरान इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं मुख्यमंत्री ने कहा कि दिन पंजाब सरकार ते सूबे दे नौजवानां नूं रोजगार ते चंगे शासन राहीं मजबूत बनाउण दे चल रहे मिशन विच इक होर महत्वपूर्ण मील पत्थर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहद माण ते संतुष्टी वाली गल है कि पंजाब ते सरकारी स्कूलां विच हुण विश्व पद्धरी सिखलाई प्राप्त अध्यापक सिख्या प्रदान कर रहे ने। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करदे अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी ते हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक अफगान नागरिक समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार करके उन्होंने कब्जे विचों 8 अत्याधुनिक पिस्तौल ते 7 जिंदा कारतूस बरामद किए ने। पुलिस जांच दौरान सामने आया कि गिरफ्तार मुलजम विदेश विच बैठे तस्करा के संपर्क विच सन जो ड्रोन राही भारत पाकिस्तान सरहद नेड़े हथियारों की खेप सुटते सन। इन्हां दा काम इन्हां हथियारां नूं प्राप्त करके अगे अपराधक अंसरां तक पहुंचाउणा सी। गिरफ्तार कीते गए मुलजमां दी पछाण मनजीत सिंह, शमशेर सिंह, गुरलाल सिंह अते अफगान नागरिक इस्माइल खेल वजों होई है। पुलिस मुताबिक इस्माइल खेल महाराष्ट्र विच ड्राई फ्रूट दे कारोबार नाल जुड़िया होया सी। जांच विच एह गल भी सामने आई कि ड्राई फ्रूट दे कारोबार दी आड़ विच हवाला राहीं पैसियां दा लैण देण करदा सी। इस नेटवर्क दे तार पाकिस्तान अते अफगानिस्तान तक जुड़े होण दे संकेत मिले ने। कुछ दिन पहला पुलिस वालों अजिहे ही मामले विच अमृतसर तो एक होर व्यक्ति नो गिरफ्तार किया गया सी। एक खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो, साडा एक्सएंडले @AIR RN जलंधर। सूबे के शहरी खेत्रां विच सफाई व्यवस्था नूं दुरुस्त करन लई एक विलक्षण कदम चुकदिआं पंजाब दे स्थानक सरकारां बारे मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने अज मिशन क्लीन पंजाब की शुरुआत कीती। तकनालोजी आधारित इस मुहिम तहत उपर तो लैके हेठले पद्धर तक दे सारे नगर निगम ते कौंसल अधिकारी रोजाना सवेरे 7 तो 8 तक फील्ड विच दिखाई देणगे। इत्थे विभाग दे मुख दफ्तर विखे मिशन क्लीन पंजाब दा आगाज करदिआं श्री बैंस ने फील्ड अधिकारियों नाल वीडियो कॉल राही मुहिम दे पहले दिन की समीक्षा ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ADC, MC, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਿਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ EO ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। सारे अधिकारी रोजाना सवेरे 7 तो 8 तक लाजमी तौर पर फील्ड का दौरा करेंगे। स्थानक सरकारा मंत्री खुद भी पूरे पंजाब विच अचनचेत चैकिंग करेंगे। निगरान अधिकारी रोजाना रिपोर्टा भेजेंगे ते किसी भी चीज नूं छड्डिया नहीं जाएगा। मंत्री ने दस्सिया कि AI आधारित ऐप इस मुहिम की रियल टाइम प्रगति नूं ट्रैक करेगा। अधिकारी वीडियो कॉलों ते उपलब्ध रहेंगे अते बिना किसी अगाऊ सूचना के किसी भी अचनचेत चैकिंग की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मुहिम का उद्देश्य प्रत्यक्ष अते दस्तावेजी नतीजे हासिल करना है। देश का भरोसेमंद लोक प्रसारक आकाशवाणी अज अपने 90 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस दिन 8 जून 1936 इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो AIR रखा गया सी। साल 1956 ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के आकाशवाणी कर दिया गया। अज आकाशवाणी वालों 591 स्टेशन चलाए जाते हैं जो भारत की 98% आबादी तक पहुंचते हैं। 23 भाषावां 146 बोलियां विच प्रसारण करते हैं। आकाशवाणी का आदर्श वाक्य भोजन हिताय भोजन सुखाए। इस दौरान

0: मेरा एक जिद्दी गुआंडी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगा लेने, पर ओमन ननु तैयार ही नहीं सी कि सचमुच बिल जीरो आ सकता है। मैं क्या पुत्र, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सब का बिजली बिल जीरो आन लगा, फिर बोलिया हुण लगा ही दिना हां। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: सत श्री अकाल दोस्तों।

0: invites online applications from unmarried male and female candidates for 10 plus 2 BTech cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: दोस्तों तुसीं सुन रहे हो एफएम बैंड 102.7 ते मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। दोस्तों फौजी दे भी ना रूप होंदे ने कई, जिवें कि फौजी सिर्फ सरहद ते नहीं हुंदा, फौजी हर थां ते हुंदा है जिथे कोई रक्षा कर रहा होवे। पहली किस्म आती है फौजी दी, सरहदी फौजी। ये असली फौजी जेड़ा 40 डिग्री सियाचन च 50 डिग्री थार च शिकायत करता हुंदा है। आपां गल कीती सी, एक हुंदा घर दा फौजी, फौजी दी पत्नी, मां, प्यो, जिहड़े रोज टीवी दे खबर वेख के डरदे पर फोन ते हस के कहिंदे पुत्तर ध्यान नाल रही। उदाहरण वजो कि शहीद दी मां पुत्तर दी चिट्ठी आउंदी है, नाल तिरंगा भी, पूरा पिंड रोंदा। मां सीना ताण के कहिंदी है मेरा पुत्तर शहीद होया है, मैनू माण है। अंदरों दिल चीरिया जांदा पर बाहरों चढ़दी कला। फलसफा यही है दोस्तों कि असली जंग सरहद ते नहीं लड़ी जांदी, घर दे वेड़े च भी लड़ी जांदी है, वह है इंतजार दी जंग। तीजा है कि समाजिक फौजी, यानी कि सोशल फौजी। वह अध्यापक जिहड़ा गरीब बच्चों नू मुफ्त पढ़ाउंदा, और डॉक्टर जिहड़ा रात 2 बजे मरीज वेखण जांदा, ओ किसान जिहड़ा कर्जे दे बावजूद अनाज उगाउंदा। उदाहरण

कोई मेडल नहीं मिलता, पर वो अपनी जिंदगी दे सरहद बचा लेंदा। दोस्तों, फलसफा है कि बाहरले दुश्मन नूं हराउणा आसान है, अंदरले दुश्मन नूं हराउणा बहादुरी है।

दोस्तों तो सुन रहे हो एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते। मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। दोस्तों तुहानू पता है कि बहादुरी दी है ना पंज किस्मां होंदियां है। केड़ी केड़ी दसदा। पहली होंदी जंगी बहादुरी, मैदान च लड़ना, दुश्मन का सामना करना। दूजी होंदी है नैतिक बहादुरी, गलत देख के भी चुप ना करना, भीड़ के विरुद्ध खड़ा होना। तीजी होंदी है भावनात्मक बहादुरी, अपने दर्द नुकसान असफलता नूं कबूल करना। चौथी होंदी है बौद्धिक बहादुरी, यानी कि पुराने विचारों नूं चुनौती देना। ये तो सदियां जिहड़ियां सदियां तो चलता आया है कि कहण वालियां नूं सवाल करना। ते पंजवीं है रोजाना दी बहादुरी, यानी कि एवरीडे करेज। ये सब तो औखी है क्योंकि इसका कोई मैडल नहीं होंदा। उदाहरण वजों कर्जे च डुबिया किसान रोज सवेरे खेत च जांदा, कैंसर दी जिहड़ी मरीज कीमो तो बाद भी बच्चे लिए लंच बनाउंदी है, फेल होया मुंडा दोबारा प्रीख्या देंदा है। इसका फलसफा यही है दोस्तों कि रोज उठना, डिग के फिर खड़ा होना। यह महाभारत जितना नालों घट नहीं है।

0: 7 बज के 3 मिनट होने जा रहे हैं, तो प्रोग्राम जिसका नाम है फिल्मी दुनिया, उस विच तुहाडा एंट्रेंस हो चुकी है। सो जी आखते हैं जी तमाम उन्होंने दोस्तों के जिन्ह ने ट्यून इन किया हुआ जी एफ एम रेनबो चैनल नू अपनी गड्डी दे विच, अगर वो कितने ट्रैवल कर रहे हैं जां फिर ओ आई ए न्यूज़ ऑन ए आई आर ऐप के जरिए सानू देशों विदेशों दे विच भी बैठे सुन रहे हैं, आप सब नू प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। तो एक बार फिर तो तुहाडा इस्तकबाल है जी प्रोग्राम फिल्मी दुनिया दे विच, कर रहा तुहाडा अपना दोस्त बिपन सुमन। दोस्तों शाम के 7 बज रहे ने, मैनूं लगदा जी चाह दे कप भी हाथ दे विच होणगे, ते मैं तुहाडे कन्नां दे विच महक दे वांगू या कह सकदे आ कि उस बोली दे वांगू घुलण दे लई तैयार हाँ। तो बॉलीवुड की ओ अदाकारा दे बारे दे विच तुहानूं जानकारी देण लई बेकरार हाँ, जिसने 16 साल की उम्र दे विच ही लखां दिलां दी धड़कन वधा दित्ती सी और जिसने एक झटके दे नाल ही इंडस्ट्री नूं हिला दित्ता सी। 11 साल का ब्रेक लैके जदों वापसी कीती कहिंदे जी दूसरी इनिंग्स दे विच उन्होंने पहली इनिंग नालों भी ज़्यादा कमाल कीता है। इदा नहीं जी, इस तो अलावा म्यूजिक प्रोड्यूसर्स की गल करांगे, एक कॉमेडियन आर्टिस्ट और एक्टर जिन्होंने फिल्मों जिहड़ा है मकबूल करन दे विच बहुत वड्डा योगदान दिता। सो अज फिल्मी दुनिया दे विच बहुत कुछ है जी तुहाडे लई, पर किहड़ी अदाकारा है जिन्होंने फर्स्ट इनिंग ते सैकेंड इनिंग दे विच बेहतरीन अदाकारी दे जौहर दिखाए सीगे, सो उन्हां दी ही एक बहुत ही चर्चित मूवी का बहुत सुपर डुपर हिट गीत है जी, वो मैं तुहानू सुनाउण जा रहा। मैनू लगदा जी गाने की पहली ट्यून
1: ना आ सके,
0: बस मैं लगता जी तुहानू पता लग ही गया,
1: अंदर से कोई बाहर ना जा सके,
0: जे नहीं पता लगा ते
1: सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम
0: सो मिलते जी गीत दे उस पार।

बेहतरीन रही, लेकिन सेकेंड इनिंग जी उस तो भी ज़्यादा बेहतरीन रही। सिर्फ बोल्ड अंदाज दे विच या बोल्ड एक्टिंग दे करके नहीं, बहुत सारिया संजीदा मूवीज़ दे विच भी उन्होंने बहुत खूबसूरत किरदार निभाए ने। 80 ते 90 दे दहाके दे स्टार डिंपल कपाड़िया जी ने सिर्फ ग्लैमर ही नहीं सगों गंभीर किरदार दे विच भी अपनी अदाकारी दे जौहर मनवाए ने, जिन्हां दे विचों कुछ मूवीज़ खास और दृष्टि, लेकिन और रुदाली। डिंपल जी दे करियर दियां जेकर सब तो वधिया फिल्मां दी गल करदे आं तां सन 1973 दे विच आई हुई बॉबी मूवी सर्वोत्तम अदाकारी दा अवार्ड मिलिया सी। उस तो बाद दे विच सन 1985 दे विच सागर मूवी दे लई, सन 1993 दे विच रुदाली दे लई, सन 1994 दे विच क्रांतिवीर दे लई ते 2001 दे विच दिल चाहता है दे लई वीना दे इन्हां फिल्मां दे विच निभाए गए किरदारां दे लई इन्हां नूं बहुत सराहया गया। सो बहुत सारे ऐसी चुलबुले जे और प्यार मुहब्बत परे ट्रैक सुने ने, ते हुण एक ट्रैक आ रहा जी थोड़ा जिहा संजीदा, ज़्यादा भी संजीदा नहीं है, लेकिन फिर भी कि एक कलाकार आर्टिस्ट वो हुंदा जिहड़ा हर एक तरह की अदाकारी दे रोल नूं निभा सके। सो उस अदाकारी नूं बखूबी निभाया सी डिंपल जी ने। सो उन्हां दी ही मूवी का अगला ट्रैक लैके हाजिर हो रहा जी किशोर ते लता जी की आवाज़ दे विच।

वेलकम बैक दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा जी फिल्मी दुनिया। तो फिल्मी दुनिया के अज असी गल कर रहे हैं जी साड़ी अज दे हैप्पी बर्थडे वाले एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया जी के बारे। सो डिंपल जी नू कई बहुत वड़े इनाम सम्मान भी मिले, जिन्हां दे विचों उन्हां दी सब तो पहली मूवी फिल्म फेयर दे लई बेस्ट एक्ट्रेस दे वल्लों उन्हां नू नॉमीनेट किया गया सी, ते ये अवार्ड उन्हां ने जितया भी सी। और शायद ही कोई अजिहा बच्चा होएगा 16 साल की उम्र दे विच, आपां बच्चा ही कह सकते हैं, जिन्हां ने मूवी दे विच रोल किया ते उन्हां नू फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिलिया। इस तो इलावा रुदाली मूवी के एक्टिंग के लिए इन्हों नैशनल फिल्म अवार्ड मिलिया, और क्रांतिवीर मूवी के लिए इन्हों फिल्म फेयर क्रिकेट क्रिटिस अवार्ड भी जड़ा है वह मिलिया। सो कई लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान उन्हों की अदाकारी अज भी फिल्म स्कूलों के उदाहरण वजो देखा जाता है। तकरीबन डिंपल जी ने नवी पीढ़ी के नाल भी मिलकर बहुत सारिया शानदार मूवीज़ के काम किया, जिन्हों के दिल चाहता है, फाइंडिंग नैनी और पठान मूवी के भी इन्हों की अदाकारी सराया गया। और खास गल है कि हॉलीवुड की मशहूर फिल्म टेनेट विच भी इन्होंने काम किया है। सो बहुत ही खूबसूरत गल्लां दे विचों जेकर मुड़ तो कुछ गल्लां दा जिक्र करदे आं, तां बॉबी समय डिंपल जी की उम्र सिर्फ 16 साल की सी, और पहली ही फिल्म दे लई इन्हां नूं फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलिया सी। और 50 साल की वध समय तो वह दर्शकों के दिलों के अपनी जगह नूं बरकरार रखे हुए ने। दोस्तों डिंपल कपाड़िया सिर्फ एक अदाकारा नहीं, सगों भारतीय सिनेमा की एक ऐसी शख्सियत है जिसने हर दौर विच अपने आप नूं साबित किया, चाहे गल बॉबी दी मासूम कुड़ी दी या रुदाली दी गंभीर अदाकारा दी। डिंपल कपाड़िया ने हर किरदार नूं यादगार बना दिता। अज उन्हां दे जन्मदिन के मौके असीं उन्हां नूं दिलों वधाई दिंदे हां ते उन्हां दी लंबी उम्र ते चंगी सेहत की कामना करदे हां। सुना दिया यादगार मूवीज़ के कुछ मूवीज़ के ट्रैक प्ले कर जा रहे हैं जी थोड़े वास्ते, और मेरे नाल जुड़े रहना क्योंकि जी आज दा जिहड़ा समा है इत्थे ही खत्म नहीं हुंदा, क्योंकि एक होर कॉमेडियन कलाकार ने उस तो इलावा म्यूजिक इंडस्ट्री के नाल खास तालुकात रखते एक होर शख्सियत है जी, उन्हां दे नाल भी जुड़ी हुई जानकारी थोड़े नाल सांझी करांगे इसे ही प्रोग्राम फिल्मी दुनिया के। तद तक लई स्टे ट्यून्ड विद 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल नाल।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन विखे एक समारोह दौरान हथियारबंद फौजां, केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बलां अते राज अते केंद्र शासित प्रदेश पुलिस दे मुलाजमां नूं बहादरी अवार्ड प्रदान कीते। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अज चंडीगढ़ विखे हरियाणा विधानसभा विच सीपीए इंडिया रीजन जोन 2 कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज 355 नौजवानों नूं नियुक्ति पत्र सौंपे। सरकार का कहना है कि देश भर विच खादा का कुल भंडार चंगी स्थिति विच है ते देश भर विच खाद की उपलब्धता विच कोई वड्डी चुनौती नहीं है। केंद्रीय मंत्री गोयल ने 100 सनती पार्कों के विकास नूं तेज करन लई भव्या पोर्टल लॉन्च किया। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी अते हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश करदिया एक अफगान नागरिक समेत 4 मुलजमान नूं गिरफ्तार किया। पंजाब दे जल स्रोत मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने अज अमरगढ़ विधानसभा हलके दे पिंड माणक माजरा अते दहलीज खुरद विखे 13 करोड़ रुपए दे सिंचाई प्रोजेक्टां दी शुरुआत कीती। पंजाब दे स्थानक सरकारा बारे मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मिशन क्लीन पंजाब दी शुरुआत कीती। अते आकाशवाणी दे 90 साल पूरे होण मौके अज आकाशवाणी जलंधर वल्लों अज KL सैगल ऑडिटोरियम विखे एक शास्त्रीय संगीत समारोह एक शाम शास्त्रीय संगीत दे नाम करवाया जा रहा है। ये सन हुण तक दियां FM न्यूज़ हेडलाइन। सुन तो कुछ ही पलां च प्रोग्राम लैके हाजिर होवांगे मसाला मिक्स।

वंस अगेन जी वेलकम बैक। प्रोग्राम मसाला मिक्स दी शुरुआत हो चुकी है 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल दे नाल तुसी जुड़े हुए हो जी। और आने वाले एक घंटे के सफर के दौरान असी करांगे मसाला मिक्स दियां ओ गल्लां जिस दे नाल तुसी महक जाओगे। इस सफर के दौरान दिमाग नूं हासा भी आवेगा, पेट दे लई रेसिपी भी है और दिल दे वास्ते गाने भी ने। सो पूरा फुल पैकेज है जी, जोक्स तों लैके जेम्स तक, साइंस तों लैके सैर तक, स्पोर्ट्स तों के सोशल मीडिया तक वायरल हर चीज की करांगे असीं गलबात इस प्रोग्राम दे विच।

कोई ना कोई चाहिए हमारी बातें सुनने वाला मेरे जी। हमारी बातों को सुनने के लिए हमारे बहुत से दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय प्रोग्राम मसाला मिक्स में। और दोस्तों मसाला मिक्स में आपको हमारी बातें भी सुननी है लेकिन मरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेहत के साथ जुड़ी हुई बहुत ही खास जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं। चलो जी हिंदी तो पंजाबी दे आ जाने हैं, क्योंकि खबर जड़ी मेरे सामने है वो हिंदी दे विच सी, फिर थोड़ा जा मैं हिंदी वालों चला गया। अखां बंद करके हर एक चीज़ पर विश्वास नहीं करना चाहिए, खास तौर पर खाण पीन वाली चीज़ों के हेल्थ बेनीफिट्स अगर है तो वो नुकसान भी होंगे ने। एक अजि खबर आई है जी अश्वगंधा को लैके, अश्वगंधा के उपर FSSAI दी कुछ गाइडलाइनस ने। उन्होंने कहा कि हर खाने वाली चीज़ जिस अश्वगंधा पाया गया उसनों खरीदने तो पहला चंगी तरह जरूर पढ़ लिया जाए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइनस जारी की है, जिस विच उन्होंने कहा कि फूड प्रोडक्ट सप्लीमेंट या दवा दे विच अश्वगंधा दियां पत्तियां दा उपयोग जिहड़ा है वह हुण बैन कर दिता गया है। उन्होंने कहा कि एक औषधि के रूप दे विच इसनूं असीं इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्ट्रैस एंगजायटी घट करन दे लई फिजिकल स्ट्रेंथ वधाउण वधिया नींद लियाउण दे विच यूज़ किया जाता है, पर हमेशा ही इसकी मात्रा ते सही तरीका की होना चाहिए उस दे बारे दे विच जिहड़ी है कि एक हालात अजिहे बने रहिंदे ने जो सही नहीं होंदे, इस करके इसनों जिहड़ा है फूड प्रोडक्ट दे विच बैन कर दिता गया है। सो अश्वगंधा संस्कृत के दो शब्द अश्व यानी घोड़ा, गंध यानी महक तो है, यानी कि इस दे इस्तेमाल दे नाल इंसान चुस्त फुरत चुस्ती फुरती जिहड़ी है वह आ जाती है। तो एडापोटेजोन जिहड़ा है अश्वगंधा नूं जिहड़ा एक सोर्स है वह मन्या जाता है, और इसका इस्तेमाल जिहड़ा है फूड प्रोडक्ट सप्लीमेंट या दवाइयां दे विच पत्तियां दा जिहड़ा अर्क कढ के है उसनों बनाया जाता है, पर हुण इस दे उपर रोक लगा दित्ती गई है। FSSAI का कहना है

जी कि कुछ कंपनियां फूड प्रोडक्ट्स दे विच अश्वगंधा दियां पत्तियां दा जां उन्हां दा जिहड़ा रस है जां अर्क है उसनू एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल कर रही ने, जबकि अजिहा करन दी उन्हां नू कोई भी अनुमति या इजाजत नहीं है। FSSAI दे मुताबिक 2016 दे रेगुलेशन दे विच केवल अश्वगंधा दी जड़ नू ही इस्तेमाल करन दी इजाजत है, उस दियां पत्तियां नू इस्तेमाल करन दी इजाजत नहीं है। सो इन्हां पत्तियां दा नकारात्मक प्रभाव इंसान दे शरीर दे उपर पै सकदा है, इस करके उन्हां ने इस नू बंद कर दिता है। सो अश्वगंधा दे न्यूट्रियल वैल्यू भी जिहड़ा है तुहानूं दस दिंदे आ बैन कर दिता गया, पर इस दीआं न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की हुंदीआं ने, इह कि कहा जांदा है कि इस दे विच सोर्स दे विच अगर असीं 100 ग्राम अश्वगंधा पाउडर लैंदे आ तां उहदे विच 3.9 ग्राम जिहड़ा प्रोटीन मिलदा है और 32.3 ग्राम फाइबर, 50 ग्राम दे करीब कार्बोहाइड्रेट, 3.3 मिलीग्राम दे करीब आयरन और 23 मिलीग्राम दे करीब कैल्शियम और 3.7 मिलीग्राम के करीब विटामिन सी वर्गे जिहड़े खनिज तत् ने पाए जाते हैं। सो शरीर नूं बेनीफिट ते ने, पर अपना जिहड़ा जी सेहत दा ख्याल असीं आप रखना है। सो इदां दी ही एक होर खास इनफॉर्मेशन है, वो इनफॉर्मेशन है जी जदों तुसीं कुछ ना कुछ परचेज़ करन दे लई दुकान ते जांदे हो तां हर कोई सिर्फ एको चीज़ पढ़दा है एक्सपायरी डेट, पर सच जाणियो कि कल्ली खाण पीण दे प्रोडक्ट दे उपर एक्सपायरी डेट लिखी हुंदी है, उस दे उपर 3 चीज़ां लिखियां हुंदियां ने, एक तुहानूं नज़र आएगा बेस्ट बिफोर, एक नज़र आएगा यूज्ड बाय और एक नज़र आएगा एक्सपायरी डेट। हुण इन्हां तिन्नां दा आपस दे विच मतलब की है जी, तिन्नों सेम बिल्कुल नहीं ने, की है इन्हां दा मतलब वो तुहानूं दस्सांगा, पर सेहत दे उत्ते जानकारी दे रही हां थोड़ी जी, तां मैनूं लगदा कि बाकी दे कम बाद च पहलां सेहत जरूरी है। गुरदास मान जी दे आवाज़ सुणदे हां।

FM 102.7 MHz से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है जी और चल रहा है प्रोग्राम मसाला मिक्स। सो दोस्तों जी बहुत सारिया गल्लां बातां दे विचों एक जिहड़ी है खबर मेरे सामने आ रही है जी क्रिश 4 मूवी नूं लैके। बॉलीवुड जगत दीआं वी कुछ खबरां असीं इस विच सांझियां करदे हां। फिल्मी दुनिया तों इह खबर है जी और फिल्म बंद होण दीआं खबरां दे उपर राकेश रोशन जी ने कोई अपना बयान जिहड़ा है ओह दित्ता है। की दित्ता है आओ दस्सां तुहानूं मैं।

वेलकम बैक जी, प्रोग्राम चल रहा है मसाला मिक्स। ते जांदे जांदे एक खबर क्रिकेट जगत तो, स्पोर्ट्स की दुनिया तो खबर है जी कि भारत की टेस्ट क्रिकेट टीम ने सब तो बड़ी जित हासिल की है जी। न्यू चंडीगढ़ के अफगानिस्तान नू पारी और 300 स्कोर्स के नाल हराया है और मानव सुधार जी कमाल कर गए।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन विखे आयोजित समारोह च वख वख हथियारबंद पुलिस बलों ते पुलिस कर्मचारियों नू बहादरी पुरस्कार प्रदान कीते। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ च राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन दो कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। पेट्रोलियम अते कुदरती गैस मंत्रालय ने कहा पछमी एशिया विच टकरा दे बावजूद देश विच कच्चे तेल LPG अते कुदरती गैस की सप्लाई पूरी तरह आम वांग बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वालों देश भर विच 100 उद्योगिक पार्कों के विकास नू तेज करन लई भव्या पोर्टल की शुरुआत। भारतीय दूतघर ने ईरान विच हाल ही के दिनों विच विगड़ती स्थिति के मद्देनज़र भारतीय नागरिकों नू ईरान की यात्रा तो बचन की सलाह। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज 355 नौजवानों नू नियुक्ति पत्र सौंपे। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी और हवाला नैटवर्क का पर्दाफाश करदिया एक अफगान नागरिक समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार किया। पंजाब के स्थानक सरकार बारे मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मिशन क्लीन पंजाब की शुरुआत की। फिलीपींस के दक्षणी हिस्से 7.8 तीव्रता के आए भूचाल में घट्टो घट 32 लोगों की मौत 200 तो वध जख्मी। देश का भरोसेमंद लोक प्रसारक आकाशवाणी अज अपने 90 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। अते मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों लई पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ अते दिल्ली विच लू की पेशनगोई की है। ये सन हुण तक दी FM न्यूज़ हेडलाइंस। हुण तो कुछ ही पलों च प्रोग्राम दिल चाहता है लैके हाजिर होवांगे।
1: जब रूठ जाती है तो
2: गाओ वालो बसंती को समझाओ आजकल वो मेरी नहीं सुनती सारा दिन FM रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग गाओ वालो अब मैं जा रहा हूँ FM रेनबो लाने। कसम सुनते रहिए 102.7 FM रेनबो।

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर राय जी रेनबो चैनल और इस वेले रेनबो दी कड़ी दे मुताबिक 9:04 हो चुके ने और प्रोग्राम दिल चाहता है शुरुआत हो चुकी है। ओ प्रोग्राम जिस दे विच तुसी व्हाट्सएप दे जरिए अपनी हिंदी फिल्मी गीतां दी फरमाइश नूं अपने आरजे दोस्त तक पहुंचाउंदे हो। नंबर है जी 9855 10 10 27 यानी कि 9855101027। जिन्हां दोस्तां दी फरमाइश सानूं ठीक 9 बजे तो बाद मिल गई होएगी जी, उन्हां दी फरमाइश नूं असीं पूरा करना शुरू करांगे और बाकी दे दोस्त मैसेज कर सकदे ने जी। उन्नी देर तक सुनदे हां प्रोग्राम दा पहला

FM 102.7 MHz आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है जी। और इस वेले प्रोग्राम दिल चाहता है दी हुणे हुणे ताजी ताजी शुरुआत हुई है जी। ते ए ओ प्रोग्राम जिस दे विच तुहाडे हिंदी फिल्मी गीत जिहड़े ने फरमाइश दे रूप च साडे कोल पहुंचदे ने, ते उस फरमाइश नूं असीं पूरा करदे हां जी। ते तुसीं फरमाइश साडे तक पहुंचदी करदे हो जी WhatsApp नंबर दे जरिए। नंबर एक वारी फिर दस दिंदे हां जी, 9855 10 10 27, यानी कि 9855101027। इस दे उपर पहली फरमाइश साडे तक पहुंच चुकी है जी। प्यार परी नमस्कार, सत श्री अकाल आख रहे ने जी, और 90 साल आकाशवाणी के पूरे होने वधाइयां भी दे रहे हैं। और अज ते साडा हर एक दोस्त सानू 90 साल पूरे होने ते जिहड़ियां ने वधाइयां देगा जी। और ये साडे दोस्त ने जी पिंड हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा तो, राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सचिन शर्मा ते परिवार के सारे मैंबर और अपना फरमाइशी गीत साडे नाल सांझा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस नाल ही अगले होर साडे दोस्त वधाइयां देंदे हुए साडे तक पहुंचे ने जी। चंडीगढ़ तो सतीश अनेजा जी और बिमला अनेजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी फरमाइश सांझी करन दे लई। और अगले दोस्त ने जी साडे ग्राम पंचायत काले गांव जफराबाद तो साढ़े दोस्त साढ़े तक पहुँचने जी, सुधाकर राजे, इन्हां दे नाल प्रशांत कुमार, संचित, पथमेश, प्रणाली, सदर्व, सानवी और कुमारी, कल्पना देशमुख जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी पूरे दोस्तों का, पूरे परिवार का साढ़े तक अपनी फरमाइश सांझी करन दे लई। और अगला जिहड़ा ट्रैक है साढ़े तक आन पहुंचा जी अपनी फरमाइश साढ़े दोस्त नई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान तो, वीर मिड्डा और अलका मिड्डा जी साढ़े तक सांझा कर रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया और तुसी अपनी फरमाइश साढ़े तक सांझी की है जी। और अगली फरमाइश साढ़े तक आन पहुंची है जी, गांव कलाना तहसील बहादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान तो विक्रम कड़वासरा, इन्हां दे नाल सचिन, सतीश, योगेश ते युधव कडवासरा जी दी बहुत बहुत शुक्रिया जी फरमाइश भेजन दे लई। और अगली फरमाइश है जी सानू मुबारकबाद सब तो पहला तो दे रहे ने, कहिंदे कि दिल खुश हो गया जी, सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, पर प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह ते डॉक्टर अमनदीप ते कालका तो, सुभाष चंद्र बजाज, साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज जी दी फरमाइश भी आन पहुंची है। सो आओ जी फिलहाल इन्हां सारे दोस्तों की फरमाइश दे उपर सुनदे हां जी प्रोग्राम दिल चाहता है दा ट्रैक। और जेकर तुसी चाहुंदे हो तुहाडी फरमाइश भी इस प्रोग्राम दे विच शामिल कीती जावे तां तुसी सानू WhatsApp दे जरिए अपनी फरमाइश भेज सकदे हो जी। सिर्फ ते सिर्फ हिंदी फिल्मी गीतां दी फरमाइश, नंबर है 9855 10 10 27, यानी कि 9855101027।

हर कोई चाहुंदा जी कि मेरा मैसेज पढ़न दे विच या मेरी जो फरमाइश है उसनों पूरी होने दे विच कितने देर ना हो जाए। सो जेकर तुहाडा दोस्त हॉट सीट पर बैठा है जी तो वह तो कभी नहीं चाहेगा कि तुहाडे मैसेज पढ़न दे विच या तुहाडा गाना प्ले करन च देर होवे। सो इदां दा ही कोई गीत है वह भी प्ले कर रहे हैं।

न्यूज़ ऑन AIR ऐप के जरिए भी सुन पा रहे हो। और अगर तुम फरमाइश भेजनी चाहते इस प्रोग्राम तो नंबर है जी 9855710102 7। इस नंबर के उपर अगली फरमाइश साढ़े तक पहुँच चुकी है जी। पहाड़गंज मुल्तानी टांडा तो अनिल मोहन, ऊषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी की कह रहे हैं कोई भी ट्रैक सुना दिता जाए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अगली फरमाइश रजिंदर पाल राणा, रंजू बाला राणा, श्रुति राणा पिंड बलौरा लुधियाना तो पुलारा लुधियाना तो फरमाइश भेजी है जी साढ़े दोस्तों ने, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अगले साढ़े दोस्त ने जी पिंड तीजा मोड़ी तो बंसी लाल संधु जी, मैं और प्यारे मोहन हेयर ड्रेसर, क्या बात है जी, आपकी अदाकारी का कोई नहीं जवाब बंसी लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी फरमाइश सांझी करने के लिए, थैंक यू सो मच। और अगली फरमाइश साढ़े तक गांव घुमंडिया सूरतगढ़ तो जगदीश ढुकिया जी, उन्होंने नाल प्रमिला, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमना, तमना, साइना और विष्णु ढुकिया और धोती इरा धारवणी जी की फरमाइश भी पहुंच चुकी है, बहुत बहुत शुक्रिया जी सप्रेम। और इस नाल ही अगली फरमाइश दतारेंगी बाटापाड़ा तो हीरा लाल मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखे लाल वर्मा जी की फरमाइश भी साढ़े तक आन पहुँची है जी, थैंक यू सो मच जी अपनी फरमाइश साढ़े तक पहुँच दी करन दे लई। और साढ़ी अगली फरमाइश है जी जनकपुरी सहारनपुर तो जॉन डिकैस्ट्रो साहब की, उन्होंने नाल रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो जी दी फरमाइश भी इस प्रोग्राम दे विच आन पहुंची है। सो इन सारे दी फरमाइश दे उपर प्ले करना चाह रहे हैं जी अगला ट्रैक प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच अमित कुमार ते लता मंगेशकर जी दियां आवाज़ां दे विच।

प्रोग्राम चल रहा है जी दिल चाहता है, तो तुहाडियां फरमाइशां इस प्रोग्राम दे विच पेश कीतियां जा रही ने जी, तुहाडे तक पहुँचदियां कीतियां जा रही ने जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया भी है जी कि तुसी अपनियां फरमाइशां नूं साडे तक पहुँचाउंदे जा रहे हो जी, थैंक यू सो मच। और अगली फरमाइश साडे तक आण पहुँची है जी मिर्जापुर कुरुक्षेत्र तों यशपाल दीमान, श्रीमती कृष्णा दीमान, राहुल, शुभम और इन्हां दे नाल भीम आंचल, पर्व, चिराग, रजत राय ते राजेश धीमान। बहुत बहुत शुक्रिया धीमान परिवार का साढ़े तक फरमाइश भेजन के लिए। और अगे वध्दियां जी इस प्रोग्राम च, ते अगली फरमाइश आन पहुंची है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत और भरत मक्कड़ ते कमल सानी जी पींगा वाला चौंक गुराया तो, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली फरमाइश जी पिंड हीरावाली ज़िला फाजिलका तो सुभाष गुदारा, विमला गुदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु जी की फरमाइश तुहाडे तक आन पहुंची है। और आकाशवाणी के 90 वरे पूरे होने ते बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं जी, तुहानू भी ढेर सारिया मुबारक ते पूरे परिवार को। और फरमाइश भेजन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगली फरमाइश साढ़े तक होर पहुंची है जी मेन बाजार पिंड चौंके ज़िला तो बठिंडा तो साढ़े तक साढ़े चौन वाले दोस्त बसंत सिंह टेलर ते लवदीप सिंह जसल जी की फरमाइश आई है जी, थैंक यू सो मच फरमाइश पहुँचती करने के लिए। और अगली फरमाइश है जी गोविंदपुरा सीकर राजस्थान तो दातार सिंह शिखा।

मेरी गली आ तेरी मेहरबानी। और इस वेले रेनबो दी गली दे विच यानी कि व्हाट्सएप दे जरिए बहुत सारियां फरमाइशां साढ़े तक पहुंचियां होईयां ने जी। अगली फरमाइश दा जिक्र करदे हां जी। अगली फरमाइश व्हाट्सएप दे जरिए आन पहुंची है जी साढ़े दोस्त शारदुल सादुल शहर राजस्थान तो राम कुमार रिवार्ड और उन्होंने नाल चंद्रकला रिवार्ड जी और नाल ही 90 साल के स्थापना दिवस दियाँ आकाशवाणी को बहुत बहुत वधाइयां दे रहे हैं। थैंक यू सो मच जी वधाइयां सांझियां करन दे लई। और अगे वधदियां जी प्यार भरी नमस्कार साढ़े नाल सांझी कर रहे हैं MLB रोड ग्वालियर तो सुरेश खुराना पप्पी किरण खुराना लव्या आरव मेघा साक्षी आशीष अनुज विशु छोटू और SK पप्पी खुराना जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी अपनी फरमाइश साढ़े नाल सांझी करन दे लई। थैंक यू सो मच। और 90 वरे पूरे होने ते वधाइयां भी दे रहे हैं। 90 वरे पूरे होने ते होर भी साढ़े दोस्त ने जी वो वधाइयां दे रहे हैं। भोपालगढ़ राजस्थान तो धर्मेंद्र शीपा इन्हां दे नाल कपिल ईशान और पूजा परिहार जी का भी मैसेज साढ़े तक आ पहुँचा जी। थैंक यू सो मच अपनी फरमाइश साढ़े नाल सांझी करन दे लई। अगे वधदे हां जी साढ़े दोस्त जिन्हां दी फरमाइश

एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है। रेनबो की घड़ी के मुताबिक इस वेले 10:02 हो चुके ने। रात के समय के पेश कर जा रहे हैं प्रोग्राम शामी गज़ल।

रा तो मेरे साथ चलो, गली गली है अंधेरा तो मेरे साथ चलो, तुम्हें ख्याल है मेरा तो मेरे साथ चलो, मैं जा रहा हूँ उजालों की जुस्तजू के साथ, मैं जा रहा हूँ उजालों की जुस्तजू के साथ, सता रहा हो अंधेरा तो मेरे साथ चलो, जुनून के दश्त में एक शावनी बसा लेंगे, जुनून के दश्त में एक शावनी बसा लेंगे, नहीं है कोई बसेरा तो मेरे साथ चलो, गली गली है अंधेरा तो मेरे साथ चलो, तुम्हें ख्याल है मेरा तो मेरे साथ चलो, तो मेरे साथ चलो।

हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूट भी जाए जो तारा तो जमी पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर दाए रेनबो चैनल है। तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम शामे गजल।

केवल पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, केवल पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, रूठे ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। किसी से दोस्ती करो तो सच्चे दिल से करो, क्योंकि ये जिंदगी फिर कहाँ मिलती है।